0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगी, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाए, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया, और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो आज का हमारा विषय है कुंभकर्ण का वास्तविक परिचय। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रामायण को पढ़ने से कुंभकर्ण का जो परिचय मिलता है वह बड़ा ही विचित्र सा है। उसमें लिखा है कि कुंभकर्ण जो है वो रावण का एक भाई था जो 6 महीने सोया करता था और जगाए जाने पर 1 दिन के लिए उठता था और फिर सो जाता था। वास्तव में कुंभकर्ण कोई संज्ञावाचक नाम नहीं है बल्कि एक लक्षणिक नाम है। जिस मनुष्य के कर्ण कुंभ यानी कि घड़े के समान हो वह व्यक्ति कुंभकर्ण है। कुंभ की विशेषता यह है कि उसके मुख के पास यदि आप बोले तो उसमें आवाज जाएगी। हाँ, आवाज तो जाएगी तो सही और थोड़ी गूंजेगी भी, परंतु कुंभ वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। उसमें आपका कहना है कि फलीभूत नहीं होगा। मान लीजिए आप कहते हैं जागो जागो आत्माओं, भगवान अवतरित हो चुके हैं, उनके आत्मिक नाता, हाँ उनसे क्या करना है, उनके साथ जो हमारा आत्मिक नाता है उसे जोड़कर सुख शांति के भागी बनो। तो यह कथन कुंभ में जाकर थोड़ा प्रतिध्वनित तो होगा परंतु उसमें धारण नहीं होगी। घड़ा तो वहीं पड़ा रहेगा, उसके लिए जागने का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ऐसे स्वभाव का है कि कोई अच्छी और लाभदायक बात अथवा ज्ञान का कोई अनमोल रहस्य सुनने पर भी नहीं सुनता, उसे क्रियान्वित अगर हम देखें नहीं करता तो मानो कि वह कुंभकर्ण ही है। एक देखते हैं हम यहाँ पर, ये भी देखते हैं, चेष्टाहीन बुद्धिहीन आलसी निद्रा प्रिय ही कुंभकर्ण है। अगर किसी मनुष्य की बुद्धि में कोई बात नहीं बैठती तो प्रायः कहा जाता है कि यह मनुष्य पत्थर बुद्धि है। अगर कोई मनुष्य बात को सुनने और समझने पर भी उसे क्रियान्वित नहीं करता है, अपने आचार और व्यवहार में नहीं लाता है तो कहा जाता है कि यह तो जड़ है। अगर कोई मनुष्य बात को सुनकर और समझकर जीवन में गंभीरता पूर्वक व्यवहार करता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि यह तो सागर की तरह गंभीर है। अतः जैसे बुद्धि को, हाँ जैसे बुद्धि की जो शिथिलता होती है उसकी शिथिलता को पत्थर के से उपमा दी जाती है, क्रियाहीनता की तुलना जड़ से की जाती है और गंभीरता की तुलना सागर से की जाती है, वैसे ही मनुष्य बहरा तो ना हो परंतु बात को सुनकर भी उस पर निर्णय ले सके, हाँ अनसुनी कर दे तो उसके कानों की उपमा कुंभ से की जाती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।
0: नयन वरदानी।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है कुंभकर्ण का वास्तविक परिचय। यहाँ पर हम देखते हैं कि अनसुनी अगर जो बात को कर दिया जाता है तो वहां पर एक ही शब्द होता है कि कुंभकर्ण है, ऐसा कहकर उसे हाँ उसकी उपमा हम कुंभ से की जाती है। यानी कि पत्थर के तो देखते हैं कि कान ही नहीं होते हैं, उसमें तो आवाज प्राय जाती ही नहीं, इसलिए कानों की उपमा पत्थर से नहीं की जा सकती। अर्थात किसी व्यक्ति को पत्थर कर्ण नहीं कहा जा सकता। कुंभ की यह विशेषता है कि उसके ऊपर का जो मुख है और उसकी गर्दन की शक्ल यानी कि उसकी आकृति बहुत कुछ मनुष्य के कान से मिलती है, बस शक्ल ही मिलती है, अक्ल नहीं मिलती। जिसके कान के पर्दे के साथ लगकर अनमोल रहस्य वापस लौट आता है, जैसे कि घड़े के पेंदे के साथ आवाज टकराकर वापस लौट आती है, वह चेष्टाहीन बुद्धिहीन आलसी निद्रा प्रिय जड़ जैसा हाँ जड़ जैसा जो मनुष्य कुंभकर्ण ही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि देह का अभिमान कई कठिनाई से जगाए जाने पर अगर कुंभकर्ण फिर जाग भी जाता है, जो मनुष्य राम से प्रिय मिलन नहीं मनाना चाहता, नहीं मनाता, बल्कि उसका विरोध करने को उतारू हो जाता है और राम के मिलन को खुमारी में रंग कर मदिरा की मस्ती में चूर रहता है, तमोगुणी नशों में ही लगा रहता है। वह नर भी कुंभकर्ण ही है, वह जागा भी तो क्या जागा, वह सचमुच असुर अथवा राक्षस भी ठहरा। राम का पक्ष लेने की बजाय जो रावण अर्थात असुराई की ओर से लड़ा, वह ईश्वर विमुख मनुष्य सचमुच कुंभकर्ण तो है।

परंतु असुरी बुद्धि वाला होने के कारण असुर भी कहलाता है। उसे रावण का भाई माना जाता है क्योंकि रावण शब्द का अर्थ है रुलाने वाला, और रावण के 10 मुख पुरुष में और स्त्री में 5 विकार जो है काम क्रोध लोभ अहंकार की व्याप्ति के प्रतीक है। 5 विकारों का पिता है देह अभिमान, सुस्ती मित्रा अथवा आलस्य का पिता है भी देह अभिमान ही है। अतः हम देखते हैं कि एक ही देह हाँ देह अभिमान रूपी पिता की संतान होने के कारण कुंभकर्ण को रावण का भाई कहा गया है। यहाँ पर एक चीज हम और देखते हैं कि सुस्ती के शिकार कई महावीर भी हुए हैं। इसी आलस्य निद्रा अथवा तमोगुण की ने कई ऋषियों को अप्सराओं को तथा कई वानरों को भी खा लिया था। भाव यहाँ पर यह है कि भगवान की खोज करने वाले कई ऋषि भी इससे प्रभावित होकर इस आलस्य के गर्भ में चले गए थे। जो माताएं बहने ज्ञान और योग रूपी परो द्वारा सूक्ष्म देवताओं के लोक की ओर भी ध्यान में उड़कर चली जाती थी, उसमें से भी कई ऐसे थे जो इस सुस्ती अथवा अति निद्रा रूपी कुंभकर्ण का शिकार हुई थी, और राम की सेवा में लगे कई नर भी इस आलस्य रूपी कुंभकर्ण द्वारा हताहत हुए थे। इसलिए आलस्य और निद्रा रूपी यह कुंभकर्ण बहुत ही बलशाली असुर माना गया है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना फिर से आपका स्वागत करती हूं और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है कुंभकर्ण का वास्तविक परिचय। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंद्र पद की बजाय निद्रा पद, भला जो मनुष्य ब्रह्मा जी से भी इंद्र पद अर्थात क्या होता है, देवताओं के भी राजा का पद लेने की बजाय निद्रा पद लेवे, आप उसे कुंभकर्ण नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा जी तो सर्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ माने गए हैं, उनका मत उत्तम माना गया है, वे जगत के पिता हैं, अतः अपने प्रजा पिता से तो मनुष्य ज्ञान रूपी वरदान प्राप्त करके सब कुछ प्राप्त कर सकता है, परंतु उनसे भी कोई निद्रा की प्राप्ति की चेष्टा करे तो वह सचमुच ही असुर ठहरा। अब यहाँ पर हमें ये भी देखना कि सुग्रीव कौन है। यह जो कहा गया है कि कुंभकर्ण ने सुग्रीव को बंदी बना दिया, भला हाँ इसका भला क्या भाव है? ग्रीव का अर्थ है कंठ अथवा गला का, जिसका गला सुंदर हो अर्थात जिसकी वाणी मधुर हो, सुकोमल और हितकर हो, वही सुग्रीव है। जो राम के पक्ष की बात कहने वाला हो, ईश्वरवादी हो, जो अपने कंठ से प्रभु की महिमा गाए, वास्तव में उसी का गला तो सुंदर है। ऐसा नर ही वास्तव में राम के सेवकों का सेनापति है, क्योंकि वह ईश्वर का परिचय देता है, ईश्वर का सहयोगी होकर वर्तता और अपने वाक बल तथा प्रभु प्रीति से असुराई का कुशलता से सामना करता है। ऐसा मनुष्य भी कभी कुंभकर्ण द्वारा बंदी बन जाता है, अर्थात सुस्ती या निद्रा ऐसी चीज है कि इसके सुहावने जाल में ऐसे लोग ही फंस जाते हैं। सुस्ती मनुष्य की मधुर कल्याणकारी को भी बंद कर देती है। तो भाव यह हुआ कि हमें रावण के साथ साथ उसके सहोदर अथवा भाई कुंभकर्ण को भी जलाना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज भी कुंभकर्ण जिंदा है। कैसे? हम देखते हैं कि आज भी कुंभकर्ण जिंदा है। हर एक मनुष्य पर आलस्य निद्रा और ईश्वर विमुखता का कुछ न कुछ प्रभाव है, मानो कुंभकर्ण का उनके मन में प्रवेशता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना फिर से आपका स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है कुंभकर्ण का वास्तविक परिचय। जैसा कि आज हम देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां और ब्रह्मा कुमार मनुष्यों को जब यह संदेश देते हैं कि जागो जागो, अब परम पिता परमात्मा अवतरित होकर सुख शांति का वरदान दे रहे हैं, तो भी वे जागते नहीं है। उनके कानों में यह आवाज पड़ने पर भी उन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। वे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भगवान से इंद्रपद का वरदान लेने की चेष्टा नहीं करते, बल्कि सोए रहते हैं, मानो उन्होंने पित्रा पद का अभिशाप पाया है। वे मधुर कल्याणकारी तथा ईश्वर प्रेम के वचन भी नहीं बोलते, अर्थात उन्होंने सुग्रीव को भी बंदी बना रखा है। वे राम के मिलन का आनंद नहीं मनाते, बल्कि धन की मदिरा अथवा मान शान की मदिरा के 200 घड़े पीने में मस्त रहते हैं। और तो क्या, वे राम का अथवा भगवान का विरोध करते हैं, अर्थात विपरीत बुद्धि की न्यायी बरतते हैं। और जो लोग भगवान के ज्ञान ध्यान में तत्पर हुए राज ऋषि हैं अथवा भगवान के कार्य में लगे हुए वानर सेना है, उन्हें भी मारने को अथवा कष्ट देने को दौड़ते हैं। फिर ऐसे भी तो लोग हैं जो ज्ञान का घोष सुनने पर जागते हैं, परंतु एक दिन जाकर फिर 6 महीने सो जाते हैं, अर्थात 6 महीने तक ज्ञान लेने का अथवा ज्ञान जागृति का नाम भी नहीं लेते। तो क्या यह कहना सत्य नहीं है कि कुंभकर्ण आज भी जिंदा है? यहाँ पर अपने मन को हम टटोल कर देखिए। ब्रह्मा कुमारियां और ब्रह्मा कुमार जो है परमपिता परमात्मा शिव के अवतरण का स्पष्ट संदेश दे के अतिरिक्त आने वाली जो भी यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं की, गृह युद्धों की तथा विश्व युद्ध की भी सूचना देते हैं, परंतु इन सब कुछ सुनकर भी लोग अनसुनी कर देते हैं। वे कहते हैं, बहन जी इसमें हमारी रुचि नहीं है अथवा अभी हमारे पास समय नहीं है, अर्थात हमें अज्ञान निद्रा में सोए रहने दीजिए। इतना ही नहीं बल्कि वे तो काम रूपी विष के 200 घड़े भी पीना चाहते हैं। क्या ऐसे नर साक्षात एक एवं साकार रूपी कुंभकर्ण नहीं है? वह समय दूर नहीं है जब ऐसे नर भी विनाश के धमाके सुनकर जागेंगे अवश्य, परंतु उस समय देर हो चुकी होगी और उनके मुख से ये शब्द निकलेंगे, ज्ञान सूर्य परमात्मा प्रकट भी हुए परंतु हम उतनी देर तक निद्रा में सोए रहे, हमने उनसे इंद्रपद का वरदान न पाया। हाय, हमें जगाया गया परंतु समय पर न जागे। अब हर एक जो भी यहाँ पर श्रोतागण है उनको चाहिए कि अपने मन को टटोल कर देखें कि कहीं उनके मन भवन के किसी कोने में कुंभकर्ण कहीं सुस्ती निद्रा अज्ञानता अहंकार रूप मद ईश्वर विमुखता आदि आदि के रूप में छिपा तो नहीं है, हाँ कहीं बैठा तो नहीं है? यदि छिपा बैठा है तो आज ही रावण की इस भाई का योगाग्नि द्वारा अंतिम संस्कार करके, इसका दाह संस्कार करके इसे राख कर डाले। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: For more entertainment, log on and subscribe.
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इस पूरी अवेकनिंग में, इस पूरे जागरण के प्रक्रिया में हमने ये जाना है कि किस तरह से अगर हम रिश्तों को एक नए रूप में देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं जो परेशानी आ रही थी, जो मुश्किलें आती हैं, जो हर बार हम ये कहते हैं कि रिश्ता सही नहीं चल रहा, वो बेहतर बनाया जा सकता है। चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे वो बच्चे का अपने पिता के साथ हो, या फिर एक स्टूडेंट और टीचर का हो, आज जरूरत है कि हर रिश्ते को हम एक नए अंदाज, एक नए नजरिए और जो हमने जानकारी प्राप्त की है, जो ज्ञान हमें मिला है, उस अवेयरनेस के साथ देखें तो शायद एक नए रूप में नजर आएगा। पति पत्नी के रिश्ते के कई नए प्रारूप हमारे सामने आए हैं। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उस मुद्दे पर बात करते हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव हो सकती है, और वो है विश्वास यानी ट्रस्ट। और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जब से हमने रिश्तों के ऊपर बात करनी शुरू की है, इतने सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं क्योंकि एक नए अंदाज में हम देख पा रहे हैं। इनफैक्ट मेरे लिए भी बहुत आसान हो गया है हर रिश्ते को नई नजर से देखना। और आगे बढ़े उससे पहले एक बार यही बात कर लेते हैं कि ना मैं बता रही हूँ ना आप बता रहे हैं, क्योंकि ये बात मुझे एकदम से रियलाइज हुई है कि हम कितना भी सोच लें लेकिन जब हम इस तरह से कार्यक्रम में बैठते हैं तो कुछ और बात ही निकल आती है, एक ऐसी ज्ञान की बात जो हमने सोची भी नहीं होती। तो मैं तो अपने आप को स्वयं मान रही हूँ कि मैं एक माध्यम हूँ, तो ज्ञान कहाँ से आ रहा है एक बार फिर उसके बारे में बात करते हैं।
1: जहाँ तक हर बात, हर पॉइंट जो हम यहाँ डिस्कस करते, तो ये हर बात बहुत गुह्य रीति से हमें सारी जो एक्सप्लेनेशन दी है वो निराकार परमात्मा शिव, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, जो स्वयं इस समय सृष्टि पर अवतरित होकर हम आत्माओं को अपना परिचय देते और फिर जीवन जीने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है, जो जीवन में चलते चलते कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं, तो उस यात्रा को सिंपल करने के लिए जो इतना डीप नॉलेज हमें मिलता है, लेकिन द ब्यूटी ऑफ इट इज इट्स वेरी डीप बट वेरी सिंपल, और वो सिंपल होने के कारण फिर वो इम्प्लीमेंट करना इजी हो जाता है।
0: ट्रस्ट की बात करते हैं कि विश्वास, जैसा कि हम शिव बाबा पे कर रहे हैं, 100% विश्वास रखते हैं, तो उसी तरह से अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में देखें, हमने रिस्पेक्ट की बात की थी, हमने ये बात की थी, अपेक्षाओं की बात की थी, अंडरस्टैंडिंग की बात की थी, वो सारे एस्पेक्ट्स फिर भी इतने मायने नहीं रखते हैं कि कंपैटिबिलिटी भी है या नहीं। सबसे बड़ा जो, क्योंकि वो रिश्ता बन रहा है जहाँ कोई खून का रिश्ता नहीं है लेकिन फिर भी जन्मों का रिश्ता है, सो वहाँ विश्वास, हम अपने दोस्त पे विश्वास जरूर कर लेते हैं, यहाँ विश्वास, इस रिश्ते में विश्वास कितना जरूरी हो जाता है।
1: विश्वास हर रिश्ते में जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जो खून का रिश्ता है उसमें विश्वास करना इजी होगा और जो इस तरह से यात्रा के दौरान जुड़ा हुआ रिश्ता है उसमें डिफिकल्ट है। नहीं, आजकल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी विश्वास की कमी है, तो वो तो सबसे ब्यूटीफुल एंड क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशनशिप है, तो उसमें क्यों कमी है। The trust is not something which needs to be, you know, related to be a blood connection. It has to be a soul to a soul relationship. तो विश्वास तो रिश्ते के अलावा भी एक्चुअली हर आत्मा को हर आत्मा पर करना चाहिए, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट है पहले कि मैं औरों पर विश्वास करना आज क्यों मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं शायद आज खुद पर विश्वास नहीं कर पा रही।
0: नहीं, मैंने ब्लड रिलेशंस की भी बात इसलिए की थी कि हम ये कहते हैं कि चलो उनको तो हम माफ कर सकते हैं, वो है तो हमारा खून ही, हमारा अपना ही है, कोई बात नहीं, गलती
1: तो उनको हम माफ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम उनको माफ करना चाहते हैं, बाकी माफ तो हम किसी को भी कर सकते हैं। सी, फॉरगिव, वी कैन फॉरगिव एनीबॉडी, व्हाई, बिकॉज आई नो हाउ टू फॉरगिव, लेकिन हम चूज करते हैं किसको फॉरगिव करना किसको नहीं करना। अगर हमें फॉरगिव करने की कला आती है तो अगर हम एक को कर सकते हैं तो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रस्ट क्या है, उसको कैसे डेवलप करना, वो मुझे पहले अपने आप के साथ एक्सपीरियंस करना पड़ता है। वर्तमान समय औरों पे ट्रस्ट करना क्यों मुश्किल है, क्योंकि ट्रस्ट अर्थात फेथ, एक इंटेग्रिटी जो मुझे आप पर या किसी और आत्मा पर करनी है, लेकिन आज जनरली हम डाउट करते हैं, यू नो, इवन इन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप वो ट्रस्ट बहुत जल्दी हिल जाता है। शिव बाबा हमें बताते हैं कि संशय और निश्चय यू नो डाउट या ट्रस्ट, इसमें कोई परसेंटेज नहीं हो सकती है. हम जो एफर्ट करते हैं उसमें परसेंटेज होती है, लेकिन आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं इसमें परसेंटेज नहीं होती. हम ये नहीं कह सकते कि थोड़ा सा ट्रस्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे मेरा ट्रस्ट
0: बढ़ता
1: जाएगा. तो शिव बाबा कहते या तो निश्चय है या निश्चय नहीं है.
0: लेकिन मैं अपने लिए ये ऑप्शंस रखता हूँ कि अगर मुझे धोखा मिला तो मैं इतना हर्ट या हर्ट नहीं हो जाऊंगी कि मैं अपनी जिंदगी ही
1: ये थॉट पहले से क्रिएट करना कि अगर मुझे धोखा मिला मतलब आई डू नॉट ट्रस्ट, मतलब आई एम ऑलरेडी डाउटिंग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेनिफिट ऑफ डाउट सामने वाले व्यक्ति को दे दिया कि इनके अंदर ये कैपेसिटी है कि ये धोखा देंगे. तो फिर वेयर इज द ट्रस्ट.

0: परमात्मा यही बताते हैं कि अगर एक भी थॉट डाउट की आई, एक थॉट, ज्यादा नहीं, एक थॉट्स भी डाउट की आई, तो अभी आप डाउट वाली साइड पर है, ट्रस्ट वाली साइड पर नहीं है, अभी संशय है उस रिलेशनशिप में। निश्चय जिस रिलेशनशिप में होगा जहां एक भी थॉट, वर्ड, एक्शन तो आउट ऑफ द क्वेश्चन, एक भी थॉट डाउट की नहीं होगी, दैट इज ट्रस्ट। एंड फिर वो इसीलिए परसेंटेज में नहीं हो सकता, जिस दिन तक डाउट्स है माइंड में तब तक हम डाउट वाली स्टेज पे है कि मैं इनको डाउट करती हूँ, लेकिन जिस दिन मन से सारे डाउट्स हट गए, एक थॉट भी डाउट करने आया, उस दिन कह दीजिएगा कि नाउ आई ट्रस्ट दिस पर्सन।
1: लेकिन ट्रस्ट हैज टू बी अर्नड, कहा जाता है कि आपको अर्न करनी पड़ेगी, मेरा विश्वास आपको जीतना पड़ेगा, विश्वास जीतिए आप।
0: ट्रस्ट मुझे करना है, तो उसके लिए सामने वाले को कुछ नहीं करना है, आप जो हैं, जैसे हैं, वैसे हैं। अब आपको ट्रस्ट करना या नहीं करना, ये चॉइस मेरी है। आपको अपने आप को प्रूफ करके नहीं दिखाना होगा उसके लिए, क्योंकि वो में भी समय लगता है कि हम आपको जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअली कहा जाता कि ट्रस्ट तो फाउंडेशन है। सो दैट मींस वी आर ट्राइंग टू से कि हम एक बिल्डिंग को बनाते हैं, और बनाते बनाते धीरे धीरे जब हम एक दूसरे को जान लेंगे तब ट्रस्ट वाला फ्लोर बीच में डाल देंगे। बट वी सेड इट्स द फाउंडेशन, सो दैट मींस इट विल हैव टू बी द फर्स्ट थिंग। इट कैन बी समथिंग दैट इज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज लेट्स से इन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, सो टुडे यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, अब आप क्या कहना चाहते हैं कि एक दो तीन साल के अंदर अंदर धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप करें? हाउ डू आई गो अबाउट इट? और शुड आई से वी बिगिन इट विद ट्रस्ट? बिकॉज तब तो आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी, नहीं तो फाउंडेशन डाउट की है। डाउट की फाउंडेशन पे तो वो इमारत वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं खड़ी रहेगी, क्योंकि डाउट की फाउंडेशन पर खड़ी हुई जो अगले एक दो तीन साल भी बीते, उसमें थॉट्स ऑफ ये ऐसा तो नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं कर रहे, करेंगे या नहीं करेंगे, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। ट्रस्ट इज ऑन अ लॉट ऑफ लेवल्स।
1: ट्रस्ट का मायने क्या है कि मैं आपको पोजेस कर लूंगी, कि आप मेरे ही हैं? अगेन ट्रस्ट इज समथिंग हैज टू बी, यू नो, एक्चुअली डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि मैं आप पे कंप्लीट विश्वास करती हूँ, क्या मैं आप पे एहसान कर रही हूँ, वन। सेकंड, उसका पूरा एग्जाम, पूरा मतलब क्या है कि मैं आप पे कंप्लीट ट्रस्ट करती हूँ?
0: दूसरे पर ट्रस्ट करके हम दूसरे पर एहसान नहीं करते, हम अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, क्योंकि जितना समय हम डाउट में रहते हैं, अंदर डिस्टर्बेंस,
1: पेन रहती है, बहुत पेन है,
0: एक इनस्टेबिलिटी कंटिन्यूस, मतलब अ लॉट ऑफ वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स। और जिस क्षण ट्रस्ट करना शुरू किया, ऑल वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स ओवर। तो वो एहसान दूसरे पर किया या अपने ऊपर किया? अपने ऊपर किया कि सारे जिसको कहें चिंता, बोझ, एंग्जाइटी, इट्स ऑल ओवर, बिकॉज नाउ देयर इज नो डाउट। वी कैन डाउट ऑन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, कितनी चीजें हैं जिसमें हम डाउट करते हैं, और जब वो सारा हट जाता है तो सोचो अंदर क्या होगा। दैट इज पीस, दैट इज हैप्पीनेस, जहां अंदर एकदम स्थिरता आ जाएगी। तो ये किस पर एहसान किया? अपने पर एहसान किया। दूसरे ने कुछ भी नहीं किया उसके लिए, लेकिन जिस क्षण हमें लगा कि अब हम कर सकते हैं, हमने करना शुरू कर दिया। आज हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब कोई हमारे सामने कुछ कहता है या कुछ करता है, तो हमारे मन में ये डाउट होता है कि क्या ये सोचते भी यही है। Why?
1: हाँ, अगेन, यू नो, क्योंकि कहते वो कुछ रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अंदर हमें नहीं मालूम कि, क्योंकि लगता ये है कि डिफरेंस होगा जो सोच रहे हैं और कहने में।
0: क्यों ऐसा लगता कि दूसरे के अंदर होगा?
1: खुद ऐसे होते,
0: क्योंकि हमारे अंदर ऐसा है। सो सी, रिलेशनशिप इज माई कॉन्शियसनेस में आपकी इमेज। अब मेरी कॉन्शियसनेस की जो क्वालिटी होगी, उसमें ही तो आपकी पिक्चर आकर बनेगी ना। मतलब मेरे पास कलर्स की क्वालिटी क्या है, दैट इज माय कॉन्शियसनेस। अब उन कलर्स से मैं आपकी पिक्चर बनाऊंगी, तो जो क्वालिटी ऑफ कलर्स होंगे वो उस पिक्चर के अंदर हाईलाइट हो जाएंगे बिल्कुल। अगर मेरी कॉन्शियसनेस में ये इंटेग्रिटी नहीं है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स इफ माय थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस आर सेपरेट, तो मुझे क्या लगेगा कि बाकी लोग भी कैसे हैं? ऑटोमेटिकली मैं कैसे इसको बिलीव करूं, क्योंकि मेरे पास वो कलर्स ही नहीं। तो जो कलर मेरे पास है ही नहीं, तो मैं दूसरे को उस कलर में देख नहीं सकती हूँ। मेरे पास वो ही कलर है, क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस के अंदर सारा दिन में कई बार ऐसा हो रहा है कि मैं सोच कुछ और रही हूँ, बोल कुछ और रही हूँ, कर कुछ और रही हूँ। तो

0: टू द थॉट, नहीं आप सोच को छोड़ रहे हैं, बोल को छोड़ रहे हैं. तो इट इज इंटेग्रिटी एट द वेरी रूट लेवल. और ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बातों में नहीं, लेकिन सारा दिन में छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में. अब जब हम वो ट्रस्ट का कलर अपनी कॉन्शियसनेस में क्रिएट कर देंगे, और वो कैसे होगा, जब मेडिटेशन से हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि हम जो सोचते हैं वो ही बोलते हैं. अभी तक हम जो सोचते हैं वो नहीं बोलते, कहीं ना कहीं डर, कहीं ना कहीं लोगों को खुश करना, कहीं ना कहीं किसी को इम्प्रेस करना. तो प्रिटेंशन क्यों थी अभी तक, क्योंकि हमने सोचा कि मैं कौन हूँ, मैं एक शरीर हूँ, पोजिशन हूँ, स्टेटस हूँ, एक पर्सनालिटी जो मैंने क्रिएट की है. तो एक आउटर पर्सनालिटी है, और उस आउटर पर्सनालिटी को मुझे सारा दिन दूसरों को क्रिएट करके दिखाना पड़ता है. एंड अगेन इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे बार बार ये डिसइंटेग्रिटी से चलना पड़ता था, क्योंकि मेरी सेल्फ एस्टीम उस पर बेस्ड थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं. तो लेट्स से मैं इस टाइम बहुत उदास हूँ, बहुत परेशान हूँ, लेकिन अगर मैंने आपको बता दिया कि मैं बहुत उदास हूँ, तो आप सोचेंगे अरे आप भी उदास होते हैं. और आपका मेरे बारे में ऐसा सोचना मेरी सेल्फ एस्टीम को क्रैश कर देगा, अगर मेरी सेल्फ एस्टीम इस चीज पर बेस्ड है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं. एंड नॉर्मली आज दिन तक हमारी सेल्फ एस्टीम औरों के ओपिनियन पर बहुत ज्यादा बेस्ड थी. तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को छुपा के रखना पड़ता था, और हमें वही चीजें बोलनी पड़ती थी जो औरों को अच्छी लगती है, क्योंकि हमें उन्हें खुश करना है. तो आई एम चीटिंग माई सेल्फ. तो एक्चुअली इफ यू सी सारा दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम चीटिंग माई सेल्फ बिकॉज आई डोंट हैव द करेज टू स्पीक वॉट आई एम थिंकिंग. वाई? बिकॉज यू माइट नॉट लाइक इट, एंड इफ यू डोंट लाइक इट देन यू डोंट लाइक मी, एंड इफ यू डोंट लाइक मी देन आई डोंट लाइक माई सेल्फ.
1: That's important.
0: So it's very deep. So sara din mein I'm going around impressing people, influencing people, and because of that I just can't be myself. I can't be what I want to be. Spirituality ne hame apna sahi parichay diya ki main kaun hu. मैं वो आत्मा हूँ जिसके अंदर इतनी ब्यूटीफुल गुण है, शक्तियां हैं. वर्तमान समय कुछ एक कमजोरियां भी हैं, बट दैट्स ओके, आई एम वर्किंग ऑन दैट. I do not want to claim to say that I'm perfect.
1: But I can transform, no? That's what I'm working on.
0: I'm working on that. But to work on that, I have to accept that. I have to accept ke mere andar ye kamiyan hai. Lekin aaj din tak I wanted to hide.
1: From myself, you know.
0: कि वो सारी कमियों को छुपा के एक इमेज क्रिएट करना चाहते थे कि आई एम जस्ट फाइन द वे आई एम. तो देन आई कुडंट बी माईसेल्फ, आई कुडंट बी माईसेल्फ. तो बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू कीप ऑन चीटिंग माईसेल्फ. तो मेरा अपने पे ट्रस्ट, और जैसी मैं हूँ वैसे ही सब लोग हैं, वो मुझे 100%.
1: वो भी कई बार आप भूल जाते हैं. इनफैक्ट बहुत ज्यादा वक्त आप खुद तो सोल कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं, हर बार आप अपने आप को याद दिला देते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों के बीच हो जाते हैं ये तो भूल जाते हैं. आपको वही, मुझे आप ही दिखेंगी जो जिस रूप में आप हैं. आई विल फॉरगेट, ये अभी भी इस पे काम करना बाकी है.
0: या दैट्स ओके, बट यू नो सी, जब हम अपने अंदर ये काम करना शुरू कर देते हैं कि आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग माई सेल्फ, कि मेरे अंदर ये गुण है, विशेषताएं हैं, लेकिन ये कमजोरियां भी हैं, बट दैट्स फाइन. You know, so that is acceptance. कि it's okay, ये कमजोरियां हैं, and I'm working on it. Integrity. जब मेरे अंदर ये integrity आ जाएगी, then I can accept other people also in the same way. कि इनके अंदर भी ये गुण हैं, लेकिन ये थोड़ी कमजोरियां हैं, but I accept them with both the things. तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको मेरे सामने आने के बाद pretend करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आई एक्सेप्ट यू. हम प्रिटेंड किसके सामने करेंगे, जो हमें वो कमजोरियों के साथ एक्सेप्ट नहीं करते.
1: तो इनफैक्ट हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में होता यही है. बिगिनिंग में तो देयर इज अ प्रिटेंशन, लॉट ऑफ प्रिटेंशन, बट ग्रेजुअली, बिकॉज कब तक, क्योंकि आप 24 घंटे का साथ रहेगा.
0: अब उस रिश्ते में क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारा दिन प्रिटेंड करना
1: बहुत मुश्किल हो जाता है.
0: आप ऑफिस थोड़ी देर प्रिटेंड कर सकते हैं, क्योंकि कभी आप किसी कोलीग के साथ हैं, कभी लेकिन जिसके साथ पूरी जीवन बितानी है, उसके सामने प्रिटेंड करना बहुत मुश्किल होता. और तब जब कहीं वो प्रिटेंस गिर जाता है, तो इट्स लाइक अ डिफरेंट पर्सन.
1: एंड देन द कंप्लेंट कम्स, इज लाइक आपका असली चेहरा अब दिखा. ये
0: स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, जब आपने कहा ना कि जो पहले से जानते थे एक दूसरे को, और फिर उस संबंध में जुड़े, लेकिन वो जो पहले जानने वाले

0: पीरियड था
1: वो डिफरेंट था ना, वो प्रिटेंशन वाला था कि आप 2 घंटे मिल रहे हैं, 4 घंटे मिल रहे हैं, यू आर योर बेस्ट. दैट आई हैव, दैट इज एक्चुअली यस, दैट्स अंडरस्टैंडेबल.
0: लेकिन जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड जब आप ये एनर्जी दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं कि आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर वीकनेसेस, तब दूसरे को आपके सामने प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा एंड तब वो जो सोच रहे हैं वो बोलेंगे. तो औरों को हमें प्रूफ नहीं करना, लाइक यू सेड ना, यू विल हैव टू विन माय ट्रस्ट. नहीं, आई हैव टू बिकम स्ट्रांग इनफ
1: टू ट्रस्ट यू.
0: ट्रस्ट
1: ट्रस्ट का रियल सेंस में मीनिंग क्या है? मैं आप पे क्या कैसे ट्रस्ट कर रही हूँ, मैं क्या आपसे उम्मीद कर रही हूँ, या क्या मैं आपके क्या विश्वास का बेसिक मतलब
0: जब हमने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर एक्सपेक्टेशन नहीं आ सकती है. एक्सेप्ट और एक्सपेक्टेशन क्या मतलब हुआ? Then that means there is again an expectation.
1: Expectation
0: that
1: means you'll change. Haan. You'll do this for me. You'll do that for me.
0: तो आप हर टाइम कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां सामने वाला व्यक्ति चेंज नहीं होगा हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार, तो ट्रस्ट मतलब मैंने एक इमेज बना ली कि आपको ऐसा होना है. जितने दिन तक आप इस इमेज के अनुसार चल रहे हैं, आई से आई ट्रस्ट यू, जिस दिन वो इमेज के कॉन्ट्रडिक्टरी आपने कोई कर्म कर दिया या कोई बोल बोल दिया, तो हम कहेंगे मेरा विश्वास टूट गया. क्यों विश्वास टूट गया? क्योंकि वो इमेज टूट गई. तो विश्वास क्या है कि आई ट्रस्ट यू. बेसिकली फॉर मी इट वुड बी विश्वास वो है कि आई ट्रस्ट दैट यू आर फीलिंग द सेम थिंग व्हाट यू आर सेइंग. दैट्स द डीपेस्ट. क्योंकि अगर आप उस लेवल पर उसको ले आएंगे तो बाकी सारी चीजें तो सारी आराम से उस पैरामीटर के अंदर फिट हो जाएंगे. लेकिन डीपेस्ट ये है कि छोटी सी छोटी बात में आप वो ही कह रहे हैं
1: जो आप सोच रहे
0: जो हैं. आप सोच रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं. आपको मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. विश्वास तभी टूटेगा ना.
1: हाँ, यहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि ठीक है, मैंने आपको जैसे है आप जिस भी रूप में आप वैसे स्वीकार लिया, और ये मैं ये मेरा विश्वास है कि आप जो कह रहे हैं वो सच ही कह रहे हैं. आप एक तरह के थे जब मैं आपके साथ मिली, आपके साथ एक रिश्ता शुरू हुआ. आप सच में विश्वास रखते थे, सच में. एक जनरल बात मैं कर रही हूँ. जिंदगी चलती गई, आपको देखा मैंने, धीरे धीरे मैंने देखा कि वो सच पे जो आपकी अडिक्ता, जिसको मैं बहुत प्रशंसा करती थी, आपको एक्सेप्ट कर रही थी या कर रहा था, आप बदल गए. जिंदगी ने बदलाया या जो भी हुआ, मैंने देखा कि आप
0: झूठ बोलना शुरू कर,
1: आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया. तब भी मैं आपको एक्सेप्ट करती जाऊँ, बुरा लगा मुझे क्योंकि मैं उस आपकी जो वो गुण था उसको बहुत प्रशंसा करती थी, लेकिन तब भी मुझे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हुआ. और यहाँ मुझे लगा कि मेरी ट्रस्ट ब्रेक हो गई.
0: नाउ आई वुड थिंक इन दिस कि आपको मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है, ये आपकी गलती है या मेरी गलती है?
1: मेरे सामने नहीं बोल रहे हैं. कहीं और बाकी व्यवहार में
0: नहीं, पहले यहाँ. सी द होल एंटायर रिलेशनशिप इज फर्स्ट द एनर्जी एक्सचेंज हियर बिटवीन टू पीपल. क्योंकि मुझे प्रॉब्लम तब होगी ज्यादा जब आप मेरे सामने झूठ बोल रहे हैं. अगर आप कहीं और बोल रहे हैं तो आई वुड प्रोबेबली अंडरस्टैंड कि आप वो क्यों बोल रहे हैं, आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट विद यू. लेकिन मेरे सामने जब आप बोलते हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग ऑफ योर एंड माई ट्रस्ट, यू नो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर ट्रस्ट विद द अदर पीपल. लेकिन हम कहते हैं मैंने आप पर पूरा विश्वास किया, मैंने हर चीज पर पूरा विश्वास किया, आपने झूठ बोला तो मेरा ट्रस्ट टूट गया. हम ये नहीं उस पर विचार करते कि सामने वाले को मेरे सामने झूठ बोलना क्यों पड़ा.
1: जब मैं कुछ ऐसा कर चुकी हूँ या किया जो आपको पसंद नहीं आए.
0: अगेन, जब आपने कुछ ऐसा किया जो आपको पता है कि अगर आपने सच बताया तो आई विल नॉट एक्सेप्ट इट एंड आई विल नॉट लाइक इट और वट एवर, तो तब आपको झूठ बोलना पड़ा. तो ये प्रॉब्लम किसकी थी? My lack of acceptance, मेरे अंदर एक्सेप्ट करने की ताकत नहीं थी. इस ताकत की कमी होने के कारण आपको मेरे सामने झूठ बोलना पड़ा.
1: लेकिन
0: अब हम ये कह सकते हैं लेकिन आपने गलत किया. हाँ. आपने झूठ बोला. But we are not here to look at everybody else's faults. Yes, a lot of people in the world making lot of mistakes, but we can't change them. We are in every interaction, we are going to see मैंने क्या किया इसमें. बिकॉज मैं उनको नहीं चेंज कर सकती कि वो सच बोले, लेकिन मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दूं कि सामने वाले को मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़े.
1: लेकिन रिश्तों में यही एक कहीं ये जो माइंडसेट चेंज होने की बात है, क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि वक्त के साथ साथ लोग बदलते हैं. हर रिश्ते में वो नहीं दिखता, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता, तो जहां से मैं आपको एक्सेप्ट कर रही हूँ, ऐसी एक सिचुएशन में आपने एक तरह से बिहेव किया,

0: उसे एक्सेप्ट कर लिया, वही सिचुएशन अगर 4 साल बाद आई, आपने अलग तरह से बिहेव किया, अलग तरह से आपका बिहेवियर था, अब मैं किसको एक्सेप्ट करूं, ये वाले को एक्सेप्ट करूं या ये वाले को एक्सेप्ट करूं?
1: जब हम एक इंडिविजुअल को एक्सेप्ट करते हैं तो हम पूरे पैकेज को एक्सेप्ट करते हैं, तब हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चलते चलते इस यात्रा के दौरान उतार और चढ़ाव आ सकते हैं परिस्थितियों के कारण, कोई और इंटरनल टर्मोइल के कारण, मे बी द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, इट कुड बी एनीथिंग, बट देन आई हैव एक्सेप्टेड एंड इंस्टेड ऑफ फीलिंग हर्ट, लेट्स से एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में एक ने दूसरे से झूठ बोला, इंस्टेड ऑफ फीलिंग हर्ट टॉक इट आउट कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी. यू नो नॉर्मली क्या होता है, आपने मुझसे झूठ बोला, आई एम सो हर्ट कि मैं विथड्रॉ कर जाती
0: हूं, मैं बात ही नहीं करूंगी.
1: मैं इतना हर्ट हूँ, अब मैं अपने दुख में घुलती रहती हूँ, मुझसे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला, ऐसा किया क्यों, एंड आई डोंट लाइक यू.
0: एंड यू नो व्हाट हैपेंस, अंदर तो ये दुख चलता रहेगा, ऊपर से आई क्रिएट अ फेस कि आई एम ओके. यू नो दैट्स अगेन अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट, कि ये भी कि मैं अंदर से तो उतनी ही परेशानी, और ये परेशानी बढ़ती जाएगी, लेकिन ऊपर से आई क्रिएट अ फेस कि इट्स ओके.
1: या बट द थिंग इज कि जैसे ही See what happens is हम hurt जब हो जाते हैं कि I am hurt, right? And now I don't like you because you hurt me. सबसे old belief system कि you hurt me.
0: हमेशा कोई और मुझे चोट देता है.
1: पहले तो उस belief system को जब हम change कर देते हैं कि you cannot hurt me, आपने जो किया सो किया, मैं hurt हो गई उससे, क्योंकि मेरे अंदर ताकत नहीं थी उस बात को स्वीकार करने की. तो उससे क्या होगा, मेरी आपके प्रति नेगेटिव एनर्जी नहीं जाएगी. अभी तक नेगेटिव एनर्जी क्यों जा रही है, यू हर्ट मी, आपने मुझे धोखा दिया. नहीं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड, आई एम हर्ट राइट नाउ, इट्स माई फॉल्ट, यू हैव डन व्हाट यू हैड टू डन, व्हाई एम आई हर्ट. तो पहले तो अपनी काउंसलिंग कि व्हाई एम आई हर्ट, वर्क ऑन माई सेल्फ, आई नीड टू बी स्टेबल. दूसरे ने कुछ किया बट वाई एम आई गेटिंग अफेक्टेड. तो पहले अपनी काउंसलिंग करके अपने आप को स्ट्रांग बना ले, फिर हमारे अंदर वो ताकत होगी दूसरे की हेल्प करने की, कि वट इज द रीजन, वॉट हैपेंड, बट आई एम एबल टू टॉक विद दैट कंपैशन ओनली वेन आई डोंट हेट यू. बट जब आप मेरे को झूठ बोलते हैं तो आई हेट यू एट दैट टाइम. तो हेट एंड कंपैशन, गुस्सा एंड लव,
0: In fact, hate, and मैंने आपको पहले ही कटघरे में रख के आप पे पूरा इल्जाम लगा के, I've already actually say like, you know, I've made you a criminal already.
1: तो फिर आपको मेरे से compassion नहीं मिल सकती है उस हालत में. क्यों? क्योंकि मैंने आपको जिम्मेवार ठहरा दिया मेरे दर्द के लिए. जब मैं आपको अपने दर्द से अलग कर पाती हूँ कि आप अलग हैं, मेरा दर्द मेरी सेल्फ क्रिएशन है, पहले सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इट्स माई क्रिएशन सो आई हील इट. एंड जब मैं अपने आप को ठीक कर लेती हूँ, हील कर लेती हूँ, तब मेरे अंदर वो ताकत आ जाती है कि आपके अंदर जो चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, बिकॉज दैट्स अ रिलेशनशिप. रिलेशनशिप और क्या है कि आप किसी उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं, एज योर पार्टनर इन लाइफ आई शुड बी एबल टू हेल्प यू थ्रू दैट. लेकिन हम इतने अपने ही दर्द में इतने घुल जाते हैं और दूसरे पर इतना ब्लेम डाल देते हैं कि दूसरा किस दौर से गुजर रहा है
0: ये हम भूल ही जाते हैं कि हाँ दैट्स ट्रू. और गलती करने का जो स्कोप हर एक की जिंदगी में होता है,
1: गलती वो भी समझनी पड़ेगी इन द राइट पर्सपेक्टिव.
0: गलती वो गलत है भी या नहीं,
1: ये हमने उसको गलती माना, तो पहले तो उसको भी तो डिस्कस करके वो पर्सपेक्टिव राइट लाना पड़ेगा. लेकिन वो तभी हो जाता है व्हेन आई लव यू इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू हैव डन.
0: दैट्स व्हाट वी से अनकंडीशनल लव, द वे यू सेड, कि द वे शिव बाबा,
1: एंड अनकंडीशनल लव इज वेरी इजी, ओनली एंड ओनली इफ आई अंडरस्टैंड कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड. अभी वो लव है, लेकिन आपने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे दर्द आ गया, मैंने ये सोचा आप मेरे दर्द का कारण है, तो मेरे प्यार की जगह गुस्सा आ जाता है. तो और गुस्सा जहाँ आया वहाँ प्यार नहीं है. बोथ द थिंग्स आर नॉट.
0: और नफरत सिक्के के दो पहलू हैं, कहा जाता है कि नफरत ही प्यार की पहली सीढ़ी होती है, ये भी बहुत बातें कही जाती हैं.
1: प्रेम मुझात्मा का ओरिजिनल स्वरूप है, नफरत नहीं. नफरत एक संस्कार है जो बन चुका है, उसको तो हम हटा सकते हैं, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है उसमें प्रेम और नफरत दोनों नहीं है. बिकॉज आई लाइक ओनली दैट लव, सो लव इज माई ओरिजिनल नेचर एंड आई एम फिल्ड विद इट टू बी एबल टू गिव इट टू एवरीवन एल्स.
0: सिस्टर शिवानी आज ट्रस्ट को एक नए अंदाज में देखें.

की कोशिश की। अब विश्वास एक ऐसी चीज थी जो हम दूसरों पर करते थे, लेकिन आज ये बात फिर साफ हो गई कि मैं से होता हुआ ही हर चीज जाएगी, तो वो कर क्यों रही हूँ अपने लिए, यू नो आई बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। ओम शांति। कोई भी रिश्ता कहा जाता है कि उसकी नींव अगर मजबूत हो तो फिर वो इमारत या वो रिश्ता बहुत सुदृढ़ होता है। पति पत्नी के इस रिश्ते में हमने देखा कि हर बार हम कहते थे कि नींव विश्वास की है, लेकिन आज विश्वास डगमगा रहा है, तो वो किसी और के कारण नहीं बल्कि हमारे अपने ही कारण। ये बात अगर समझ में आ जाती है तो रिश्तों को एक नया रूप दिया जा सकता है और विश्वास को दोबारा कायम किया जा सकता है। ये भी बात कि एक बार विश्वास टूट गया तो दोबारा नहीं हो सकता, जब मेरे ही हाथ में है तो मैं विश्वास दोबारा कर सकती हूँ। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 09999 3445, 09999 3446, 09873 666 555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इन दिनों हम बात कर रहे हैं रिश्तों की। रिश्ते जो हमारी जिंदगी में रस लाते हैं, हमें जिंदगी जीने का नया अंदाज देते हैं और जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दोबारा आपसे होगी मुलाकात और कुछ खास रिश्तों के साथ फिर जुड़ेंगे आपके साथ। अब दीजिए इजाजत। ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आला आला आला,
3: ओहो काय आला।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर, तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा।
2: वेरी वॉर्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मकुमारीज। ये जो पूरी बातचीत हमारी चल रही है, इसमें हमने ये जानने की कोशिश की है कि जो डिप्रेशन है, क्या वो कहीं इनहेरेंट है? क्यों हो जाता है हमें डिप्रेशन? क्यों हम या हमारे अपने कभी कभी ऐसा फील करते हैं कि कोई नहीं है हमारे साथ जिसके साथ हम कुछ शेयर कर सके? इंटरनलाइज करके क्या हम इस डिप्रेशन से खुद ही बाहर आ सकते हैं? ये पूरी जर्नी हमने तय की है, इसमें बहुत सी बातें सामने आई हैं, बहुत सी मिथ ब्रेक हुई हैं। तो एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल, जाने माने साइकोथेरेपिस्ट। आपका हार्दिक स्वागत।
3: नमस्कार।
2: नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका भी हार्दिक स्वागत।
4: ओम शांति।
2: ओम शांति। डॉक्टर पटेल, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं।
3: ये जो 6 स्टेजेस है, सबसे पहली सबसे उत्तम स्टेज है, वह रेयर हो सकती है कि भी जीवन में पूरी लाइवलीनेस है, देयर इज अ स्पार्क इन योर लाइफ। सेकेंड स्टेज है कि भी अभी भी आप सुखी है, अच्छे है, आपको जीवन में आनंद, अधिकतर समय जो है वो आपका सुख में बीत रहा है, नो यू आर वेरी हैप्पी विथ योर सेल्फ। फिर थर्ड स्टेज अब जो यहाँ शुरुआत होती है कि भी कभी खुशी कभी गम, भाई थोड़ा समय खुशी है, ज्यादा ही समय दुख है, और उसी को हमने जीवन को अपना एक हिस्सा बना लिया, कि भी यहाँ पर प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। फिर जो फोर्थ स्टेज है कि खुशी थोड़ी सी है 2-4 घंटे और दुख बहुत ज्यादा, 80% 75% बस तनाव में, दुख में, निराशा में बीतते हैं। फिर स्टेज है कि भी जब सचमुच डिप्रेशन है, व्यक्ति को लगता है कि यहाँ पर ट्रीटमेंट की भी जरूरत होगी, व्यक्ति डिप्रेस, और लास्ट है कि भी ही विल इवन कमिट सुसाइड,
2: तरीके ढूंढने लगते हैं,
3: इवन ही विल कमिट सुसाइड। फिफ्थ स्टेज में भी तरीके ढूंढ सकते हैं,
2: सिक्स में तो उन्हें इम्प्लीमेंट
3: कर लेगा, और दैट इज द वर्स्ट थिंग।
2: और थॉट को लेके एक जर्नी अगर हम देखें, तो थॉट को लेके भी एक बात कही गई थी कि थॉट ही जो जनरेट हो रहे हैं वो हमें डिप्रेशन में लेकर जाते हैं, और थॉट ही हमें बाहर भी ला सकते हैं।
3: हाँ जी हाँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं हमेशा बताता हूँ कि लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, समस्या समझते हैं, ये हो गया इसके कारण मैं डिप्रेशन, परंतु वह सत्य नहीं है। वास्तव में विचार ही फीलिंग्स निर्माण करते हैं। आमतौर पर मैं एक सिंपल इक्वेशन बताता हूँ कि दो चीजें, और दो चीजों को अगर जोड़ेंगे तो मैथमेटिकली ये बात प्रूव हो जाएगी। पहला इक्वेशन है कि जो कुछ भी हम फील करते हैं, अच्छा या बुरा, उन सभी फीलिंग्स का जो फाउंडेशन है वह है हमारे विचार। जब तक आपको सुख के विचार नहीं है, सुख का अनुभव नहीं होगा। जब तक निराशा के विचार नहीं है, डिप्रेशन का अनुभव नहीं होगा। हो सकता है कि अनकॉन्शियस लेवल पर वो डिप्रेशन के विचार चल रहे, परंतु है जरूर। और सेकेंड इक्वेशन है कि थॉट्स आर अंडर योर कंट्रोल। जैसे हाथ को ऊपर नीचे करना मेरे कंट्रोल में, मैं चाहूं तो 1 घंटा भी हाथ को ऊपर रखू, भले दर्द होगा, मुझे तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, परंतु यह संभव है। ऐसे ही विचारों को भी मोड़ना आपके कंट्रोल में।
2: दो रियलिटीज हमारे सामने आती है कि थॉट क्रिएट्स माय फीलिंग एंड द अदर वन इज कि मैं अपने
3: थॉट्स आर अंडर माय कंट्रोल टू एन एक्सटेंट। अब ये दोनों को अगर आप मिलाएंगे और एक तीसरा स्टेटमेंट बनाओ, तो तीसरा स्टेटमेंट बनेगा फीलिंग्स आर अंडर माय कंट्रोल, बिकॉज थॉट लीड्स टू फीलिंग एंड थॉट्स आर अंडर माय कंट्रोल। तो ये एक फाउंडेशन होना चाहिए कि भी जो भी आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ योर थॉट।
2: तो वो जो इंटरनल जर्नी की बात ये आती है,
4: दिस कैन चेंज लाइफ। ये फॉर्मूला, मतलब यही फॉर्मूला हमने बार बार अलग अलग रीति से दोहराया, लेकिन ये फॉर्मूला जिस जो रियली इसको समझ ले, लाइफ इज चेंज्ड पूरी तरह से, क्योंकि पूरी लाइफ कंट्रोल में आ जाएगी ना।
2: जब हमने थॉट जनरेशन की बात की थी, तो कुछ चीजें हैं जो थॉट जनरेट गवर्न करती
4: है,
2: वो कहीं चेंज करना भी जरूरी है कि मैं थॉट जनरेट कैसे कर रही हूँ या कैसे कर रहा हूँ, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट।
4: जो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं, एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है. तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं. जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग एंड इट्स नेचुरल, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी. तो आपकी बिलीफ सिस्टम आपके थॉट प्रोसेस पर बहुत पावरफुल.
2: और बिल्कुल जिस तरह से डॉक्टर पटेल ने भी कहा कि जो सिक्स्थ स्टेज है, जो कि हर पल खुशी है हमारे पास, हर पल सुख है, वो ही सत्य है. अगर हम ये माने तो फिर हम कभी खुशी कभी गम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. हम कहेंगे कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, वी हैव टू रीच देयर. डॉक्टर पटेल, एंगर की बात करते हैं. वी टॉक्ड अबाउट डिप्रेशन. जब हमने डिप्रेशन की बात की थी, दुख की बात की थी, तब हमने कहा था कि खुद के ऊपर जब हम गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा जो है वो केंद्रित है खुद पे, तो वो डिप्रेशन हो जाता है. लेकिन यही गुस्सा हमने जब बाहर भी देखा, तब भी डिप्रेशन का कारण निकला हमारे सामने, जो हमने ढूंढे थे कि कई बार कहीं ना, तो वो डिप्रेशन बाहर भी गुस्सा था. तो गुस्सा जो है वो एक बहुत बड़ा कल्प्रिट के सामने की तरह सामने आता है जब भी. और गुस्सा और असर्टिवनेस, ये दो एस्पेक्ट्स हैं. कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बड़ी थिन लाइन है, कहीं मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज एंगर एंड व्हाट इज असर्टिवनेस?
3: अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे बिहेवियर का स्पेक्ट्रम क्या है. अगर देखिए, हम जो भी अपना व्यवहार करते हैं औरों के साथ, तो उसके एक एंड में तो है सप्रेशन, जब अपने फीलिंग्स को दबा देते हैं, और दूसरा एंड है एंगर. आप देखेंगे दोनों हार्मफुल है. सप्रेशन से कैंसर हो सकता है, सप्रेशन से भी डिप्रेशन हो सकता है, और एंगर भी उतना ही हार्मफुल है.
2: अच्छा, जब हमने इंटरनलाइज कर दिया, सप्रेस कर दिया, तब हम
3: दैट कैन लीड टू डिप्रेशन, कैंसर ऑल्सो. और एंगर से हार्ट अटैक आ सकता है, ब्लड प्रेशर आज जो इतना बढ़ रहा है उसका कॉज गुस्सा है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम, इसको भी डिस्कस करना चाहिए. इस वक्त तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों बुरे हैं. जैसे कहा भी गया है कि मिडिल पाथ इज द बेस्ट पाथ,
2: मध्यम मार्ग.
3: तो ये जो मध्यम मार्ग इस बिहेवियर में क्या है, वो मध्यम मार्ग है असर्टिव बिहेवियर. मतलब क्या कि आप एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स, कि कोई चीज आपको पसंद नहीं आई तो जरूर बताइए, परंतु स्टेबिलिटी को मेंटेन करिए. क्रोध क्यों हार्मफुल है, क्योंकि जब आपको क्रोध आता है तब जो आपका लॉजिक है वो लॉजिक खत्म हो जाता है, है ना. इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि भी गुस्से में बुद्धि के आगे पर्दा आ जाता है,
2: नाश हो जाता है.
3: हाँ, बुद्धि का नाश होता है, आप ठीक से उस सिचुएशन को देख नहीं पाते और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं. भले आपने माफी भी मांग ली, परंतु उस व्यक्ति को जीवन भर याद रहेगा कि इसने मेरे पर गुस्सा किया था. तो इसलिए जो मध्यम मार्ग सबसे अच्छा है वह है असर्टिव बिहेवियर, की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके अपनी बात को एक्सप्रेस करो. बोल, उसमें ट्रेनिंग आवश्यक है, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, परंतु ये जो मध्यम मार्ग है वह सबसे अच्छा है. आई विल गिव यू कपल ऑफ एग्जाम्पल्स. जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि इससे बहुत कुछ सीखना है. इट्स अ रियल स्टोरी ऑफ माई पेशेंट, कि वो डॉक्टर थे वास्तव में, और एक बार उनकी जो सेक्रेटरी थी वो 25,000 रुपये लेके भाग गई. कि उस दिन बिल्कुल गुस्सा नहीं है, एकदम स्टेबल रहे. उनको तो ऐसा लगा कि भी मेरा लॉस कम हुआ, हो सकता था कि वो 2,00,000 भी लेके भाग जाती, सब कुछ उसी के कंट्रोल में था. और अब दूसरे ही दिन उनके घर पुश बटन टेलीफोन को रिपेयर करने की जरूरत थी, तो लाइनमैन को बुलाया. लाइनमैन ने कहा इसके 500 रुपये लगेंगे. तो वो बार्गेन करने, अरे 500 रुपया तो बहुत होता है, नहीं तो 100 रुपये का भी काम नहीं है. तो बस ये बार्गेन कर रहे थे, उतने में उसके बूढ़े पिता अंदर से बेडरूम से बाहर आए और कहा दे देना, क्यों इसके साथ इतना झगड़ा करता है. तो एकदम गुस्से में आ जाएगा, तुम चुप बैठो, क्यों ऐसा मेरे में दखल कर रहे हो, तुमको अक्ल नहीं है, बहुत कुछ बोल दिया. तो देखो, अब ये जो सिचुएशन को अगर हम देखे तो असर्टिव बिहेवियर क्या होती है. पहले तो इसमें यह समझना है कि भाई पिछले दिन गुस्सा नहीं आया था, लॉस बड़ा था,
2: क्योंकि सप्रेस भी किया होगा ना कहीं.
3: सप्रेस या तो ये बात थी कि भी लॉस वाज लेस, 25 के बदले 2,00,000 भी हो लेके भाग जाते, तो परंतु यहाँ पर उनको यह हुआ कि भी वो जो है ना 200-300 रुपए की बचत हो सकती है, थोड़ा बार्गेन किया जाए। और गुस्से का कारण यह था कि भी फादर मुझे इंटरफियर क्यों कर रहे, नो दैट जो ईगो को ठेस पहुंची उसके कारण गुस्सा आया। और अब यहाँ एसर्टिव बिहेवियर क्या होती, अगर तब वो अच्छे से ट्रेन होते तो वो यह कह सकते थे कि पिताजी आप प्लीज बैठो, ये इस मामले को मुझे डील करने दो, बोले थोड़ा स्ट्रांगली भी कह सकते हैं कि भी आपको इसका पता नहीं, आप प्लीज अपने कमरे में जाओ। दैट वॉज नॉट एन एंगर, लेकिन जो उल्टा सीधा बोल दिया वो पिता को कितनी उसकी फीलिंग हुई होगी और अपने पर भी हुई, जो गुस्से में कहा तो हाँ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हुई, गिल्ट की भी इफेक्ट हुई।
2: वो जो आपने कहा कि लर्निंग है, यू नो वी हैव टू लर्न टू बी असर्टिव एंड नॉट गेट एंग्री, हाउ कैन वी डू दैट?
3: कुछ एग्जांपल्स से थोड़े डिटेल में अगर हम जाए और कुछ और भी एग्जांपल्स ले तो ये बात स्पष्ट हो सकती है। और एक उदाहरण देता हूँ कि एक बार एक व्यक्ति ऑफिस से आए और उन्होंने अपने वैलेट से कुछ पैसे वहां पर रख दिए और स्नान करने चले गए। तो एक छोटा सा बच्चा था, करीब 2.5-3 साल का, खेलता खेलता वहां आया, 500 रुपए की नोट थी, उसे खेलता रहा खेलता रहा, उसने फाड़ दी। जब पिता ने ये देखा तो इतना गुस्से में आया कि उसकी पिटाई कर दी कि बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और हॉस्पिटल का बिल हुआ 3,500 रुपए। तो देखो गुस्से का क्या रिजल्ट है।
2: वो, तो और वो 3,500 तो छोड़िए, वो बेचारे वो, वो गिल्ट में जो रहे होंगे वो पूरा टाइम।
3: और जो बच्चे को इफेक्ट हुई, हेल्थ पर भी उसकी इफेक्ट हुई, जो ट्रॉमा हुआ वह ट्रॉमा भी बहुत बड़ा था। तो अब यहाँ एसर्टिव बिहेवियर क्या होती, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि परिस्थिति क्रोध पैदा नहीं करती है, हमारे विचार क्रोध पैदा करते हैं, जो आगे भी हमने डिस्कस किया। यहाँ पर भी वो परिस्थिति नहीं कर रही है, परंतु विचार कि भाई ये 500 रुपए का लॉस हुआ, पिछले एग्जाम्पल में एक भी फादर क्यों इंटरफियर कर रहे हैं, तो अगर उनके विचारों में परिवर्तन लाए कि सबसे पहले तो मेरी गलती है कि जब छोटा बच्चा घर में है तो 500 रुपए के नोट ऐसे ओपन नहीं छोड़ सकते, कल आपने जहर की बॉटल छोड़ दी होती थी वो पी लेगा, तो दिस इज योर मिस्टेक, नाउ मे बी यू हैव लॉस्ट 500 रुपीज, परंतु एक बहुत बड़ा सबक है।
2: लेकिन वो जो एंगर उन्होंने बच्चे पे निकाला या फादर पे निकाला, वो भी कहीं ना कहीं और से भी एक्यूमुलेट हुआ होगा। एक्चुअली सिस्टर शिवानी, ये जो एक्यूमुलेशन है, हम अगेन सेपरेशन, सेपरेशन और एंगर के दो आपने कहा धुरियां हैं, दो यू नो बीच का मार्ग जो है असर्टिवनेस है। ये सप्रेशन ही जो हमने कहीं सप्रेस करके, वो एंगर कहीं एक आई थिंक इट्स अ साइकिल।
4: आई डोंट नो, बट थोड़ा सा फर्क शायद वट एवर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के, अगर यहाँ के एंड पे सप्रेशन है, यहाँ इस एंड पे एंगर है, तो असर्टिवनेस शायद बीच में नहीं आएगा, क्योंकि सप्रेशन आई डोंट नो बिकॉज क्योंकि सप्रेशन अगर कर दिया इसका मतलब वो एंगर वाली फीलिंग तो अंदर जेनरेट हो ही गई ना, तो वो तो फिर असर्टिवनेस वुड बी प्रोबेबली जहाँ एंगर की कोई फीलिंग ही नहीं जेनरेट हो रही है। क्योंकि कहाँ अगर एंगर की फीलिंग, मतलब आपने वो एनर्जी तो अक्यूमुलेट कर ही ली है अंदर, अब वो है आपके अंदर, अब आप कितना भी पोलाइटली या कितना भी पॉलिश्ड वे में दूसरे को बोलने की कोशिश करें, आप आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएं, लेकिन वो एनर्जी तो ट्रांसफर हो ही रही है। और आप एक या दो बार असर्टिव होते हैं, लेकिन जैसा ही सामने वाला नहीं मानता है तो वो एंगर अक्यूमुलेटेड है, तो वो स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ चला जाएगा कि वो एंगर बाहर निकल आएगा,
2: निकलेगा ही। एक्चुअली अगर हम दोनों इंसिडेंसेस लें कि फादर ने जब कहा तो ये जो मेरी ईगो हर्ट हुई, वो ईगो हर्ट होने वाला एस्पेक्ट आना ही नहीं चाहिए, बट क्योंकि मैं एक डील कर रहा हूँ, फादर विल नॉट अंडरस्टैंड दैट, सो यू हैव टू मेक द फादर अंडरस्टैंड, फादर होल्ड ऑन, ये एक डीलिंग है, इट्स अ कमर्शियल डील, आई विल डील यू जस्ट, बट इट्स नॉट लाइक इफ ही फेल्ट हर्ट,
4: इट वो नहीं कर पाओगे आप,
2: फिर वो असर्टिवनेस आई थिंक समवेयर, आई थिंक इट शुड बी अगेन अवे एंगर के दोनों एस्पेक्ट, ये जो दोनों धुरियों के एस्पेक्ट से दूर होके, चाहे मध्य मार्ग ही कहें हम उसको, कि वो एक मध्य मार्ग है, या ओनली आई थिंक सोल्यूशन शुड बी ओनली वे इज असर्टिवनेस, क्योंकि काम तो हमें करवाने हैं फिर।
4: लेकिन असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस जैसे डॉक्टर साहब ने कहा इनर स्टेबिलिटी, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ चाहे वो सप्रेस कर दिया लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो, तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव. तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, मतलब कोई भी सामने वाले को डिसिप्लिन करना है, तो आई से लुक नॉट लाइक दिस फिनिश्ड, यू नो. एंड असर्टिव जब हम होते हैं हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है. एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली इतने डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप होने वाला है.
3: तो शिवानी बेन जो कहते हैं उसमें एक दूसरे एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में सोच रहा था, वह है सजगता या तो अवेयरनेस. अगर वो सजगता आ जाए पहले ही कि भी गुस्सा आ रहा है या सप्रेशन हो रहा है एंड देन यू प्रॉपरली से देन यू एसर्ट, तो फिर वह नेगेटिव इफेक्ट कम
4: होगी. क्योंकि मेजोरिटी लोग अपने एंगर को असर्टिवनेस का नाम दे देते हैं एंड फिर अपने एंगर को जस्टिफाई कर देते हैं कि काम करने के लिए असर्टिव है. वो सारा क्रोध, यू नो, वो सारा कुछ क्रोध ही है.
2: और अगेन उसको जानने का कि क्या मैं एंग्री थी या मैं असर्टिव थी, अपने अंदर इंटरनलाइज करके एक बार फिर से ये बात करना कि क्या मैं सहज रही, आई फेल्ट बैड अबाउट इट बिकॉज द वे द मोमेंट नेगेटिव एनर्जी जनरेट हुई मतलब मुझे बुरा लगा. तो अगर मैं असर्टिव रहूंगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, आई एम एबल टू हैंडल द सिचुएशन विदाउट हर्टिंग एनीवन
4: एंड हर्टिंग योरसेल्फ.
2: यस, हाँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, सेल्फ बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट. यहाँ एक बार फिर डिटेल में जाने की कोशिश हम ये करते हैं डॉक्टर साहब, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे आते हैं कि क्यों एंगर, एक तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव एनर्जी जनरेट करके मुझे बर्न आउट कर रहा है, ये तो हम कहते हैं. अगर हम रियली केमिकल सेंस में जाएं, अगर मेडिकल टर्म्स में जाएं, व्हेन आई गेट एंगरी ऑफ कोर्स उसके जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो दिख रहे हैं मुझे कि मुझे कैंसर तक हो सकता है, मुझे ब्लड प्रेशर हो जाता है, मुझे हार्ट अटैक हो जाता है, बट केमिकली व्हाट रियली हैपेंस,
4: वो क्षण क्या हो जाता है.
3: सबसे जो बड़ी बात है हमको ब्रेन को समझना होगा कि भी हमारे ब्रेन में दो सिस्टम्स है, एक सिस्टम है ना वो एक्सेलरेटर जैसी है, दूसरी सिस्टम ब्रेक की तरह है. बेस्ट है इसका बैलेंस होना चाहिए, जिसको कहा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. लेकिन जब गुस्सा आता है तब जो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्सेलरेटर की तरह है वो बहुत फास्ट काम करती है और उससे सारी सिस्टम पर इफेक्ट होता है. ये जो हम खुद एहसास करते, आपने भी जैसे कहा कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और आपको दिमाग में फीलिंग होगी, सारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ होने लगेगा, सो दैट इज बिकॉज सिंपैथेटिक सिस्टम हैज इज वर्किंग, उसकी एक हार्मफुल इफेक्ट है. दूसरा है कि शरीर में कई हॉर्मोन्स भी है, एक तो है कॉर्टिसोल की जो बहुत डेंजरस हार्मोन है, वो कॉर्टिसोल बड़ी मात्रा में रिलीज होता है जब गुस्सा आता है. दूसरा एक एड्रेनालिन, एड्रेनालिन भी उसकी सर्ज होती है और बहुत सारे भी, ये तो बेसिक हॉर्मोन्स है. कहते हैं हमारा ब्रेन है आज 800 से ज्यादा केमिकल्स रिलीज करता है, वो सारे के सारे में डिस्टर्बेंस आते हैं और इसके कारण बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट होती है.
2: डेफिनेटली.
3: और एक जो चीज समझनी चाहिए कि दिमाग में जो ब्लड वेसल्स है जिसको कैपिलरीज कहा गया है, बहुत ही पतली एकदम थिन ब्लड वेसल्स है, तो जो थिन ब्लड वेसल्स है उसमें जो फोर्स से ब्लड जाएगा तो फूट भी सकते
2: हैमरेज हो जाता है या
3: नर्वस ब्रेकडाउन डिफरेंट है. हाँ, हेमरेज की जो बात है,
2: इवन पैरालिसिस देखा है मैंने कि बहुत गुस्से में आते हैं तो एकदम से पैरालिसिस.
3: और अगर पैरालिसिस न भी हुआ तो भी एक सूक्ष्म में तो डैमेज हो रहा है,
2: नंबनेस हो सकता है,
3: आपको पता नहीं चलता है. नहीं, क्योंकि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर जो है,
2: सो एवरी टाइम वी गेट एंग्री व्हाट रियली
3: हैपेंस. हाँ, सपोज कि भी कितने कोई स्टडी नहीं हुई परंतु कुछ तो न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं.
2: अच्छा, और ये न्यूरॉन्स
3: 2500 जितने भी है कुछ न्यूरॉन्स आपके डैमेज होते हैं. और न्यूरॉन्स ये कैसे, आपने बहुत अच्छा कहा कि जो फिर से रिवाइव नहीं हो सकते, जैसे यहाँ पर कहीं घाव हो तो दोबारा ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार न्यूरॉन्स डैमेज हुए तो वो रीजनरेट नहीं हो सकते।
2: तो वही जैसे कहा जाता है कि गुस्से में जो हमने तीर निकाला है, एक तो ये कि अपना डैमेज तो किया ही, अगर हम देखें न्यूरॉन डैमेज किया जो कि कभी दोबारा नहीं जनरेट हो, दोबारा नहीं बन पाएंगे, दूसरी तरफ हमने जिसको कहा है वो जो तीर निकला है वो भी कभी वापस तर्कश में नहीं आता है।
4: लेकिन उसको अगर हम, वही इम्पोर्टेंट है उस, वो हम बहुत ज्यादा आजकल नहीं सोचते हैं कि दूसरे को हमने हर्ट किया, क्योंकि हम अपने एंगर को जस्टिफाई कर देते हैं कि नहीं उसने गलत किया था तो उसे डांटना ही था। सो फॉरगेट इट, अगर आप दूसरे के लिए नहीं सोच पाते हो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो आप अपना इतना सारा नुकसान कर रहे हो, इतने सारे केमिकल इम्बैलेंस, इतना सारा जो आपके, अपने लिए तो सोचो।
3: अपने
2: अच्छा, और ये जो आपने कहा कि जो केमिकल्स जनरेट हुए जो कि काफी हार्मफुल है, इनको स्टेबल होने में फिर वक्त लगता होगा,
3: बहुत टाइम लगेगा ना, इट कैन बी इवन डेज टुगेदर
2: एक्चुअली,
3: जब नॉर्मल स्टेज में आए।
2: तो जब हम कहीं अपनी हेल्थ की बात करते हैं, जब हम खुद से प्यार करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बॉडी है ये इम्पोर्टेंट है, एक व्हीकल तो है ही, हमें जिस मंजिल तक पहुंचना है उसका, तो उसको मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है।
4: इसीलिए हम कहते हैं कि हम अपने आप से आज प्यार नहीं करते, क्योंकि हम सारा दिन बहुत ज्यादा नुकसान अपना करते हैं, तो औरों को क्या प्यार देंगे, खुद से ही प्यार करना नहीं सीखा अभी। जहां खुद से प्यार करना सीखेंगे तो इन सारी चीजों पर कितना अटेंशन रखेंगे, दूसरे को ठीक करने जा रहे हैं, अपने को बीमार कर रहे हैं गुस्सा करके, यू नो दिस इज सो फ्रूटलेस। एब्सोल्युटली,
2: एंगर इज इम्पोर्टेंट, बिना गुस्से के काम नहीं होता है, एंगर इज एन आउटलेट। ये इतनी सारी मिथ में हम कितना भी समझा लें नहीं निकलते हैं लोग, मतलब हम नहीं निकल पाते,
3: लेकिन लोग चाहते हैं, ये भी नहीं कि नहीं चाहते, वास्तव में उनके पास प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं है। हमारे पास ब्रह्मा कुमारीज में जो कहीं माउंट आबू में कॉन्फ्रेंसेस होती है, तो हमारी जो बड़ी दादियां हैं वो हमेशा ये कहती है कि भी कोई ना कोई आप दान दे के जाओ, पैसे का दान नहीं, परंतु अपने में जो बुराइयां है वो बुराइयां यहाँ छोड़ के जाओ,
2: दान दे के जाओ, एंगर का दान करके जाओ।
3: तो मेजोरिटी एंगर कहते हैं।
2: बिल्कुल, आज हम आप सबसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आज आज के इस प्रोग्राम को देखते देखते, आज की इस कड़ी में एक दान आप भी कीजिए, और वो है एंगर का। एंगर को जरूर दान दे दीजिए, और मुझे तो लगता है कि आग में जला दीजिए, स्वाह कर दीजिए।
3: लोग चाहते हैं, ये जो सारे इससे देखा गया है कि भी लोग इसको छोड़ना चाहते हैं, सिर्फ बात है कि उनके पास टेक्निक्स नहीं।

0: बिलीव एट लीस्ट कि अगर काम प्यार से नहीं हो सकता तो डांट कर जबरदस्ती करवाने का उसमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं है. यू नो योर रिलेशनशिप इज ब्रेकिंग डाउन एंड मोर इम्पोर्टेंट इज रिलेशनशिप नॉट द वर्क. लेकिन फिर भी अगर काम करवाने के लिए आपको वो असर्टिवनेस का आधार लेना है तो इनर बिल्कुल एंगर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसको असर्टिवनेस नहीं कह सकते. यू आर चीटिंग योर सेल्फ. डोंट चीट योर सेल्फ. से आई एम एंग्री. नो डोंट से आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट बींग असर्टिव. ये चीटिंग है अपने आप से, दूसरे से भी. तो आप पहले तो अंदर बिल्कुल स्टेबल है और फिर आपको जो कुछ कहना है उसको अथॉरिटी से और बहुत डिसिप्लिन. एंड असर्टिव डजेंट हैव टू बी लाउड.
1: सॉफ्टली.
0: यू नो इट डजेंट हैव टू बी लाउड. हम सोचते हैं जोर से बोल दिया तो दैट इज असर्टिव, दैट इज अ ट्रेस ऑफ एंगर. आपका वॉल्यूम बढ़ ही नहीं सकता है जब तक वो एनर्जी अक्यूमुलेट नहीं हुई है अंदर. तो इवन जब हमारा वॉल्यूम इस तरह से जोर से बढ़ जाता है दैट एनर्जी.
2: नमस्कार, मैं मोनाली सहवागत, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ख्वाब और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत
2: साथियों
1: कर रहे हैं।
2: हमने कई बार अक्सर सुना है, जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं, जल की बूंद, एक एक बूंद जीवन की बूंद है। जल के बारे में हम आजकल कुछ ज्यादा ही सुन रहे हैं। कारण मुझे नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि हम सब अपने आसपास कहीं ना कहीं अपने आसपास के क्षेत्रों में देखते हैं कि जल की आपूर्ति, जल की कमी और जल को लेकर के हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो कह सकते हैं जो टकराव है खुद के साथ, अपने अस्तित्व के साथ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसे में जल के साथ दोस्ती कैसे की जाए, ऐसे में जल के साथी बनकर, जल के पहरेदार बनकर कैसे जल की सेवा की जाए और जल से समाज की सेवा की जाए, इसी विषय को लेकर के आज 90.4 FM रेडियो मधुबन में मैं आरजे शांतनु आपके सामने आया हूँ, आपके चहेते कार्यक्रम यशस्वी भारत में। हर बार की तरह हमारे साथ आज एक और बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, बुंदेलखंड से उमा शंकर पांडे जी। उमा शंकर पांडे जी को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और क्यों? क्योंकि वो हमारे देश के जल के पहरेदार हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं उमा शंकर जी का। उमा शंकर जी, आपका हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत तहे दिल से आभार है जो आप कर रहे हैं, स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे रेडियो मधुबन में आमंत्रित किया, मेरे विचार साझा होंगे। मैं ईश्वरी विश्वविद्यालय के, ईश्वरी विद्या के जो हमारे संस्थापक हैं, श्री ब्रह्मा बाबा जी को नमन करता हूं कि उन्होंने हमको देश में एक ऐसा संगठन दिया है जो केवल और केवल राष्ट्र निर्माण के लिए, व्यक्ति के जीवन चरित्र निर्माण के लिए काम करता है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद उमा शंकर जी। मैं जब आपके विषय में पढ़ रहा था तो मुझे बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को मिली जिनको लेकर के मुझे सवाल पूछना है, लेकिन सबसे पहला चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अगर अपने जीवन को टटोले, अभी से लेकर के आपके बचपन से लेकर के कहीं से भी, कौन सा वो ऐसा एक किस्सा था या कौन सा एक वो पहलू था आपके जीवन में जब जल ने आपके जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान ले लिया?
3: आप बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मेरी पूज्य माता जी, जिस गांव में मेरा जन्म हुआ है, उस गांव में ना तो सड़क थी, ना स्कूल थे, ना आने जाने के रास्ते थे। ऐसे में हम लोगों की जो शिक्षा दीक्षा हुई वो बाहर हुई है। काफी समय हम बाहर रहे। बाहर रहने के बाद मैं अचानक एक बार गांव गया, वैसे गांव जाता रहता था लेकिन अचानक एक बार गांव गया और शाम के वक्त में गांव गया तो मैंने अम्मा से कहा, मुझे भूख लगी थी, मैंने अम्मा से कहा कि मुझे माता जी भोजन करना है। तो अम्मा ने मेरी कहा कि बेटा भोजन तो यहाँ नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों? बोले गांव में 2 दिन से एक लाश रखी हुई है और उसका लड़का सूरत गया हुआ है, और हमारे गांव की परंपरा है कि गांव में कोई किसी भी जाति मजहब का व्यक्ति जब उसका अनंत की यात्रा पर जाता है तो भोजन गांव में जब तक नहीं बनेगा जब तक उसका क्रियाकर्म नहीं हो जाए। तो मैंने कहा माता जी ये कल खत्म हुई थी, आज रखी है, कल उसका लड़का आएगा तो इसके लिए तो बहुत बहुत। बोले तुम यहाँ, हम लोग थोड़ा संपन्न परिवार में पैदा हुए हैं और संपन्न लोगों का धर्म बनता है कि जो भी थोड़ा बहुत हम लोग के पास संसाधन है उससे अगर आप भोजन कर रहे हैं और आपके बगल वाला भूखा है तो आपके भोजन करने कोई लाभ है नहीं। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि देखिए माँ से बड़ी मातृभूमि होती है और यहाँ 98% गाँव खाली हो गया है, यहाँ अपराध है क्योंकि भोजन का संकट है, कोई स्रोत नहीं है, रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, तो अब ऐसे में अगर ये लड़के बाहर नहीं आएंगे तो करेंगे क्या? तुम एक कुछ करने में तुम्हारे अंदर जज्बा है, तुम इस गांव के लिए कुछ करो। मैंने कहा मैं अकेले कैसे कर सकता हूँ? तो माँ ने मेरी कहा कि अकेले ही इस दुनिया में जो ही भागीरथी प्रयास हुए हैं वो किसी एक व्यक्ति ने शुरू किए हैं और उसके साथ कारवा बनता गया है, आगे चलता गया। मैं बात माँ की सुन करके रात में चिंतन करता रहा और अम्मा ने ये बात कही कि माँ जो जन्म देने वाली उससे बड़ी जन्मभूमि। तो मुझे और उनकी बात में गंभीरता लगी। हम बगल में हमारे बड़े भाई की ससुराल थी, हम वहां चले गए, हमने भोजन किया और वापस रात में घर आ गए, बाइक से गया, वापस आ गया। रात में चिंतन किया, सुबह अम्मा ने मुझसे कहा था गांव घूम के आना थोड़ा। तो मैं गांव घूमने के लिए निकला तो हर अधिकांश घरों में ताले लगे थे, कोई एक भी नौजवान गांव में नहीं था। वृद्ध और कुछ वैसे बीमार लोग मैंने देखे गांव में है। मैंने पूछा कि भैया फलाने कहां गए, धमाके कहां गए, जो मेरे साथ के लोग है। बोले वो सूरत में है, कोई बंबई में है, कोई गुजरात में है, कोई पंजाब में है, कोई ईटा पाथ रहा है, कोई किसी के पल्लीदारी कर रहा है। वो घटना मेरे जीवन में बड़ी घटना बनी। और शाम को मैं मेरे नजदीक बांदा शहर है, बांदा शहर में मैं आया और बांदा शहर में ईश्वरी विश्वविद्यालय की एक शाखा है, वहां ब्रह्म कुमार ओम प्रकाश इंजीनियर ओम प्रकाश मसूरहा साहब, हमारे यहाँ के बड़े संपन्न लोगों में उनकी गणना होती है, और उनके सारे अधिकांश लोग बच्चे अमेरिका में और दूसरी जगह वो रहते हैं। वहीं पर एक आगे एमएलए थे प्रोफेसर प्रकाश शर्मा जी, क्योंकि दादा का बड़ा सम्मान हमारे शहर में है, गणमान व्यक्ति है। पहले वो राजनीति में उनका बड़ा योगदान था, फिर वो राजनीति छोड़ करके ईश्वरी विश्वविद्यालय की सेवा में लग गए। तो मैं उनके यहाँ बैठा था, शर्मा जी ने मुझसे कहा कि पांडे जी आप अपने गांव के बारे में बहुत जानते हैं या कम जानते हैं? तो मैंने कहा भाई हम पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन आप लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप ज्यादा मेरे क्षेत्र के। बोले आप मेरे साथ चलिए, जरा मैं आपको जेल घुमा के लाता हूँ, क्योंकि विधायक जेल बिस्तर होते हैं। तो उसी समय मैं उनके साथ में, ये सब ईश्वरी कृपा थी, कुछ मुझे नहीं पता कि ब्रह्मा बाबा क्या चाहते थे या क्या मेरे ऊपर उनका कृपा थी। मैं उनके साथ में, तब विधायकों के पास गाड़ी नहीं होती थी, स्कूटर से चलते थे, और वो प्रोफेसर थे तो और भी सज्जन व्यक्ति थे, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, सीधे स्कूटर में बैठ के हम लोग बांदा जेल में गए। तब बांदा और चित्रकूट एक था, दोनों बांदा जिले में ही चित्रकूट आता था, बाद में जिला अलग बन गया। वहां देखा तो पहले आदमी, जब जो मुलजिम लोग होते थे, विचाराधीन कैदी होते थे, उनके एक तख्ती टांगी जाती थी, तो उसमें लिखा था जखनी जखनी जखनी जखनी करके मैंने 20 लोगों के नाम देखे। मुझे लगा कि यार मेरे गांव के लोग सब जेल में, ज्यादातर लोग हैं, 20 लोगों का जेल में होना बड़ा कठिन बात है एक गांव से। हम आए तो प्रभाजाय जी ने मुझसे कहा क्यों पांडे जी कुछ देखा आपने? मैंने कहा भाई साहब मैंने तो नहीं देखा। अरे बोले यार तुम्हारा जिस गांव में तुमने जन्म लिया है वहां के 20 लोग हैं। तो मैंने कहा भाई साहब मैं अकेले कैसे कर सकता हूँ? भाई साहब कहते थे विधायक जी, बोले अब ये सोचना तुम्हारा काम है। हमने कहा ठीक है सोचते हैं। फिर मन में आया कि इस गांव को कैसे ठीक किया जाए। मैं दोबारा लोगों के साथ मैंने संवाद किया कुछ समय के पश्चात, फिर मैं 10-15 दिन के बाद गया, और जाने के बाद मैंने अपने जैसे नौजवान लड़कों को, एक त्योहार पढ़ रहा था, हमारे यहाँ बुढ़वा मंगल होता है, वो होली के बाद में जो पहला मंगल होता है उस दिन उत्सव होता है, रंग उत्सव होता है। कम लोग थे तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये गांव के लिए कुछ किया जाए। कहें भैया मदद कौन करेगा, जो जेल में है लोग उनकी पैरवी करनी है, एक तो क्राइम छोटा करते हैं 10 क्राइम पुलिस लगा देती है। मैंने कहा यार बात तो कठिन बात है। फिर मैं बांदा आया, तत्कालीन कलेक्टर और तत्कालीन एसपी से मिला था। हमारा रीजन झांसी नहीं था, बांदा रीजन हमारा नहीं था, झांसी में हमारा कमिश्नर बैठते थे, तो डीआईजी और कमिश्नर झांसी बैठते थे। मैंने उनको बताया मैं अपने गांव को आदर्श गांव या अच्छा गांव बनाना चाहता हूं, रास्ते नहीं है, आने जाने का कोई साधन नहीं है, मैं चाहता हूं मेरा गांव ठीक गांव बने। तो मैं कलेक्टर था, बीबी पांडे साहब, ब्रजवल्लभ पांडे कलेक्टर थे, तो उनसे मैंने कहा कि साहब मेरे गांव, बोले प्रधान से मिलिए। मैंने कहा प्रधान ने कहा कि मैं नहीं कुछ कर सकता। बोले तो प्रधानमंत्री कुछ कर सकता। हमने कहा प्रधानमंत्री कुछ करेंगे तो आप मुझे झंडी दिखाएंगे? बोले हाँ मैं दिखाऊंगा। उनको विश्वास थोड़ी था कि ये सब घटनाएं चल रही है। मैं गांव आया, मैंने कुछ साथियों से बात करी, बात करने के बाद लड़के तैयार हो, मैंने कहा भाई दिल्ली चलना है, प्रधानमंत्री से मिलने चलना। नए जवान लड़के थे, ना कोई जानते थे कुछ कि क्या करना है कैसे करना है, कोई रास्ता नहीं, कोई गॉडफादर नहीं। हम लोग तैयार हुए, साइकिल लिया और 15 साइकिल तैयार किया और गांव से बांदा आ गए। 10 बजे हम लोग बांदा पहुंचे, 10:30 बजे डीएम साहब बैठे थे। हमने कहा चलिए साहब झंडी दिखाइए। बोले यार मैं तो मजाक कर रहा था, आपने सीरियस लिया? मैंने कहा साहब सीरियस मजाक नहीं है, प्रधानमंत्री करेगा तो प्रधानमंत्री चल रहे। खैर उन्होंने झंडी दिखाया और आगे के लिए चिट्ठी लिख दिया, जो हमारा रास्ते का जो मार्ग में कहीं कोई दिक्कत ना हो, उन्होंने एक लेटर भी हमको दे दिया और हम वहां से निकल लिए। हम लोग करीब 30 दिन तक साइकिल चलाते हुए, और हमको 700 किलोमीटर 750 किलोमीटर साइकिल चलाकर हम लोग दिल्ली पहुंचते हैं। ये बात हमारी जुलाई की बात है, 15 अगस्त था। बीच में हमारे सांसद थे, तो भीष्मदेव दुबे सांसद थे, हमने उनसे कहा, बोले प्रधानमंत्री बहुत व्यस्त होते हैं, इतनी जल्दी नहीं मिल सकते हैं। हमने कहा कोशिश तो कर लीजिए, शायद वो हमको समय दे दे। बोले ठीक है, तो आप 5 दिन हमारे यहाँ रहिए, अतिथि बन के रहिए, दिल्ली में साइकिल से घूमिए। नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से थोड़ा हम लोगों को सपोर्ट मिला घूमने घामने का, एनवाईके के माध्यम से मिला, और हम लोग घूमे और हमको 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी के यहाँ राजीव जी से मिलने का समय। तो हम लोग 87 की बात बता, तो हम लोगों को मिले और उन्होंने हमें ये कहा, सर्टिफिकेट दिए हम लोगों को, और ये कहा कि मैं सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आप अपने गांव को देश का अच्छा गांव बनाएंगे और पूरे देश में ये गांव नेतृत्व करेगा। जिस गांव के लोगों में इतनी जिज्ञासा नौजवान में हो, उस गांव को कोई रोक थोड़ी सकता है। और हमको उन्होंने एक साइकिल दिया और कुछ हमको 5,000 रुपया की धनराशि दिया और पीठ में हम लोगों के हाथ फेरा और हम लोग वापस आ गए। अब मेरा काम शुरू होता है। यहाँ से उत्साह बढ़ता है। फिर मैं कलेक्टर साहब से मिला, एसपी से मिला, एसपी कलेक्टर से मैंने कहा कि मेरे गांव के लोगों पर मुकदमे लिखे गए हैं, तो आप कृपा करिए कि मैं मेरे वो लोग आना चाहते हैं मुख्यधारा में, आप कुछ सपोर्ट करिए। बोले ठीक है, आप तय करो। जेल में हम लोग गए, सब लोगों के जेल में बात किया, एसपी गए, कलेक्टर गए, और जेल में हम लोगों ने बात की, तो उन्होंने हमने कहा कि भाई आप अपराधी, आपके लड़के भी अपराधी बने चाहते हैं? बोले कोई नहीं चाहता कि मेरा लड़का अपराधी बने, हम साहब मुख्यधारा में जुड़ेंगे लेकिन हमारी एफआईआर, हमें परेशान न किया जाए, हम गांव में काम करेंगे और वहीं खेती करेंगे, बाड़ी करेंगे, सब्जी पैदा करेंगे, गाय दूध की व्यवस्था करेंगे, आप हमको सपोर्ट करिए, अगर हम एक अपराध करें तो आप हमको जो सजा हो कर दीजिए। एसपी मेरे गांव गए, सारे लोग इकट्ठे हुए, कलेक्टर साहब मेरे गांव गए, और सब लोगों ने तय किया कि जख्मी के किसी व्यक्ति की एफआईआर तब तक नहीं होगी जब तक एसपी कलेक्टर को बताना दिया जाए। एक बल मिल गया, अब बल मिल गया तो सारा काम अब शुरू हुआ। हमने बिजली के लिए खंभे लाए, गाड़ी बैल में लाद के खंभे लाए, मिलकर के सबने रोड बनाया, सब लोगों ने तालाब खोदना शुरू कर दिया। ये छोटा छोटा काम, हम लोग पहले रोड बनाए, फिर हम लोग बिजली लेकर आए, फिर हमने स्कूल बनाया, सबने मिलकर स्कूल प्राइमरी बनाई, फिर जूनियर हाई स्कूल बनाया, फिर राजकीय हाई स्कूल बनवाया, फिर इंटर कॉलेज बनवाया, एक तरफ शिक्षा का काम शुरू किया, दूसरी तरफ स्वरोजगार स्वलंबन, क्योंकि गांव तो स्वलंबी है। अगर कोई कहे हम गांव को स्वलंबी बनाएंगे तो उसका भ्रम है, गांव तो पहले से ही स्वलंबी रहेंगे, गांव से तो शहर में सब कुछ आता है, इसका मतलब गांव स्वलंबी है। तो हमने फिर गांव में अपने जैसे लड़कों को तैयार करके हम सबने, मैं नहीं, हमने सबने मिलकर काम शुरू किया। हम लोग आते गए जाते गए, कभी अपना ईश्वरी विश्वविद्यालय की शाखा शुरू करी, कभी विचारक को बुला लिया, कभी संघ से लोगों को बुलाया, कभी किसी पर सर्वोदय के लोगों को बुलाया, और अपना धीरे धीरे काम करते गए। काम करते करते हम लोगों का एक स्तर काफी ऊंचाई तक आया, और फिर हम लोगों ने मेड़बंदी का एक विनोबा भावे का एक, मेरे चूंकि बाबा और मेरे पिताजी के विनोबा जी के संबंध थे, विनोबा जी काफी लंबे तक भूदान का यहाँ यज्ञ चला हमारे चित्रकूट में, तो विनोबा जी और नानाजी देशमुख जी यहाँ लंबे समय तक प्रवास किए हैं, उन्होंने बड़ा काम नानाजी ने किया है। उसी बीच में घटना होती है, नानाजी देशमुख गांव को बनाते हैं, और गांव में, उस गांव में जहां वो कृषि फार्म बनाते हैं, वहां चोरी हो जाती है, तो पुलिस पता लगाती है कि चोर वो कहां गए, वो जखनी गांव के चोर। तो नानाजी ने कहा कि जखनी गए हैं तो उस जखनी गांव को पहले ठीक किया जाए, और नानाजी ने मुझसे कहा कि आप वहीं बैठ जाओ, तो मैं उस गांव में बैठ गया, और बोले एफआईआर नहीं करेंगे किसी की। फिर वो गांव मेड़बंदी यज्ञ शुरू हुआ, अभियान खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। इस अभियान को शुरू करने के बाद हम लोगों ने खेतों में पानी रोका, फिर हम लोग और थोड़ा आगे आए, बांसमती एक किलो पैदा नहीं होता था बुंदेलखंड में, हम लोगों ने बांसमती धान शुरू किया, और पहली बार हम लोगों ने 500 क्विंटल बांसमती पैदा किया 10 लोगों ने मिलकर। फिर जब हम 10 ने किया, अगले साल 50 लोग तैयार हुए, हम लोगों ने 5000 क्विंटल पैदा किया सबने। फिर इसके बाद 100 लोग तैयार हो गए, हमने 10000 क्विंटल बासमती पाए, और उससे बासमती जो जहां पर हमारे यहाँ बीजा दूनी नहीं होता था, पानी नहीं था जहां पर, वहां बासमती पैदा करना तो बहुत कठिन बात है। ईश्वर की कृपा, सबके सच्ची लगन, उस बासमती से जखनी से निकल के बासमती 25 गांव गया, 50 गांव गया, 100 गांव गया, 1000 गांव गया, और पूरे बुंदेलखंड में जहां 1 किलो बासमती नहीं था, वह झांसी जैसी जगह में 5 राइस मिले बासमती धान बनाने की लगाई गई। अब आप समझिए, सरकार ने धान पिछले 10 वर्षों में किसानों से लगभग 1000 करोड़ का धान खरीदा, डायरेक्ट सामान्य धान खरीदा, बासमती छोड़ दी। इसके बाद अब हम लोगों का 25 मई को विज्ञान भवन में कार्यक्रम होता है, जिसमें अब्दुल कलाम साहब मुख्य अतिथि होते हैं, और हरबंश प्रसाद जी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे, वहां मोहन धारिया साहब आते हैं, अन्ना हजारे साहब आते हैं, स्वामी अग्निवेश जी आते हैं, मैं भी जाता हूँ, पद्मभूषण निर्मला देश पांडे जी आती हैं, हम लोग सब लोग वहां एक तो कलाम साहब ने एक बात कही कि आने वाले समय में गांव में पानी का संकट होगा, हम सब लोग वाटर विलेज बनाने पड़ेगा। तो वहां से मुझे जलग्राम मिल गया, वहां से मैंने जलग्राम बनाने की कल्पना सुनी कि अब मैं अपने गाँव को जलग्राम बनाऊंगा। अनुपम मिश्रा जी वहां थे पानी के, जो आज भी खड़े हैं, किताब जिन्होंने लिखी है, तो मैं वहां से मिलकर के हमने जलग्राम, फिर जखनी को जलग्राम बनाया, और जखनी को जलग्राम,
2: आपका ये जो आपका यात्रा है जखनी को जलग्राम बनाने का, जलग्राम तो अभी एक मुकाम है, लेकिन उस मुकाम को पहुंचने या पाने के पहले आपने जखनी को पहले तो सामाजिक जो बुराइयां हैं उससे पहले मुक्त किया, जो अपराध है उससे
3: मुक्ति कराई, शराब से मुक्ति कराई, अपराध से मुक्ति कराई, गांव को स्कूल में मुख्य धारा में लड़कों को लेकर के आए,
2: शिक्षा लेकर के आए आप, शिक्षा का मुख्य धारा लाने,
3: वो शिक्षा से लोग। अब जखनी में पिछले 17 वर्ष में एक भी कोई जघन्य अपराध की एफआईआर नहीं है, और जो अपराधी
2: थे वो ये बहुत सुंदर एक मॉडल आपने आज हमारे श्रोता साथियों को बताया कि जल तो जैसे आज हम देख रहे हैं वैसा है जल पहरेदारी का
3: जी।
2: लेकिन उसके पहले जो शुरुआत आपने की बहुत छोटी सी शुरुआत की और वो छोटी सी शुरुआत ये थी कि भाई मुझे मेरे गांव को अच्छा बनाना है, अच्छा हर दिशा से होनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वाटर, ये केवल पानी की बात नहीं है, ये लोगों के जीवन की बात है, लोगों के विचारधारा की बात है, लोगों के संस्कारों की बात है, उनके रोजमर्रा रोजगार आदि आदि सब चीजों को लेकर के किया। लेकिन जो बात मुझे आपकी पूरी कहानी में सबसे मजेदार लगी वो ये कि एक माँ ने कहा कि माँ से भी बढ़कर मातृभूमि है।
3: हाँ, इमा ने कहा, माने
2: तो धन्य है वो माँ जिन्होंने इतना सुंदर।
3: सबसे जो आज मुझे दुख है, अभी चर्चा करेंगे, मुझे दुख इस बात का है कि मुझे पद्म सम्मान मिल रहा है, नेशनल अवार्ड देश का पहला जल योद्धा सम्मान दिया गया, लेकिन मैं वो पुरस्कार किसको दिखाऊं, माँ नहीं है। ये मेरे अंदर मलाल है एक ठो, जिस माँ ने मुझे दिशा दी थी, जिस माँ ने मुझे बताया आपको, और ये बताते हुए मुझे मंडल साहब प्रसन्नता हो रही होगी आपको कि मेरी कोई एनजीओ नहीं है, मेरी कोई संस्था नहीं है, मेरा कोई कार्यालय नहीं है, मेरा कोई ऑफिस नहीं है, मेरे पास कोई कर्मचारी नहीं। और ये मेड़बंदी यज्ञ अभियान, गांव में भी मेड़बंदी यज्ञ अभियान चला 1000 हेक्टेयर में, देवास मध्य प्रदेश में है, विदिशा है, आप विदिशा और रायसेन है, 1 किलो धान नहीं पैदा होता था, वहां के किसानों ने आके मेरे यहाँ से मुझे ले गए और पिछले 5 सालों में 50 लाख क्विंटल से अधिक जिलों के किसानों ने धान बेचा है।
2: तो एक माँ आशीर्वाद होता है।
3: मेरी माँ ने कहा था कोई एनजीओ नहीं बनाओगे, कोई सरकार से ग्रांट नहीं लोगे, उन जिनके लिए काम करना उन्हीं के साथ बैठो, फर्श बिछाओ, जमीन पे बैठो, फावड़ा लो और ऐसी विधि से काम करो जो जिसमें कोई ट्रेनिंग ना लगती हो, कोई नया ज्ञान ना लगता हो, जिसमें किसी प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत ना हो, कोई तकनीकी चीज नहीं चाहिए, पुरखों की जो परंपरागत जल जोड़ने की विधि है उस विधि से काम करो, उन्हीं का भोजन करो, उन्हीं के साथ संवाद करो, उन्हीं के बस लो और आगे बढ़ो, हर गांव जाओ, गांव गांव में अपना एक ढोल नगड़िया ले, विनोबा भाभी नगड़िया लिए थे, और आप केवल चिल्लाओ पानी बचाओ पेड़ लगाओ, पानी बचाओ पेड़ लगाओ, खेत में मेड़ बनाओ मेड़ पर पेड़ लगाओ। मेरी माँ कहती थी तुम्हें 100 ग्राम पानी में नहाना है कि 100 किलो पानी में नहाना, 100 किलो पानी में आपका साबुन नहीं छूटेगा, 100 ग्राम में छूटेगा। तो मैंने कहा ये कैसे, तालाब में जाओ डूब के, कितना पानी रहेगा बाहर आओगे जब, तुम्हारे शरीर में 100 ग्राम भी पानी नहीं रहेगा। उनके जो विचार थे, बोले हम जलधि तिरंगा कहते हैं, राष्ट्रगान में राष्ट्रगान करते हैं पानी का, जलधि तिरंगा, तुम समझते हो जल तिरंगा क्या है। मैंने कहा राष्ट्रगान तुम बचपन से स्कूल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इतनी में गंभीरता से नहीं गया कभी, कहा कि आप ये गान करते हो, उस गान के पीछे का रहस्य समझो। माँ ने मुझे धर्म की तरीके से पानी के बारे में बताया, माँ ने कहा, हमने माँ ने हमारी बताया कि एक सीधी सी बात गांव में जाके कहो कि भगवान विष्णु पानी में रहते हैं, उनकी सेवा लक्ष्मी जी करती हैं, जो पानी बर्बाद करेगा वो धनहीन हो जाए और जो पानी बचाएगा वो धनवान हो जाए। ये मैं तो नहीं जानता था, फिर बीच में जब थोड़ा आया, बाहर आया, ऐसे जलग्राम का कांसेप्ट लेकर आया, ऐसे गांव जलग्राम बनाए जहां पुराने टूटे फूटे तालाब हों, नारे हों, नाले शब्द नहीं, नारे शब्द था, नाला तो गंदे पानी को कहते हैं, उनका नारे बनाइए, कुआं पुराने पड़े हों पानी ना हो, ऐसे बरसात का पानी उन्हें भर दीजिए, पानी का बैंक तालाब है और पानी की तिजोरी कुआं है, तो जो तिजोरी में पानी बैंक से तिजोरी में आएगा और सुरक्षित हो जाएगा, क्लीन वाटर आएगा। पानी बचाना सरकार का काम नहीं है, पानी बचाना समाज का काम है। माउंट आबू में कितना सुंदर प्रबंधन है, जल प्रबंधन के ऊपर कोई आज कितना भी पैसा लगा दे लेकिन इतना काम नहीं कर सकते। हम भाग्यशाली हैं कि इस देश में जो नेतृत्व मिला है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिला है, और वो हर बार अपनी मन की बात हो या सामाजिक सरोकार का विषय हो, पानी की बात हो पेड़ की बात जरूर करते हैं। इधर जागृति आई है, लोगों में जागरूकता बढ़ गई है।
2: ये चीज मतलब आपने कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी माँ मिली, मैं तो कहता हूँ पूरा देश ऐसी भाग्यशाली है कि देश में एक ऐसी बेटी थी जिसने अपने बच्चों को इतना सुसंस्कार, इतना जबरदस्त प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जो कि सहज है और सफल है।
3: जी, जी, जी,
2: मुझे यहाँ पूछना पड़ेगा कि आपकी मम्मी का क्या बैकग्राउंड था, आपकी माता जी का क्या, वो पढ़ी थी क्या, क्या
3: मेरी माँ, मेरा चूंकि दोनों मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों से स्वाधीनता संग्राम से हमारा रिश्ता रहा है। मेरी माँ के जो बाबा थे वो भी स्वतंत्रता संग्राम छतरपुर के पास एक चरण पादिका है जो छोटा जालियावाला कहते हैं, वहां उनको अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था और इधर मेरे पिता जी के जो बाबा थे वो फतेहपुर में इमली के पेड़, बावन इमली पेड़ कहते हैं, वहां उनको फांसी हुई थी। तो और मेरी माँ सामाजिक संस्कारों से पली बढ़ी थी उस जमाने में, वो एक अकेली थी, उनके कोई भाई नहीं था, अपने अकेले पिता की संतान थी। तो उनका जो सामाजिक, जो नाना का हमारे सामाजिक स्तर था, वो उस जमाने में भी सामाजिक सरोकार में अम्मा जाती थी बेरोक टोक, जब लोगों का, लड़कियों का निकलना मुश्किल था, बैठना उठना मुश्किल था, तब वो बगैर बेरोक टोक स्कूलों की बात करना। मेरे पिताजी ने मेरे गांव में 10 रुपए 1000 ईंटा मिलता था, तब समूह में जोड़ करके स्कूल बनाया था एक गांव में, छोटा सा एक कमरे का, सबसे मिलकर के 10 रुपए का 1000 ईंटा मिलता था उस जमाने में, 1967 में। तो जो हमें संस्कार मिले, पूज्य माता जी ने मुझे सारा, मेरे जीवन में एक ही व्यक्ति है जो मेरे मेरे जीवन में मेरा जीवन अगल बगल घूमता है, वो मेरी माँ, और दूसरा ईश्वरी विश्वविद्यालय ओम प्रकाश मसुराहा जी, ब्रह्म कुमारी ओम प्रकाश मसुराहा जी। तो वो जब भी कभी मेरे पास इतना पैसा नहीं रहता था, वो मुझे पैसे से ही मदद करते थे। तो मैं 2 बार माउंट आबू गया हूँ दर्शन करने, चुपचाप गंगे दादी के दर्शन किए हैं मैंने, जानकी दादी जी के दर्शन किए हैं, उषा बहन को मैंने एक मंच पर, मैंने मेरा मंच पर साझा भी किया है, शिवानी बहन अभी मुझे 5 दिन पहले दिल्ली में मेरी उनकी आदरणीय गजन सिंह शेखावत साहब के साथ जो वर्ल्ड वाटर है वो अवार्ड दिए जा रहे थे, तो उसमें मुझे भी प्रतिभाग करने का अवसर मिला। तो मेरा ऐसा मानना है कि सिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि के लिए जल आवश्यक है, और पानी बचाना, हमारे देश में जो 5 जलयोद्धा पैदा हुए, जो पहले जलयोद्धा पैदा हुए महाराज भागीरथ पैदा, जो गंगा को लेकर आए, दूसरे जो जलयोद्धा पैदा हुई वो माता जो दुर्गापति पैदा, जिन्होंने गोडवाना और इंदौर उस इलाके में बहुत काम किया, छत्तीसगढ़ के इलाके में पानी में 1000 तालाब बनाए। तीसरे जलयोद्धा जो पैदा हुए वो दूसरे जलयोद्धा जो पैदा हुई वो माता अनुसुईया, जिन्होंने अपने पति के लिए, अत्रि मुनि के लिए मंदाकिनी लेकर आई। यहाँ जलयोद्धा माता ज्यादा पैदा हुई, मेरी माँ ने कहानी मुझको सुनाई है, ये सारी कहानी मेरी माँ ने मुझको सुनाई है। इसके बाद सती अनुसुईया के बाद जो पैदा हुई वो महाराज भोज पैदा हुए जलयोद्धा, जिन्होंने 65,000 हेक्टेयर का भोपाल में ताल बनाया, 65 बावड़ियों को जोड़ के बनाया। और उनकी जो किताब है, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, जल विज्ञान, महाराज भोज ने 1500 में जल विज्ञान किताब एक रचना कराई थी, उसको पढ़ने की जरूरत है आज की, उसमें कितना जल प्रबंधन के बारे में लिखा हुआ है। फिर महारानी दुर्गावती पैदा हुई, जिन्होंने 1000 तालाब गोडवाना में बनाए। फिर महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने केवल ना कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश गुजरात में काम किया, बल्कि जहां हमारे पुरखे जाते हैं बैकुंठ, बैकुंठ की नसेनी बताया गया है गया में, गया जी अंत में लोग अपने पिता, लोग कहते हैं कि हमारी संतान हमको गया जी ले जाएगी, उस गया जी में भी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने तालाब बनाए हैं। मैं खुद पिता के पिंडदान करने के लिए 5 साल पहले माता के पिंडदान करने के लिए गया गया, दुर्भाग्य ये आज गया कि फल्गु नदी में गुंदा पानी नहीं है। अभी 4 दिन पहले मैं वहां था और एक बड़ा योजना बन रही थी कि उस नदी को पुनर्जीवित कैसे किया जाए। तो ये जो काम थे, जो हमारी माता जी कहती थी कि गंगा तो भागीरथ ले आए हैं, लेकिन अगर गंगा को आपने नहीं बचाया मिलके, आज के भागीरथों ने नहीं बचाया, तो गंगा मैया नाराज हो जाएंगे, तो गंगा मैया चली जाएंगी वापस। तो ये जो जल प्रबंधन के बारे में उन्होंने बताया कि भाई हम लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो जल ही क्यों लाते हैं, हमारे यहाँ कोई हम कोई पुराण सुनते हैं या शुभ अवसर पर कलश यात्रा निकालते हैं तो पानी की यात्रा क्यों निकालते हैं। उन्होंने कहा कि प्रसाद में चम्मच के रूप में पानी क्यों दिया जाता है। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, आप इस्लाम धर्म के लोग मक्का जाते हैं तो आबे जमजम का पानी ही उनके ऊपर क्यों डाला जाता है, पवित्र जल दिया जाता है। आप गुरुद्वारे में जाइए तो पानी से ही उसका सम्मान होगा, आप चर्च में जाइए होली वाटर से सम्मान होगा। जैन मुनि इतना तपस्या कर तप करते हैं लेकिन उनके हाथ में वस्त्र भी नहीं रहते, लेकिन आज परिस्थिति देखिए केवल उनके हाथ में कमंडा जरूर रहता जल, इसका मतलब संदेश पानी का देते हैं। तो हम अगर किसी में देखें, इस सृष्टि में जो कुछ भी दिख रहा है हरा भरा, उसमें पीछे पानी का महत्व है, जल ही उसमें दिख रहा है। इस शरीर में सबसे ज्यादा पावरफुल आंखें होती है, हमारी अम्मा कहती थी कि आंखें ठीक से देखें तो पत्थर टूट जाता है, नजर कहते हैं ना, नजर लग गई है, लेकिन वो उसमें 98% पानी है आंखों में। तो वो अम्मा कहती थी कि पानी में बिजली है, पर सारी ऊर्जा पानी के अंदर है। आप घड़ी का माप आया, घड़ी का टाइम टेबल आया, पानी से आया। बांट नापने का यंत्र आया लीटर, वो भी पानी से आया। तो बिजली भी पानी से आई, नाप भी पानी से आया, टाइम भी पानी से आया। तो अब आदमी का जो रस, आप समझिए कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, अम्मा हमारी बताया करती थी कि 5 किलोमीटर ऊपर बादल हैं, उन बादलों को भी अपनी तरफ खींच के पानी बरसा लेते हैं। जैसे आप बरगद है, महुआ है, पीपर है, पाकर है, जामुन है, ये ऐसे पेड़ हैं जो 5 किलोमीटर बादल जा रहे हैं तो रोक लेते हैं, अब हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि पानी बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता।
2: बिल्कुल।
3: वर्षा के दिन 120 से घट करके 41 दिन हो गए। हम अकेले नदी नहीं खोज सकते, हम अकेले तालाब नहीं बना सकते, हम अकेले कुआं नहीं बना सकते, लेकिन मेड़बंदी कर सकते हैं। हमारे देश में 18 लाख करोड़ हेक्टेयर भूमि में खेती होती है, जिसमें से 12 लाख करोड़ भूमि सिंचित प्रकृति के द्वारा है या जमीन के द्वारा है। तो बाकी तो सभी प्रकृति के द्वारा तो सभी है, लेकिन उसमें हम जो बोर करके पानी निकाल रहे हैं, भूमि का जो जल दोहन कर रहे हैं, वाटर लेवल नीचे जा रहा है। हमने हमारे यहाँ जरूर वाटर लेवल 2 मीटर ऊपर आया है, ये ऐतिहासिक घटना है कि बुंदेलखंड में वाटर लेवल ऊपर आ रहा है, या हम सबने जो काम किया, किसानों ने काम किया, उसका श्रेय भले ही मुझे जा रहा हो, आप सबका सानिध्य मुझे मिल रहा हो, मैं भाग्यशाली हूँ कि इसका श्रेय एक छोटे से व्यक्ति को मिल रहा है, और ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आज बता रहा हूँ। मैंने कभी दिव्यांगता के बारे में नहीं बताया, मेरा मेरे शरीर मेरा पैर खराब है, लेकिन मैं कभी सर्टिफिकेट लेकर के नहीं चल रहा, ना मैंने दिव्यांगता को अभी अस्त्र बनाया है। वो रोने वाले दिव्यांग अलग है जो अपना रोते रहे। हमने जो पढ़ाया फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पढ़ाया, जो 25 साल तक अमेरिका का राष्ट्रपति रहा, दोनों पैर नहीं थे। मैंने जैसी को पढ़ाया, मैंने ब्रजानंद को पढ़ाया, मैंने तुलसी को पढ़ाया, मैंने सूरदास जी को पढ़ाया। मेरी माँ कहा करती थी, दिव्यांग हो गया जब मैं, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो अम्मा ने कहा कि तुम पढ़ो, बड़े लोगों की कहानियां पढ़ो, वो सारे देवता दिव्यांग है जिनके पास ज्यादा ताकत है, जो भगवान कुछ लेता है तो बदले में लेता है, हनुमान जी हैं, तुम हनुमान जी के चेले बन जाओ, वो भी दिव्यांग है। शनि महाराज है, सब लोग डरते शनि से, वो भी दिव्यांग है। गणेश जी हैं, सब वंदना करते हैं गणेश जी, वो भी दिव्यांग है। तो ये जब बातें जो माँ कहती थी, तो मुझे लगता है कि वो एक बात मेरे जरूर आपसे मंडल साहब कहूंगा मैं। बहुत अच्छा अवसर है कि आज हम थोड़ा आपके साथ ऐसी जगह संवाद करें जिसको सुनने वाले जो श्रोता हैं वो देश के बहुत बड़े विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, और जो पानी और सामाजिक सरोकारों के विषय से जुड़े हुए हैं। हमारी पूरी दुनिया में जो हमारी हमारी जो भागीदारी है, जनसंख्या भागीदारी है, वो 17% है। जो हमारे पास जमीन है वो 4.4% है। पानी हमारे पास 2% है, उसमें से 1% शुद्ध पानी है, 1% जो प्रदूषित पानी है। जिस देश में गंगा और यमुना के देश में कभी दूध और दही नहीं बिकता था, वहां पर आप गांव में चले जाइए, आपको दूध नहीं मिलेगा, मट्ठा नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, लेकिन 500 बोतल दुकान में बिस्लरी पानी का मिलेगा। आप समझिए कितनी बड़ी परिस्थिति हमारे देश के सामने खड़ी है, गरीब पानी कहां से पाएगा। इसलिए आज ये जो अपना रेडियो है, इसके माध्यम से आप जो मानव बनने का संदेश देते हैं, ईश्वरी विश्वविद्यालय मनुष्य को मनुष्य बनने का संदेश देता है। ऐसे में एक व्यक्ति जो गांव में रहता है, जिसके पास न कोई संस्था है, न एनजीओ है, न कार्यालय है, न किसी पुरस्कार के लिए आवेदन करता है, उसके साथ में पूरा देश खड़ा है। और ये विधि किसानों ने, जो मुझे रिपोर्ट मेरे पास आई है, 182,000 किसानों ने 2021 में मेड़बंदी पे पेड़ लगाया था, मेरे पास रिपोर्ट है। वाटर लेवल ऊपर आ रहा है। जिस चित्रकूट में बांदा से प्रतिदिन मालगाड़ी में पानी जाता था मार्च में, 1 मार्च से रोज मालगाड़ी से पानी जाता था मानिकपुर, उस मानिकपुर के राजापुर से मालगाड़ी में धान आ रहा है। ये बहुत समय लगा है मुझको, 20 साल लगा है पूरा काम करने में, लेकिन इस 20 वर्षों में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे हजारों किसान साथियों ने मिलकर के मेरी विधि को मेरे साथ, जो मैं अभी चिल्ला रहा था, जब इस काम में ऐसे नहीं बना, अपमान भी मेरा हुआ है, जो साहूकार लोग थे, जो ब्याज पर पैसा देते थे।
2: मैंने देखा जो अभी आपने अपनी कहानी शेयर की, उसमें मैंने एक चीज बहुत बड़ा जो देखा वो तो ये कि डेफिनेटली माँ का एक बहुत बड़ा रोल रहा। इसलिए आपकी माता के लिए और आपकी माता के जैसे बाकी सभी माताओं के लिए जो अपने बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं कि बच्चे देश के लिए पहले जियो, उन सबको मेरा वंदन है। और वंदे मातरम का जो ये नारा है हमारे देश का, वो आपकी माँ के लिए सटीक बैठता है।
3: जी, जी, जी।
2: दूसरी चीज जो मैंने देखी वो ये कि आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की।
3: जी।
2: जैसे आपने कहा कि भाई भले दिव्यांगता आई मेरे जीवन में, बट मैंने उसका सामना शिक्षा से किया, ज्ञान से किया, मैंने अर्जन किया ज्ञान को, मैंने लोगों के बारे में पढ़ा, और उस वो जो एक अक्षमता कहेंगे या वो जो एक परीक्षा कहेंगे, उसको मैंने बहुत अच्छे से पार किया। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हम एक डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं जहां पर किताबों से तो लोगों का काफी दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं है। कई बार लोग किताबें खरीद लेते हैं लेकिन पढ़ने का समय नहीं होता, या वो केवल वीडियो देख करके आगे बढ़ जाते हैं।
3: जी।
2: जब जब लोग अपने अंदर वो समय ही नहीं दे रहे हैं कि वो कैसे करके अपने अंदर इस प्रकार की प्रेरणादायक चीजों को लाएं। आप क्या समझते हैं कि आज के युवाओं के लिए, आज की जनरेशन के लिए क्या कुछ ऐसा माध्यम हो सकता है जहां पर हम प्रेरणाओं को जीवन में लाने का अवसर न ढूंढे, अवसर क्रिएट करें, खुद रचे?
3: देखिए दो चीजें हैं, मेरा अपना मानना, मैं उच्च शिक्षा की बात कर रहा था तो मेरी अम्मा ने कहा उच्च शिक्षा करके क्या करोगे, ये जो किताबें किसी ने किसी का अनुभव है, और जिन्होंने उन्होंने मुझसे बताया तुलसी किस विश्वविद्यालय में गए पढ़ने के लिए, उन्होंने मुझसे कहा तुलसी कहाँ पढ़ने गए, कबीर कहाँ पढ़ने गए, डिकेंस कहाँ पढ़ने गए, इन लोगों के एक एक, एक शब्द पर लोग पीएचडी करते हैं, डीलिट करते हैं। समाज में तुम्हें समाज का चिंतक बनना है, और तुम समाज में जब उच्च शिक्षा के लिए जाओगे वहां एक मशीन के पुर्जे बनोगे, और वो अपने मन से नहीं कुछ कर सकते। तुम भले ही बड़े बड़ी प्रशासनिक सेवा में चले जाओ, वहां भी तुम्हारे ऊपर कोई होगा, लेकिन गांव में किसानी करोगे तुम्हारे ऊपर कोई नहीं होगा, तुम खुद के स्वतंत्र होगे। तो ये जो माँ का, और मेरे जीवन में मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे दो व्यक्तियों का बड़ा सपोर्ट मिला, एक मेरी माँ का, दूसरी मेरी पत्नी का। मेरी पत्नी का सपोर्ट मिला उस समय जिस परिस्थिति में, भाई बच्चे कौन वो तैयार करता, कौन उनको पढ़ाता। मैं आज तक अपनी बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग में नहीं गया, मैंने कभी बच्चों को एबीसीडी नहीं सिखाया। उन्होंने बच्चे को प्राथमिक स्तर से लगा के एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम तक बच्चे को लेके गई, बिटिया को बीएससी से लगा के एमएससी बीएड तक लेकर गई, बच्चों को सबको उसने संभाला। और मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं जो काम कर रहा हूँ, उन्होंने बात कही कि तुम जो अपना काम करो, अपना धर्म निभाओ, हम अपना धर्म निभाते हैं। ये जो दोनों मेरे बीच में जो दो लोगों का जीवन में आगमन हुआ, बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऐसे पत्नी मिलती है, ऐसी माँ मिलती है। माँ ही शिवाजी बनाती है, क्योंकि शिवाजी बाहर से नहीं आते हैं, लक्ष्मीबाई माँ ही बनाती है। तो ये दो उदाहरण हमारे सामने हैं, और हम ये बात नौजवान पीढ़ी से कहेंगे, जरूर कहेंगे कि आप सरकार के भरोसे मत रहो, हो सकता है सरकार आपके भरोसे हो। और मेरे ऊपर तमाम सारे जो डॉक्यूमेंट बनी है उसमें मैं आपको देखता हूँ, लोग कहते हैं कि हो सकता है सरकार आपके लिए। तो आज जो एग्जाम्पल दिया जाता है, एग्जाम्पल देश के सामने खड़ा है, एक जखनी नहीं बनाया, लोग जखनी देखने नहीं आते, लोग जखनी जैसा गांव बनाने के लिए मुझे बुलाते हैं। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि सरकार ने कोई तालाब नहीं बनाए, हमारे आजादी के पहले 25 लाख तालाब थे। आप राजस्थान का जल प्रबंधन देख लीजिए, बुंदेलखंड का जल प्रबंधन देख लीजिए, हो सकता है मराठाओं का जल प्रबंधन अलग हो सकता है, बुंदेलों का हो, चंदेलों का हो, प्रतिहारों का हो, परिहारों का हो, चौहानों का हो, लेकिन सबका एक ही काम रहा है, जल बचाना। सुख में भी तालाब बनते थे और दुख में भी तालाब बनते थे। किसी के पुत्र पैदा हुआ उसने तालाब बना दिया, दुख हुआ माँ पिता की स्मृति में तालाब बना दिया, कुआं बना दिया, इसके बाद कहीं हमारे अकाल पड़ा, राजा ने तालाब बनवा दिया। तालाब बनाना, बावड़ी बनाना, एक जंगल को तैयार करने में, बाग को तैयार करने में 25-30 साल लगते हैं, वो 5 मिनट में काट जाता है पेड़। हमको पानी का जो बेटा है वो पेड़ है, और क्या कोई पिता चाहेगा कि मेरा पुत्र मर जाए? जहां पेड़ होंगे पानी जरूर आएगा, पेड़, अम्मा मेरी कहती थी कि जहां पेड़ होगा वहां पानी आएगा। और तुम बड़ा काम मत करो, ये मत करो कि पेड़ के ऊपर बड़ा पेड़ लगाओगे, आम का लगाओ, तुम तुलसी का लगाओ, अरहर की दाल लगाओ, तुम नींबू लगाओ, करौंदा लगाओ, सहजन लगाओ, छोटे पेड़ लगाओ जिसकी पत्ती खेत में गिरे और उससे जैविक खाद बन जाए। छोटे छोटे प्रयोग ही बड़े परिणाम लाते हैं। हिमालय की यात्रा भी हम अपने गांव से करेंगे तो 2 कदम से शुरू होंगे, पर अंधेरा अंधेरा मत चिल्लाओ, कोसो नहीं किसी को, कोसने से अच्छा बेहतर है कि तुम एक दीपक लो और एक कमरे में ही सही उजेला करने की कोशिश करो, साधना करो, साधन तुम्हारे पास आ जाएंगे।
2: ये चीज जो आपने कहा कि पेड़ जो है वो पानी का बेटा है
3: जी।
2: और इस पे तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान में भी बहुत अच्छा सेवा हो रहा है, और किसानों के साथ मिलकर के उनके खेती में पेड़ लगाने का, मिक्स क्रॉपिंग भी कह रहे हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री कह रहे हैं, भले आजकल नाम उनको नया दिया गया है, लेकिन शुरू से पहले से ही ये सब चीजें थी, बस उनको वापस लाया जा रहा है। मैं हाल ही में न्यूयॉर्क में यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वहां पर हमारे जल शक्ति मंत्री जी भाषण दे रहे थे, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत देश में हम सबके प्रयास से, केवल सरकार नहीं कहा उन्होंने, सबके प्रयास से, जिसमें समाज सेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, व्यक्तिगत प्रयास, सरकारी प्रयास, हरेक के प्रयास से हम ये कोशिश करेंगे कि भारत 2030 तक जल सशक्त हो जाएगा। अब इतना बड़ा एक लक्ष्य विश्व मंच पर अनाउंस करना, ये तब जाके सफल होगा जब एक एक व्यक्ति पहरेदार बनने का प्रयास करेगा। केवल एक उमाशंकर पांडे जी के जल पहरेदार बनने से कुछ ही बेनिफिट होगा, लेकिन जब तक हम बाकी सब नहीं सीखेंगे या बाकी सब अपने अंदर ये बल नहीं भरेंगे कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तब तक ये सफल नहीं होगा ये सपना। आज मान लीजिए मैं गांव में नहीं रहता, मैं शहर में रहता हूँ, मैं क्या करूँ
3: जी,
2: मैं क्या कर सकता हूँ?
3: नहीं, मेरा अपना मानना यह है कि एक व्यक्ति से ही इकाई शुरू होती है और एक को एक दो नहीं होते, गेरा होते हैं। मेरे शहर में हम अपना बाथरूम से लगा के दैनिक जीवन से लगा के ये संकल्प है कि हमको 10 लीटर पानी रोज बचाना है। हम ज्यादा नहीं कहते हैं, बाथरूम में जितना पानी करते हैं, मंजन में करते हैं, भोजन में जितना करते हैं, वस्त्र धोने में करते हैं, गाड़ी धोने में करते हैं, और बिजली के बल्ब कम से कम बल्ब जलाए जाए क्योंकि पानी उसमें बहुत खर्च होता है। मैं छोटी छोटी बातें बच्चों के साथ शेयर करता रहता हूँ। हमारे जल शक्ति मंत्री जी ने जो बात कही आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, अभी ईश्वरी विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी जी ने पानी पर बहुत बड़ा राष्ट्रपति जी का संबोधन था, माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन था, और उसमें हमारे स्टेट के जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने नारा भी दिया था खेत पर मेड़ मेड़ पर पेड़ का, मैं उसको भी मैं सुन रहा था। और पहला जो युद्ध हुआ हमारा वो भोजन के लिए हुआ था, द्वितीय विश्व जो युद्ध हुआ वो तेल के लिए हुआ, और तृतीय विश्व युद्ध जो होगा हमारे भारत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था कि पानी के लिए होगा। हम कोशिश करें कि भारत में ना हो, और भारत में नहीं होगा, हमारे इच्छा शक्ति वाली सरकार है। और ईश्वरी विश्वविद्यालय जैसे जो हमारी ब्रह्म कुमारी संस्था है, ब्रह्म कुमारी संस्था ने पानी ले लिया है, तो जब बहनें पानी बचाएंगी तो बहनों का ही सरोकार पानी के साथ होता है, तो भाई भी उनके साथ खड़े होंगे, और हजारों उमाशंकर पांडे जैसे लाखों पानी के पहरेदार बनेंगे, जल योद्धा तैयार होंगे, गांव गांव जल दूत तैयार होंगे, गांव गांव जल पहरी तैयार होंगे। तो मुझे लगता है कि उमाशंकर पांडे ने बहुत बड़ा काम नहीं किया है। मैं सदैव अपनी बात ये कहा करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा कार्यक्रम में नहीं जाता हूँ, बहुत ज्यादा मेरा विषय नहीं है, मैं कभी मेरा अपना मैं गांव नहीं छोड़ता, अपना गांव में बात करना हूँ, किसानों के साथ घूमना है। सरकार ने पद्मश्री दिया है, उसका आदर है, सम्मान है, सब कुछ है, एक सम्मान राष्ट्र का सम्मान है, मैं उनका भारत सरकार का आदर करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, बहुत वर्षों के बाद ऐसे देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं जो सामाजिक सरोकार की बात करते हैं, और समाज के उनके अंदर 24 घंटे राष्ट्र और समाज सब कुछ है उनके, तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि वो मिले हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि उमाशंकर पांडे के रूप में अगर मुझसे कोई दो लाइन की बात करे तो मैं कहता हूँ कि मेरा प्रयास जल संरक्षण की दिशा में एक बूंद के बराबर है, बहुत नहीं है, एक बूंद के बराबर मैंने, लेकिन मैंने अधेला अधेला नहीं कहा, एक दीपक मिट्टी का लिया, उसी किसान का सरसों का तेल लिया, उसी किसान का कपास लिया, और वहां पर मैंने एक दीपक छोटा सा भले ही जलाया है, और वो दीपक मेरा उत्तर प्रदेश से निकल करके और द्वारकाधीश जो अंतिम सीढ़ी है भारत की सीमाओं की, उस सीमा से बाहर ऑस्ट्रेलिया में भी लोग अगर बात करते, मेरे जल शक्ति मंत्री गए थे अपने स्वतंत्र देव सिंह जी, ऑस्ट्रेलिया में तीन जगह गए, वो सिडनी और कई जगह गए, वहां सबने हमारे जल प्रबंधन के बारे में हमारी चर्चा की। जब कोई बाहर विदेश में जाता है, अमेरिका में बड़े बड़े फ्रांस है, जापान है, तो लोग बात करते हैं कि वो बहुत बड़ी, अभी इजराइल की टीम हमारे पास आई कि भाई आपने जल प्रबंधन का काम किया है खेत पर मेड़ मेड़ पर पेड़, बहुत बड़ी चीज है और सुनने में बहुत छोटी है, इसमें कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं है। भाई सुबह जाइए, मेरे बाबा कहते थे, मेरे बाबा पिताजी के पिताजी कहा करते थे कि भाई सुबह जाओ, अपनी डलिया ले जाओ, अपना फावड़ा ले जाओ, और आधे घंटे अपनी कसरत खेत पे करो, इससे अच्छी कसरत कुछ नहीं हो सकती, अपनी मिट्टी उठाओ, अपनी अपने खेत पे लगा दो। आचार्य बालकृष्ण जी कहे कि भाई ये तो बहुत अच्छा आपका जो विधि है, रामदेव महाराज जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी विधि है। तो सारे जो देश के पानी के पहरेदार हैं या पानी के जानकार हैं, वो जो वैज्ञानिक हैं, वो सब लोग, पुनः हमको उसी पे आना पड़ेगा, क्योंकि वर्षा पानी बनाया नहीं जा सकता, नदियां खाली पड़ी हैं। और मेरा विधि का एक और सामाजिक सरोकार है जिसको समझने की विधि जो पुरखों की है, मेड़ पर पेड़ होगा, मेड़ से पानी रुकेगा तो कहां जाएगा, नारे में। नारे माने हर नदी का निर्माण छोटे से नाले से होता है, नारे से, और भले ही दुनिया की सबसे बड़ी नदी क्यों ना हो, लेकिन जहां से निकलती है छोटी होती है, वो एक नारा ही होता है। और नारे से पानी कहां जाएगा, खेत से पानी नारे में जाएगा, और नारे से नदी में जाएगा। अगर आपको पानीदार बनाना है, नदियां हमारे देश में 10,650 नदियां हैं, जिसमें 4,230 नदियां या तो मरने की स्थिति में है, या मरने वाली है, या मर रही है। अगर नदी बचाना है तो खेत को पानीदार बनाने के लिए सबसे पहले मेड़बंदी करिए और वहां से निकला हुआ पानी नाले में आएगा, नाले से नदी में आएगा। क्योंकि खेत में जैसे दूध में मलाई होती है, वैसे खेत में मलाई मिट्टी होती है, मिट्टी माँ। वो सॉइल जो हमारी उपजाऊ मिट्टी थी वो बह करके नाले में चली गई और नाले में जाने के कारण बरसात का पानी जो सदा नीरा नदियां रहती थी वो छिड़के नदी से धीरे धीरे जाता था। पहले खेत को पानीदार बनाइए, फिर नाले को पानीदार बनाइए तो नदियां पानीदार हो ही जाएंगी। नदियां क्या थी, हजार नाले मिलकर एक नदी बनाते थे, छोटे छोटे नाले थे वो नदी बनाते थे। यमुना को देखिए, गंगा को देखिए, बड़ी बड़ी नदियां देख लीजिए आप, नर्मदा देखिए। तो इनमें सब में जो गांव से पानी जाता था, हमारे जो हमारा भारत है वो गांव का देश, हमारी सारी संस्कृतियां गांव से गई। शहर तो व्यापार का केंद्र था, शहर एक ऐसा जगह थी जहां लोगों को भाई चलो उच्च शिक्षा करनी तो हर गांव में डिग्री कॉलेज नहीं हो सकते, भाई शहर बना दो। भाई अभी मैं वहां गया था मगध विश्वविद्यालय है, मगध विश्वविद्यालय को एक संस्था ने जमीन सारी दान दी, तो लोग मगध विश्वविद्यालय उस समय दिया दान, हजारों एकड़ जमीन दान दिया। तो वो जो संस्थाएं सामाजिक, आज ईश्वरी हमारे विश्वविद्यालय है, हमारी जो ब्रह्म कुमारी है, दुनिया के अंदर ब्रह्म कुमारी जी ने कितना बड़ा काम किया कोई कल्पना कर सकता है, इतने कम समय में दुनिया के अंदर ब्रह्म कुमारी की एक छवि है। अगर कहीं देखना है और उसको समझना है तो आपको मैं बार बार ये बात अपील करता हूं कि ब्रह्म कुमारी संस्था में जरूर दो चार दिन जाना चाहिए। आप अपने बच्चों को 6 माह में, वैसे तो 1 महीने में अपने बच्चे को छुट्टी के दिन जरूर भेजिए, जहां केंद्र हो, हम नहीं कहते माउंट आबू जाइए, जहां भी केंद्र आप पहुंच जाइए। मेरे ऊपर प्रभाव है, मेरे ऊपर तो प्रभाव है, क्योंकि जब जब मैं परेशान होता हूं, मुझे मानसिक रूप से कोई बात होती है तो ब्रह्म कुमारी बहनों के पास जाता हूं, या ब्रह्म कुमारी औरैया केंद्र था वहां भी मैं 2 बार गया। तो जहां जहां कोई ऐसा मुझे लगता है, लखनऊ के केंद्र में गया हूं, दिल्ली के केंद्र में गया हूं, तो मुझे कहीं अगर मेरे समझ में आता है मैं मानसिक रूप से परेशान हूं, तो आप उन तप जिन्होंने तप किया है, ब्रह्म कुमारी में भाई बहनों ने, ब्रह्म कुमारों ने तप किया है, और तप में तप से जो भगवान शंकर पृथ्वी को अपने ऊपर शेषनाग रखे हुए हैं, ब्रह्मा बाबा ने जो तपस्या स्थल बनाया है, ये साधारण बात नहीं है। उमा शंकर पांडे ने बड़ा काम नहीं किया, बहुत छोटा सा काम किया है, लेकिन देश के लाखों किसानों ने,
2: आपने भले छोटा सा काम किया है लेकिन उस छोटे से काम में मैं तो यह कहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत को एक उत्तर दे दिया है कि भाई जल का जो ये बहुत बड़ा सवाल है, ये जो प्रश्न है, इसका उत्तर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से हमारे भाई उमा शंकर जी ने बहुत सहज रीति दिया है। लेकिन अभी आपके लिए कुछ कठिन सवाल, ये सवाल

0: खुशी और शांति मिले अपनेपन के साथ, वो सेवा है। आत्मीयता क्या है?
1: व्यक्ति को विश्वास हो, मैं अगर इनके पास भूखा हूं जाऊंगा तो मेरे कहने से तुरंत भोजन मिल जाएगा।
0: आत्मीयता, वाह, बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया आपने। शांति क्या है?
1: शांति खोज है, और इसको पाने के लिए गौतम बुद्ध जैसे और हमारे महावीर स्वामी जैसे, हमारे ब्रह्मा बाबा जैसे बड़े महापुरुषों ने सब कुछ अपना जीवन निछावर कर दिया है उसे पाने के लिए। और शांति के बाद फिर कुछ नहीं बचता। ब्रह्म का एक रूप है।
0: आपके लिए जखनी क्या है?
1: जखनी मेरे लिए स्वर्ग से बढ़कर मेरी जन्मभूमि है, तो उसका ऋण कभी उतार नहीं सकता हूं, इसलिए वो मेरे लिए पवित्र भूमि है।
0: उमा शंकर कौन है?
1: देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनने वाला, जो अपना सब कुछ अपनी मातृभूमि को निछावर करना चाहता है, एक व्यक्ति है।
0: तो देश की हर वो इकाई जो देश पे मर मिटने को तैयार है, अपने सारे साधनों से देश की सेवा करने की साधना कर रहा है, हर वो इकाई उमा शंकर पांडे है। तो ऐसे उमा शंकर पांडे जी ने आज हमारे साथ साथियों बहुत समय बिताया, उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया, और मैं समझता हूँ एक एपिसोड तो जैसे बहुत छोटा है, क्योंकि इनकी कहानियों में मैं इतना रस पा रहा था, मुझे इतना बारिश का अनुभव हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे ऊपर दया की है और इतनी बारिश की है आज कहानियों की, अनुभवों की। और सबसे ज्यादा दिल को छूने वाली वो कहानियां जो माँ और उस पीढ़ी से आती है, जिस पीढ़ी के लिए आज का हमारा समाज जो है उतना श्रेष्ठ सोचता नहीं है, वो सोचता उन्हें क्या पता है, सब कुछ तो जैसे हम जानते हैं, हमारे हाथ में मोबाइल क्या आ गया है, हमें लगता है सारी दुनिया पे हमारा कब्जा है। लेकिन जो वो अनुभव जो दिल को छू जाते हैं, वो उमा शंकर जी ने हमारे साथ साझा किया। उमा शंकर जी, आपने हमारे साथ इतना समय दिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप हमें समय देंगे, और हमारी जो ना केवल श्रोता साथी हैं जो रेडियो मधुबन के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन और भी जो हमारी संस्था के लोग हैं जो कुछ ना कुछ रीति से जल के लिए सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका आप मार्गदर्शन जरूर करेंगे। ऐसी
1: पूरी तरीके से मैं पूरी तरीके से, मंडल साहब आपने मुझे बुलाया, समझ मेरी पैदा की उस संस्था से, ब्रह्म कुमारी से, जिस संस्था से मेरे जैसे तमाम जो लोग भटके हुए लोग थे जिन्हें रास्ता मिला, ऐसी संस्था के साथ मुझे आपने अपनी बात कहने का अवसर दिया। जहां भी मुझे ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में बुलाया जाएगा, सदैव सारे काम छोड़ करके, यही एक ऐसी संस्था है जो जिसमें बहनें हमारी तप करती, तपस्या करती हैं। मेरी माँ कहती थी कुआ की पूजा करो, कुएं की पूजा करो। मेरी माँ ये बात कहती थी, बचपन से कुएं की पूजा होती थी, नदी की पूजा होती थी, तालाब की पूजा होती थी, और पानी को आदर दो, जगदीश है, जो कुछ मांगोगे सब कुछ मिलेगा। निकट भविष्य में मुझे आपके साथ मैं आऊंगा, आपसे मिलूंगा, और जहां जिस लायक मेरे पास छोटा सा ज्ञान है, जल जगदीश का ज्ञान है, मैं सबके साथ बांटना चाहता हूँ। ज्ञान बांटने से बढ़ता है मेरी माता।
0: यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ठीक लगे, क्या आप अपने माता पिता का नाम हमारे साथियों को बताना चाहेंगे? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ हूँ आपकी माता से। आपके
1: मेरी पूज्य माता जी का नाम था सुमित्रा पांडे, मेरे पिताजी का नाम था पूज्य विजय बहादुर पांडे। तो हम लोगों ने जो कुछ भी है आज, वो नहीं है इस लोक में, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ
0: लेकिन है। मैं समझता हूँ सुमित्रा जी ने हमें एक ऐसा लक्ष्मण दिया है, जिस लक्ष्मण के मन में एक लक्ष्य पक्का है कि भारत देश में से जल की समस्या को मिटाना है, भारत को जल समृद्ध राष्ट्र बनाना है, और भारत को उस मुकाम पे लेके जाना है जिस मुकाम से लोगों की जो ये तृष्णा है, चाहे वो जल की तृष्णा हो या शांति की तृष्णा हो, दोनों पूर्ण हो सके। तो उमा शंकर जी, आप सच में बहुत धन्य हैं कि आपने इतना सुंदर सानिध्य अपने आसपास पाया और उसको बरकरार रखा, और आज भी आप समाज की सेवा कर रहे हैं, प्रकृति माँ की सेवा कर रहे हैं, इसलिए आपको
1: पूरा, बहुत पूरा, मुझे इस बात का गर्व है और रहेगा कि मेरा जन्म भारत में हुआ है। प्रकृति ने ये तय है, मेरी माँ कहती थी कि तुम कहाँ जन्म लोगे ये तुम्हारे बस में नहीं, हिंदुस्तान में जो जन्म लोगे या अमेरिका में लोगे ये तुम्हारे बस में नहीं, तुम्हारे माँ बाप कौन होगी ये भी तुम्हारे बस में नहीं, तुम किस जाति धर्म में जन्म लोगे ये भी तुम्हारे बस में नहीं है। किंतु वो भाग्यशाली लोग हैं जिनका भारत में जन्म होता है। ये बुद्ध की भूमि है, ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, ये ब्रह्मा बाबा की भूमि है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, निकट भविष्य में भी मैं आप सबके साथ जुड़ूंगा और मार्गदर्शन लेता रहूंगा। जब तक व्यक्ति सीखना चाहता है तभी तक व्यक्ति जीवित है।

0: मुझे लगता है जो बहनों का तप है, ब्रह्म कुमारी के भाइयों का तप है, उस तप का थोड़ा बहुत अंश हमको मिलेगा तो हम धन्य हो जाएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद उमा शंकर जी। सुना साथियों, जो उमा शंकर जी ने हमारे साथ कहा कि जब तक व्यक्ति सीखना चाहता है तब तक वो जीवित है, और जब तक वो जीवित है इसका मतलब जल उसके अंदर प्रवाहित है। जल के प्रवाह को बचाना, जल को सुरक्षा प्रदान करना, जल के साथ ऐसा संबंध रखना जैसे कि एक मित्र के साथ संबंध हो, ये तय करता है मेरा, आपका और हम सबका आज और कल। जल नहीं तो कल नहीं, लेकिन हम कहेंगे जल ही जीवन को सफल भी बनाता है। तो साथियों, उमा शंकर जी के साथ आपने जल के प्रति अपने जीवन में एक नया बदलाव लाने का प्रयास जरूर करना है, ऐसा संकल्प लिया होगा। जैसे उन्होंने कहा कि आप अपने घर में बूंद बूंद बचाने का प्रयास करें, आप अपने रोजमर्रा के जीवन में एक वाटर ऑडिट करें कि भाई मेरे आज के जीवन में, आज के दिनचर्या में कितना पानी मैं व्यय करता हूँ और कितना मैं बचा सकता हूँ। तो इस छोटे छोटे चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो मैं समझता हूँ हम बहुत बड़ा सहयोग दे सकते हैं। एक एक व्यक्ति उमा शंकर पांडे जैसा बन सकता है। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित उमा शंकर पांडे जी, जिनको जल प्रहरी के नाम से जाना जाता है, जो आज न केवल एक छोटे गांव जखनी को पूरे देश के मानचित्र पर जल ग्राम की तरफ ला चुके हैं, आज वो पूरे विश्व को एक संदेश दे रहे हैं कि एक इकाई, यशस्वी इकाई अपने पूरे देश को यशस्वी बना सकती है। साथियों, यशस्वी भारत कार्यक्रम में आप हमसे इसी प्रकार मिलते रहिएगा। अगले एपिसोड में हम आपके साथ फिर से आएंगे एक और हस्ती के साथ और जानेंगे कैसे उन्होंने भारत को यशस्वी बनाया। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। 90.4 FM रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, जल जरूर बचाते रहिए। नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8 खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

देखो देखो वो आ गया।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो। प्रस्तुत है ज्ञान चिंतन।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं आज फिर एक टॉपिक पर अपना चिंतन आपसे शेयर करूंगा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का अर्थ है कि जब व्यक्ति स्वयं में सकारात्मक बदलाव लाता है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे समाज और फिर संपूर्ण विश्व पर पड़ता है। यह विचार गांधी जी के प्रसिद्ध कथन खुद वह बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं से प्रेरित है। यदि हम चाहते हैं कि दुनिया एक बेहतर स्थान बने तो हमें सबसे पहले अपने विचारों, आदतों और कर्मों में परिवर्तन लाना होगा। आइए अब हम स्व परिवर्तन का महत्व समझते हैं। स्व परिवर्तन का अर्थ केवल बाहरी रूप से बदलाव लाना नहीं है, बल्कि यह आत्म मंथन, आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार की प्रक्रिया है। जब हम स्वयं को बेहतर बनाते हैं, चाहे वह हमारे व्यवहार, सोचने के तरीके या कार्यशैली में हो, तो हमारा परिवेश भी स्वतः ही प्रभावित होने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति ईमानदारी और नैतिकता को अपनाता है तो उसके आसपास के लोग भी इससे प्रेरित होकर ऐसा करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब हम अपने घर और आसपास सफाई रखते हैं तो समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ती है, जिससे पूरे देश में स्वच्छता अभियान को बल मिलता है। व्यक्तिगत बदलाव से ही सामाजिक परिवर्तन संभव है। एक व्यक्ति जब स्वयं में बदलाव लाता है तो वह अपने परिवार, मित्रों और समुदाय को भी प्रभावित करता है। अगर एक शिक्षक अपने छात्रों को नैतिकता, परिश्रम और अनुशासन का पाठ पढ़ाता है तो वे छात्र अपने जीवन में मूल्यों को अपनाते हैं और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इसी तरह अगर कोई युवा नशे या बुरी आदतों को छोड़कर एक अनुशासित जीवन अपनाता है तो वह अपने आसपास के युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकता है। धीरे धीरे ये छोटे छोटे बदलाव पूरे समाज और फिर राष्ट्र में व्यापक परिवर्तन लाते हैं। जब समाज के अधिकतर लोग स्व परिवर्तन की राह पर चलते हैं तो यह एक सामूहिक सामाजिक बदलाव का रूप लेता है। एक देश तभी प्रगति कर सकता है जब उसके नागरिक जिम्मेदार, ईमानदार और नैतिक मूल्यों को अपनाने वाले हों। जब प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो देश में भ्रष्टाचार, अपराध और असमानता जैसी समस्याएं कम होने लगती हैं। इतिहास गवाह है कि हर बड़े सामाजिक और वैश्विक परिवर्तन की शुरुआत कुछ व्यक्तियों के आत्म परिवर्तन से हुई है। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे महान नेताओं ने पहले स्वयं को बदला और फिर उनके विचारों ने पूरे समाज और विश्व को प्रभावित किया। इस चिंतन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन केवल एक विचार नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यदि हम वास्तव में दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाना चाहते हैं तो हमें दूसरों को बदलने की अपेक्षा पहले खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। छोटे छोटे व्यक्तिगत बदलाव समाज में बड़ी क्रांति ला सकते हैं। जब हर व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी, करुणा, अनुशासन और नैतिकता को अपनाएगा तो एक सकारात्मक और विकसित विश्व की कल्पना साकार होगी। इसलिए आइए हम स्वयं में बदलाव लाकर दुनिया को बदलने की दिशा में पहला कदम उठाएं। ये है आज का मेरा चिंतन। फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। धन्यवाद।
0: रेडियो श्रोतागण, अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक बने रहें रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद मिळवा.
2: वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मकुमारीज. वेलकम सिस्टर.
3: ओम शांती.
2: ओम शांती एंड वेलकम टू बीइंग ब्लिस.
3: थैंक यू.
2: शुरू करने से पहले मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा.
3: जरूर.
2: इट्स अबाउट रिजेंटमेंट एंड फॉरगिवनेस. व्हेन यू होल्ड रिजेंटमेंट टुवर्ड्स अनदर, यू आर बाउंड टू दैट पर्सन और कंडीशन बाय एन इमोशनल लिंक दैट इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील. फॉरगिवनेस इज द ओनली वे to dissolve that link and get free.
3: बहुत सुंदर है. अब इसकी गहराई में चलते हैं कि अगर हम किसी के भी प्रति, जैसे हमने पिछली बार भी देखा उन्होंने किया हमने भी वही किया, तो मतलब हमने उनके प्रति वो एनर्जी को पकड़ कर रखा. एंड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल लाइन विच सेज कि इफ यू होल्ड इट दैट लिंक इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील. एंड ये जो लिंक है जो हमने पकड़ कर रखा, ये तकलीफ किसको देने वाला है? ये कॉन्स्टेंटली तकलीफ मुझे ही ज्यादा देने वाला है. एंड देन इट सेज फॉरगिवनेस मीन्स यू सेट योर सेल्फ फ्री.
2: बट वो स्टील वाली बात, स्ट्रॉन्गर देन स्टील,
3: पकड़
2: लिया तो ऐसा मतलब
3: पकड़ लिया मतलब फिर वो टूटेगा नहीं ना. आपका वो जो कनेक्शन है, रिजेंटमेंट की एनर्जी है, आपसे भी जा रही है तो वो उधर तक पहुंचेगी, दूसरा भी उसके प्रति क्रिएट करेगा.
2: तो मैं रिजेंटमेंट नफरत लेके जीऊं,
3: सामने वाला भी तो लेगा. तो जब दोनों लेंगे तो वो लिंक क्या हो जाएगा? इट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग. अब अगर दोनों ने कुछ पकड़ा हुआ है और वो ऐसे कनेक्ट बना हुआ है, लिंक बना हुआ है, अगर एक भी छोड़ देता है लिंक टूट जाता है. फिर बेसिकली कनेक्शन बन नहीं सकता जब एक छोड़ दे. लेकिन जब तक दोनों पकड़ के रखते हैं, हम क्या होता है रिश्तों में, हम सोचते हैं हमें दोनों को कुछ करना होगा, हम दोनों को इस बात को ठीक करना होगा. दैट्स व्हाई हम अपना ज्यादा समय किस में बिताते हैं, कम बात को ठीक करें, सॉर्ट आउट करें, समझें. दोनों को नहीं करना है. एक ने अगर छोड़ा, यू सेट योर सेल्फ फ्री, यू डोंट हैव टू वेट. अगर दोनों के हाथ में वो लगी हुई है, आप बंधे हुए हैं, आप जीवन भर बंधे रहेंगे. अब अगर आपने एक ने खोला, दूसरे के हाथ में तो फिर भी वो बंदी हुई है, है ना. डोंट वी सी कि आपने एक ने छोड़ा, वो दूसरे के हाथ में पूरी वो लटकी हुई दिखाई देती है, पर एक के हाथ में बंदी हुई है. मतलब अगर दूसरा पकड़ के भी रखे आपके प्रति कोई बात, कोई नफरत, कोई कुछ, इट्स ओके. वो फिर उसने अपने को पकड़ के रखा है, लेकिन लिंक टूट जाएगा. एंड जैसे लिंक टूट जाएगा, यू सेट योर सेल्फ फ्री. दिस इज अ वेरी वेरी वेरी डीप थिंग. अब फॉरगिवनेस के लिए हम आज बहुत बार ये कहते हैं कि फॉरगिव करना बहुत मुश्किल है, हम नहीं फॉरगिव कर सकते.
2: अगर इसको हम दया कहें सिस्टर, अगर शब्द दया यूज करें कि भाई किसी पे दया करो, उसको माफ कर दो, तो एक्चुअली दया हम किस पे कर रहे हैं?
3: अपने आप पे.
2: वही तो मैं सोच रहा हूँ.
3: जब आप अपने को फ्री कर रहे हैं, आप अपने को फ्री कर रहे हैं.
2: हम लोग कितना बचपन से लाइन सुनते हैं यार, उस पे रहम करो, उसको माफ कर दो, उस पर दया करो, उसको छोड़ दो, मुझे माफ कर भगवान, मुझ पर दया कर. दया तो एक्चुअली हम अपने आप पे करते हैं जब दूसरे को.
3: बिल्कुल. अगर मैंने कोई गलती की है या कुछ भी किया है, आपके साथ कुछ गलत किया या कोई भी बात हुई है और आपने उसको पकड़ के रखा है, मीन्स यू से आई कैन नॉट फॉरगिव. मैं इस बात को ना भूल सकता हूँ, ना मैं उनको क्षमा कर सकता हूँ, ये बात नहीं खत्म होगी मेरी तरफ से
2: 10 जन्म तक.
3: अब हमने अपना भाग्य लिखा है. फिर आई एम गोइंग टू लिव इन पेन, आई चूज नॉट टू सेट माई सेल्फ फ्री. अब अगर आपने मेरे प्रति ये पकड़ कर रखा है एंड यू डोंट सेट योर सेल्फ फ्री, इफ आई सेट माई सेल्फ फ्री, ठीक है मैंने किया, बट इट्स ओके, नाउ आई एम फाइन विद इट. मुझे रियलाइज हुआ मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी. मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ आपकी फॉरगिवनेस पे टू सेट माई सेल्फ फ्री. तो आपका पकड़ के रखना मुझ पर कोई असर नहीं डालेगा. मुझ पर कोई उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। मैंने अपने गिल्ट को भी खत्म कर लिया है, मैंने अपने कॉन्फिडेंस को वापस ले आया है, मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया कि नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर। लेकिन आपका पकड़ के रखना आपका नुकसान कर रहा है, मेरा नहीं। एंड इवन दी अदर वे राउंड, कि अगर आपने छोड़ दिया है, आपने उस बात को चित से खत्म कर दिया है, एंड इवन इफ यू से टू मी आई फॉरगिव यू, डोंट वरी, फॉरगेट इट, आई हैव फॉरगिवन यू, यू कैन फॉरगिव मी, बट टिल आई फॉरगिव माई सेल्फ इट्स नॉट ओवर फॉर मी। आप मुझे रोज उठकर बोल दो आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, मैं वो बात को भूल चुका हूं, तुम भी भूल जाओ, खत्म करो उस बात को, आपने कर दिया है, आपके करने से या बोलने से मेरा नहीं हो जाता। यू हैव टू सेट योर सेल्फ फ्री, आई हैव टू सेट माई सेल्फ फ्री, यू हैव टू फॉरगिव योर सेल्फ, आई हैव टू फॉरगिव माई सेल्फ, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरगिविंग एनीबडी एल्स।
2: सिस्टर, जो गलती हो जाती है अपने से या कोई झगड़ा हो जाता है और बार बार अगर हम माफी मांगते जाए अगला बोलता नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, तो उसका क्या मतलब क्या है फिर? उसको क्या, मेरी तरफ से तो मैंने कर दिया।
3: क्षमा करना मीन्स क्या है? मैंने क्षमा किया, जैसे
2: मैंने माफी आपसे मांग ली,
3: राइट,
2: दो बार मांग ली, सॉरी हो गई थी, बात बात खत्म करो, वो बोलता नहीं।
3: पर आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अच्छा, आप बात ही नहीं करेंगे। सी, दो चीजें हो रही है, एक बाहर एक अंदर, ठीक है। सपोज लेट से मैंने स्कूल में कोई गलती कर दी, ऑफिस में कोई गलती कर दी, कोई ऐसी चीज कर दी जिससे मेरे ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है। लेट से मुझे जॉब से टर्मिनेट किया जा रहा है, या मुझे पनिश किया जा रहा है, मेरी सैलरी पर इफेक्ट हुआ, या जो सिंपल आपने कहा मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, राइट, दिस इज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जो हम यूज करते हैं सब एक दूसरे के साथ, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, ये एक बाहर का कर्म है, ये बाहर है, इसके लिए मैं कंप्लीटली दूसरे पर डिपेंडेंट हूं कि आप प्लीज मुझे फॉरगिव करें। इस समय हम क्या कह रहे हैं? आप प्लीज मुझे फॉरगिव करें कि मेरी गलती को देखकर आपने ये जो चेंज बाहर लाया है अपने व्यवहार में, कि आपने मेरे अगेंस्ट एक्शन लिया, मुझे पनिश किया, या मुझसे बात करनी बंद की, आई एम नाउ रिक्वेस्टिंग यू कि आप प्लीज मुझे फॉरगिव करें, मतलब ये जो आपने किया है इसको प्लीज विदड्रॉ कर दीजिए, इसके लिए आई एम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू, एंड अनलेस यू डू इट ये चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज है अंदर, आपने बाहर कुछ चेंज नहीं किया है, या लेट से आपने बाहर फॉरगिव कर दिया, मतलब आपने बाहर ठीक कर दिया, आपने बात को, बात करनी मेरे से शुरू कर दी, लेकिन अंदर वो हर्ट, वो बात आपने अभी भी पकड़ के रखी है, विच मीन्स यू स्टिल होल्ड दैट पेन इनसाइड। बाहर आप नॉर्मल बात कर रहे हैं, आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, एंड ये कितनी भी पुरानी बातों के लिए भी हो सकता है, हम कहेंगे नहीं सब ठीक है ना, छोड़ो, भूल गया, लेकिन वो भूला नहीं है। छोटी सी चीज पे वो दर्द मुझे फिर से याद आता है, क्योंकि आई हैव नॉट फॉरगिवन माई सेल्फ, एंड फॉरगिवन माई सेल्फ मीन्स आई एम स्टिल इन पेन, वो हर्ट मैंने अभी तक हील नहीं किया है। जब तक वो हर्ट मैंने हील नहीं किया, मतलब वो चोट अभी भी है, उनके साथ बात हम नॉर्मल कर रहे हैं, लेकिन वो दर्द अभी भी है। अब ये जो दर्द है, इसके लिए फॉरगिवनेस मुझे कोई और नहीं दे सकता, कोई नहीं कर सकता, ये चीज मुझे खुद के लिए करनी होगी। अब जैसे आपने कहा, सपोज सामने वाला हमसे बात नहीं करता, हमने कई बार लिखा आई एम सॉरी, मेरे से गलती हुई, आई रियलाइज, लेकिन सामने वाला फिर भी बात नहीं कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं इस केस में?
2: कुछ भी नहीं कर सकते, क्या करेंगे?
3: हम ये कर सकते हैं कि हम उनके प्रति
2: बुरा ना सोचें।
3: जब हमें समझ में आ गया कि पिंग पोंग एनर्जी गेम है, तो वी हैव टू यूज दैट इक्वेशन। अभी आपने कुछ किया, मैं नाराज हूँ,
2: अपना बैट बाजू रख दें,
3: नो, साइड पे नहीं रखते। हाँ। हम एक अलग क्वालिटी की एनर्जी की पिंग पोंग गेम खेलेंगे ना। न्यूट्रल नहीं हो सकते हम, हमारी थिंकिंग बंद नहीं होती है जिनके साथ स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट है। आपने कुछ किया, मैं नाराज हुई, मैंने बात करने बंद कर दी, आपने कितनी बार आकर बोला कि आई एम सॉरी, आई रियलाइज, लेकिन मैंने बात करनी नहीं शुरू की. आई कन्वे द मैसेज आई एम हर्ट, आई एम एंग्री, एंड आई इवन कन्वे द मैसेज दैट आई हैव नो प्लान्स ऑफ फॉरगिविंग और चेंजिंग दिस, दिस इज गोइंग टू रिमेन. मैं काफी समय अभी नाराज रहने वाली हूँ, या मैं आपसे जीवन भर बात करने नहीं वाली हूँ. अब आप क्या कर सकते हैं, ये मेरे व्यवहार को देखकर एक हर्ट, दूसरा गिल्ट कि हमने इतनी बड़ी गलती करी, देखो ये रिश्ता खराब हो गया, तीसरा एक बहुत सटल रूप में मेरे प्रति नाराजगी, कैसे है इतनी बार इनको सॉरी बोला, इतनी बार इनसे अपोलोजाइज किया, मैंने जेन्युइनली अपोलोजाइज किया, ये अभी भी अपनी ईगो, अपनी आकड़, ये बात नहीं कर सकते ठीक से, कैसे है ये? तो ये एनर्जी कौन सी क्रिएट हो गई? अब ये जो एनर्जी क्रिएट हो गई, मैं तो नाराज थी, नाराज हो, हर्ट हो, बात नहीं करने वाली हो, आपने सॉरी बोला, लेकिन एनर्जी कौन सी साथ में क्रिएट कर दी, बुरा भी फील हुआ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे प्रति एक सटल रूप में आप भी अब नाराज हो गए हैं. नाराज इसलिए क्योंकि फॉरगिवनेस मांगने पर भी जब मैं ठीक नहीं हुई, आप उस बात से नाराज है. अब क्या पिंग पोंग गेम शुरू हो गया, मैं नाराज, आप भी नाराज, मैं तो पहले से ही नाराज थी, तो अब आप नाराज, वो एनर्जी मेरे पास वापस मेरे से कंटिन्यूस. अब आई एम नॉट चेंजिंग, मैं नाराज रहने वाली हूँ. आपको अपनी एनर्जी को चेंज करना है विद अंडरस्टैंडिंग कि आपने जो गलती की वो आपने रियलाइज कर लिया. यू नो इट्स लाइक आपने एक स्टिक लिया, मुझे जोर से मार दिया यहाँ पर, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जो भी, मुझे तो दर्द हुआ ना. अब आपने रियलाइज कर लिया और आपने कहा आई एम सॉरी जो वो मैंने मारा, दूसरा आई विल नॉट डू इट अगेन एंड मे बी यू विल नेवर डू इट अगेन. लेकिन वो जो चोट लगी है, वो चोट अभी बहुत दर्द कर रही है. हमें हम कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर सकते हैं कि दूसरे को कितना दर्द हुआ होगा. और कई बार क्या होता है, हम कहेंगे मेरी गलती इतनी थी, मतलब वो अभी तक पकड़ के रखेंगे उस बात को. लेकिन मैं तब तक पकड़ के रखूंगी जब तक मुझे दर्द हो रहा है. एंड इस समय अगर मैं नाराज हूं, बात नहीं कर रही हूं, हर्ट हूं, मींस मेरा वुंड वो पेन कर रहा है. आपने तो प्रॉमिस कर दिया कि आप फिर से नहीं मारेंगे, बट व्हाट अबाउट दिस पेन जो मुझे हो रहा है. यू नो व्हाट वी एक्सपेक्ट, वी एक्सपेक्ट कि हमने कहा सॉरी,
2: यार तेरे को मारा तो मारा, अभी सॉरी बोल देना, अभी क्या करूं.
3: नहीं, आपने तो राइट किया,
2: लेकिन वो जो जिसको सॉरी मैंने बोला उसको इतनी जोर से कटा कि उसको 6 साल तक दर्द हो रही है उसकी, जब भी वो दर्द को देख के कहां से माफ करेगा वो.
3: नहीं, माफ की बात नहीं है,
2: सॉरी तो उसने बोल दिया,
3: आपने सॉरी बोला, मुझे दर्द हो रहा है ना. तो मेरा दर्द क्या करता है, मेरा दर्द मुझे फिर से आपके नजदीक जाने से रोकता है. इन द सेंस के जब तक मेरी ये चोट हील नहीं होती, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं आपसे फिर से इंटरेक्ट करने के लिए रेडी हूं, जस्ट इन केस फिर से आप कुछ ऐसा करते हैं. मेरा तो अभी पहला वाला ही घाव ठीक नहीं हुआ, ये हमें ब्लॉक करता है, हमारा अपना दर्द हमें ब्लॉक करता है, हमारी अपनी नाराजगी कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी चोट दी है. सामने वाला एक्सपेक्ट करता है सॉरी बोला तो नेक्स्ट मॉर्निंग ठीक हो जाना चाहिए, वो ठीक नहीं होंगे. नाउ दिस यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आई एम इन पेन, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ईगो, इट्स नॉट एंगर, इट्स पेन, वो दर्द है. अब आप, क्योंकि मैं दर्द में हूं, गलती तो आपकी थी लेकिन दर्द मुझे हुआ, मैं दर्द में हूं, आपने सॉरी बोला, मैंने फिर भी माफ नहीं किया, अब आपका रोल क्या होगा?
2: अब क्या करूं मैं, सॉरी बोल दिया,
3: आपका एक ही एम होना चाहिए, अब सॉरी बोल दिया,
2: अभी पिंग पोंग का बॉल का
3: चेंज करना है. आपने सॉरी बोल दिया, सॉरी फॉर व्हाट वाज डन, प्रॉमिस भी कर दिया, मतलब रियलाइज भी कर दिया, आई विल नॉट डू इट अगेन, जो किया उसके लिए अपॉलोजी, रियलाइजेशन कि आगे नहीं करेंगे. अभी सिर्फ एक ही पार्ट रह गया है, जिसको हम छोड़ देते हैं, और वो ये कि ये जो मेरा दर्द हो रहा है इसको आप हील करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी आपको हील करने में अगर आप मुझे मदद करते हैं, क्योंकि मुझसे तो वो हील नहीं हो रहा, एंड देन आई कैन लीव इट टू टाइम। हम कहते हैं टाइम विल हील, जब मेरा मन करेगा अगर तो मैं उनसे बात करूंगा, नहीं मन किया तो मैं बात भी नहीं करूंगा। क्यों? टाइम, हमने उसको टाइम पर छोड़ दिया। अब आपका जो तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है, आप कुछ ऐसा करें जिससे मेरे ये जो चोट है ये जल्दी हील हो, क्योंकि ये जितनी जल्दी हील होगी उतनी जल्दी आई विल बी एबल टू कम बैक टू नॉर्मल। यू वॉन्ट मी टू कम बैक टू नॉर्मल। उसके लिए आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि अगर मैं क्षमा नहीं कर रहे हो, आप उस बात से
2: नाराज नहीं होना चाहिए।
3: अंडरस्टैंडिंग, एम्पथी, नाराज नहीं होना है, हर्ट नहीं होना, एक्सपेक्ट नहीं करना कि ये इमिजिएटली वो कर देंगे। अब आपने अगर ऐसा किया तो आपने क्या किया, आपका फ्लो ऑफ लव जो ब्लॉक हो रहा था वो नेचुरल फ्लो होने लगा, तो आपकी तरफ से जो एनर्जी आने लगी वो चेंज हो गई। पहले यहां से नाराज जा रही थी, इसीलिए वहां से नाराज भी क्रिएट होने लग गई थी। अब आपने कॉन्शियसली अंडरस्टैंडिंग से, आई अंडरस्टैंड मैंने उनको तकलीफ इतनी दी है, मेरी बात इतनी बड़ी थी, उनको बहुत बुरा लगा होगा, इंसल्ट हो गई उनके सामने, सबके सामने हर्ट हुआ होगा, मुझे लग रहा है वो बात छोटी है लेकिन हो सकता है उनके लिए वो हर्ट बहुत बड़ा हो। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि वो उस बात को दो दिन में भूल जाए लेकिन उनको शायद उस बात को भूलने में 2 महीने भी लग सकते हैं, एंड इट इज फाइन क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी से उस दर्द को हील करेंगे। ये करके अपने आप को, आप अपनी एनर्जी को चेंज कर लेंगे। जैसे ही आपकी एनर्जी चेंज हुई, मींस व्हाट हैव यू डन, द एनर्जी दैट आई सेंट यू, यू ट्रांसफॉर्म्ड इट।
2: अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन
3: आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया। मैं नाराज
2: भी नहीं किया, रिफ्लेक्ट भी नहीं किया,
3: अब ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये हम हर स्टेप पे कर सकते हैं। अब जैसे आपने ये ट्रांसफॉर्म किया, दिस स्टार्ट्स कमिंग टू मी, मेरे वुंड की हीलिंग होने शुरू हो गई, आपकी थॉट्स मेरे यहाँ टच होकर मुझे एक अलग वे ऑफ थिंकिंग में लेकर जाती है। ये होना ही है, ये होना ही है, लेकिन ये बहुत सटल है। हमें बहुत डीप अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी कि कहीं भी हम उनके प्रति

0: नाराज नहीं हैं जो हमें क्षमा नहीं कर रहे हैं, ये तो उनके लिए जो हमारे हमें क्षमा नहीं कर रहे हैं।
1: बट जो क्षमा नहीं कर रहा है वो मुझे और गिल्ट में तो पहुंचा सकता है ना कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी क्या जो तुम अभी तक बात नहीं कर रहे हो।
0: आपकी गलती का प्रोपोर्शन मेरी हर्ट के प्रोपोर्शन से नहीं होता है। हमने क्या किया, हमने सबको एक दूसरे के
1: मन, अगर आप इतने ज्यादा नाराज हो छोटी सी बात पे, आपको आप तो मुझे मैंने सोचा कि आप एक दो दिन में ठीक हो जाएंगे, अभी तो आपको 2 साल हो गए, अभी भी आपको पकड़ बैठे, यानी कि फिर मैं गिल्टी नहीं फील करूंगा।
0: नहीं, क्योंकि कई बार आपकी छोटी सी भी बात, सी आप एक
1: बात का बतंगड़ बोलते हैं।
0: नहीं, वो बात नहीं होती है, नोबडी इज डूइंग इट पर्पसली। आप एक हथौड़ा लेकर भी मुझे मार सकते हैं, आप एक छोटी सी यहाँ की टहनी लेकर या लकड़ी से भी मार सकते हैं। इम्पोर्टेंट आपकी बात नहीं है सिर्फ, इम्पोर्टेंट ये भी है कि मेरे अंदर कितनी ताकत है।
1: आपके अंदर ताकत भी हो सकती है, आपका अहंकार भी हो सकता
0: है। अहंकार मीन्स क्या, जितना ईगो मतलब मैं उतनी वीक ना।
1: ओके
0: मैं उतनी वीक हूँ ना, मैं अपने ईगो से ऊपर नहीं उठ सकती, बिकॉज मैं आत्मा कमजोर हूँ। अब आपके हिसाब से आपने एक लाइन ही बोली थी सिर्फ, मैंने तो इतना सा ही कहा था सिर्फ। ठीक है, आई रियलाइज मैंने गलत कहा था, लेकिन इतना सा ही कहा
1: एक
0: था।
1: के बदले में अगर मैं 25 बोला हुआ होता तो
0: 25 भी अगर बोला था, ये भी हो सकता है कि कोई उस 25 को 5 मिनट में भूल जाए, और ये भी हो सकता है कि कोई एक बात को 25 साल ना भूले।
1: तो यही पॉइंट आ गया आपका, रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब,
0: ट्रांसफॉर्म। क्योंकि आपकी गलती वो आपकी गलती है, लेकिन मेरा रिस्पॉन्स वो मेरी कैपेसिटी है। अगर मैं आत्मा स्ट्रॉन्गर हो, पावरफुल हो, तो बड़ी गलती का भी जो दर्द होने वाला है, जो घाव है, वो कम है। आपने आज कुछ बोला, मुझे बुरा भी लगा, मतलब घाव भी हुआ, लेकिन 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा, कल सुबह ज्यादा से ज्यादा 2 दिन आई एम फाइन। लेकिन अगर मैं आत्मा कमजोर हूँ, अहंकार ज्यादा है, गुस्सा ज्यादा है, मेरी शक्ति कम है, तो आपकी एक लाइन भी इतना दर्द क्रिएट करेगी जो मैं पता नहीं कितने साल उस बात को नहीं भूलू। अब इसके लिए आप गिल्ट नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि मेरा दर्द आपकी गलती के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मेरा दर्द मेरी कैपेसिटी टू कोप विद द पेन उस पर डिपेंडेंट है। अब जितना आप गिल्ट में जाएंगे तो भी कौन सी एनर्जी क्रिएट करते हैं। आपने सॉरी बोल दिया, आपने रियलाइज कर लिया, आप दोबारा नहीं करेंगे ये भी डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप ये वेट ना करें कि मैं कब ठीक हूं, नहीं हो रही, मतलब आपकी गलती बड़ी थी। नो नो, नाउ ओनली वन फोकस। ठीक है, उनको दर्द है, वट एवर आई कुड डू आई हैव डन, नाउ आई कैन डू ओनली वन थिंग, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ गुड विशेस कि परमात्मा ये आत्मा अब जल्दी ठीक हो जाए।
1: आपकी जो उस दिन बात हो रही थी कॉपी वाली, कोई अच्छा बात करे तो मैं करूं, कोई हेलो प्रॉपरली बोले तो मैं प्रॉपरली बोलूं, कोई बोले ए तो ए, तो मतलब आई एम कॉपिंग द वर्ल्ड, मेरी ओरिजिनलिटी कुछ नहीं। तो हुआ यूं कि मैं एक वीआईपी की सीट पर बैठा था किसी फंक्शन में, तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा वीआईपी, उसका नाम लिखा था, उसके बाजू एक और था, तो मैं अचानक जल्दी बैठ गया, तो मैं वेट कर रहा था, ये अच्छा आदमी है, बहुत लेट आया वो, पहले आया तो मैंने उसको नमस्कार किया, तो उसने मुझे ऐसे करके नमस्ते भी बराबर नमस्ते नहीं लिया और मेरे साथ बैठ गया। मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आया, फिर मैंने कहा नहीं, मैं कॉपीकैट नहीं बनूंगा। तो मैंने फिर उसको क्या किया, ब्लेसिंग्स भेजी, मैंने उसको व्हाइट लाइट में दिया, आई सेड बहुत सारी उसको एनर्जी भेजी, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग हिम दोस डर्टी वंस, वो पिंग पॉन्ग मेरे बदल दिया। बदलने के बाद कुछ ऐसी फंक्शन चल रहा था, तो 2-4 मिनट गए, 10 मिनट गए, मैं भी चुप था, ये भी चुप थे, लेकिन मैं हल्का हो गया।
0: ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: जब मैं लाइट लाइट फील करने गया तो उसके साथ वाला जो बैठा था बोले, सुरेश भाई आप इनसे मिले नहीं क्या कभी, आप आपके साथ बैठे हैं। मैंने बोला मैंने तो इनको आते ही नमस्ते किया, तो उनको गुस्सा आ गया, बोले नमस्ते किया।

0: ये भूल गया कि बोल के आई डोंट नो यू मैंने बोला हुआ था गुस्से में.
1: हाँ, तो एनर्जी, पावर ऑफ एनर्जी से दिस इज प्रैक्टिकल.
0: फिर बाद में उससे बोला नेक्स्ट डे मेरे पास लंच पे आना.
1: हाँ,
0: हम यही हैं, फंक्शन कर रहे
1: चेंज
0: हैं.
1: चेंज हो गया. एक, सिर्फ एक अटेंशन, एक अवेयरनेस, सी नाउ यू गेट प्रैक्टिकल प्रूफ शिफ्टिंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू हार्मनी.
0: लेकिन उसने फिर दोबारा लंच पे बुलाया, वहां फिर मैं अड़ गया.
1: अच्छा,
0: मैंने कहा उसने हाँ जी तो बोले मैं नहीं जाऊंगा. मैंने माफ कर दिया एक बार कि अभी मैं उसके घर जाऊं खाना खाऊं. उसने बोला हु आर यू, आई डोंट नो यू. ये फिर मेरा दिमाग मन ऐसे करने लगा. फिर मैंने कहा जाके देखते हैं. पहुंच ही गया बड़ी मुश्किल से. और इतना मुझे अच्छा लगा कि एक लगा कि मैंने अपने मन को जीत लिया. मन जीत हो गया.
1: मन जीत लिया तो जगत को भी जीत लिया. जो खुद में परिवर्तन लाया वो दूसरों को भी परिवर्तन किया ना. अवेयरनेस, कैसे अवेयरनेस, आप कहते हैं ना प्रैक्टिकल कैसे करना है इसको. ये सारा दिन में प्रैक्टिकल हो रहा है. इन्फॉर्मेशन मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, बिलीफ सिस्टम पर अटैक किया कि पुराना बिलीफ सिस्टम, वो ऐसे करेंगे मैं ऐसे करूंगा, नहीं, उस पर अटैक किया. थॉट्स को चेंज किया, अवेयर थे. ये अवेयर रहना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि पुराने बिलीफ सिस्टम के रास्ते ही ना चले जाएं कि उसने ऐसा किया. नहीं, अवेयर थे. एंड जो आपने बहुत सुंदर बातें कही कि वो अभी भी बात नहीं कर रहे थे ठीक से, आई फेल्ट लाइट. दिस हैज टू बी द एम ऑफ लाइफ. व्हेन वी आर सेइंग बीइंग ब्लिस मींस मैं फटाफट से क्या करूं, कोई बात आई भी है, कोई एनर्जी मुझे सामने से आ भी रही है, अच्छा मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आ भी रहा है, बुरा लग भी रहा है. अब अवेयरनेस मींस मैं क्या करूं अभी जिससे मेरी एनर्जी चेंज हो जाए. दिस इज इट. एवरी टाइम गोइंग बैक टू बीइंग हैप्पी. एंड जैसे आपने वो किया,
0: मैंने अच्छी एनर्जी जब देने लग गया तो खुद ही अच्छी एनर्जी में मैं बीग गया.
1: क्योंकि देने के लिए क्रिएट करनी पड़ती है और क्रिएट करने से सबसे पहले खुद को मिलती है. अब जो आपने लास्ट टाइम कहा, बट जरूरी नहीं है कि वो प्यार से बात करते हैं, ये भी एक ऑप्शन पकड़ ले. जरूरी नहीं है कि वो प्यार से बात करे. लेट्स गिव 5% चांस कि वो प्यार से बात वापस नहीं करेंगे. लेकिन अगर नहीं भी करेंगे, उनके प्यार से बात करने से पहले आप लाइट हो गए थे ना.
0: हाँ,
1: उनके प्यार से बात करने के बाद नहीं लाइट हुए ना, पहले ही लाइट हो गए थे. एम ऑफ लाइफ टू बी हैप्पी, टू बी लाइट.
0: सही बात है.
1: वो आपकी लाइटनेस और आपकी खुशी उनके प्यार से बात करने पर डिपेंडेंट नहीं थी, वो तो उसका बाय प्रोडक्ट था.
0: ब्यूटीफुल.
1: ये उसका बाय प्रोडक्ट था ना. आप खुश हुए मतलब आपने अपनी,
0: पहले मैंने अच्छी एनर्जी भेजी.
1: भेजी मतलब पहले क्रिएट की. क्रिएट की मतलब आपने अपनी थिंकिंग को चेंज किया. ठीक है, नहीं बात कर रहे, मूड होगा, रीजन होगा, वट एवर, थिंकिंग को चेंज किया. पहले थिंकिंग होती थी क्या समझ सकते हैं अपने आपको, मतलब नमस्ते का जवाब ना दे कोई. डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ही डिफरेंट डायरेक्शन में गए, अपनी क्लीनिंग की, एनर्जी चेंज हुई, लाइट फील किया. इसमें अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो तो अभी भी ऐसे होकर बैठे हैं और वो अभी भी आपको दूसरी एनर्जी भेज रहे हैं. सी, he is still sending negative energy, but because you're constantly working on yourself, आपने अपनी एनर्जी को चेंज कर लिया. अब आप खुश हैं, मतलब आप लाइट हैं. इसका रिजल्ट ये होगा कि वो भी हो जाएंगे, but that's only a byproduct. We are not doing this to change them. हम उनकी खुशी के लिए नहीं कर रहे, उनको बदलने के लिए नहीं कर रहे. वो खुश हो जाएंगे तो मैं खुश होऊंगा, इसलिए नहीं कर रहे. हम अभी अपने को खुश करने के लिए कर रहे हैं. हो सकता है हमारी एनर्जी को लेकर वो भी खुश हो जाए. दैट्स अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी. बट इवन इफ नॉट, आई एम हैप्पी. नाउ दिस इज ओनली फॉरगिवनेस. ये आपने फॉरगिव ही तो किया. किसी ने इग्नोर किया, इंसल्ट किया, आपने उस बात को अपने चित पर नहीं रखा. फॉरगिवनेस मीन्स हम उस बात को अपने चित पर न रखकर उनकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर हमने अपने को हल्का किया. लाइटनेस,
0: अपने से मैं खुश हूँ.
1: यस, एब्सोल्युटली.
0: तो ये बात तो बहुत कुछ करना था लेकिन समय हो गया है. अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे.
1: थैंक यू
0: सो मच. थैंक यू.
2: व्हेन वी होल्ड रिजेंटमेंट अगेंस्ट समवन, इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग

0: negative emotional link. We are bound to them. The one who lets it go will set themselves free. Forgiveness means forgiving ourselves by letting go of the resentment we have held on to. Even if the other person forgives us, we will remain in pain till we let go of the past negative experience. Forgiveness does not only mean we are behaving and talking as before. It means we have healed our hurt, have understood the other person's perspective, and do not hold them responsible for our pain. Do not be angry with people for not forgiving us. Understand they are still in pain and do not have the courage to interact again because they fear that they may get hurt again. Send vibrations of love and compassion which will help them to heal them.
1: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका हम सफर सनी। जी हां, आज के इस खाबों के सफर में हम लोग एच अक्षर वाले गाने सुनेंगे। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस गाने आपको सुनाएंगे 50s और 60s के। तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष कोमल शर्मा हमारे साथ हैं, जो विशेष गीतों को लेकर हमारे बीच में पहुंची हैं। तो आप सभी की तरफ से कोमल शर्मा का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। 50s और 60s के गाने उनके द्वारा सिलेक्टेड हम सुनने वाले हैं और आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही प्यारे प्यारे जो है खास गाने हम लोग सुनने वाले हैं।
1: मैं कोमल शर्मा आपके ख्वाबों के सफर में और आप हो मेरे ख्वाबों के सफर में, और धन्यवाद भी करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का पहला अल्फाबेट का गाना है एच से। गाना भी कुछ इस तरह से है, दोस्ती चेहरे की मीठी मुस्कान होती है, दोस्ती सुख दुख की पहचान होती है, रूठ भी जाएं हम तो दिल से मत लगाना, क्योंकि दोस्ती थोड़ी सी नादान होती है। चलो आज का पहला गाना है। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, हम तो फिसल गए हो, थोड़ा सा मचल गए हा हा हा। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, हम तो फिसल गए हो, यूं ही मचल गए हा हा हा।
0: ओके, जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा ये गीत, आशा भोसले और किशोरदा का गाया, सचिन देव बर्मन का संगीत, फिल्म चलती का नाम गाड़ी जो 1958 में रिलीज हुई थी। तो आइए इस गीत का लुत्फ उठाते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: क्या ख्याल है आपका।

0: मित्रों, प्यार में अगर गम मिलने लगे तो क्या होगा, कभी सोचा है? नहीं ना। और दर्द ही दर्द मिले तो क्या करोगे आप? गम की मझधार में आपको कोई छोड़ के चले जाए तो? नहीं पता ना, मैं बताती हूँ। कोई आपको छोड़ के गया, इसमें आपकी क्या गलती? मैं तो ये समझती हूँ शायद वो मेरे लायक नहीं। हाँ, समय लगेगा उसे भूलने में। भगवान कहता है कि जो होता है, जैसा होता है, अच्छा ही होता है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं तो यही समझती हूँ, बाकी आप जानो। हाँ, दीवाना हूँ मैं, दीवाना हूँ।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात आपने शेयर किया। आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी इस तरह के जो भाव है कभी कभी हमारे मन में आते हैं, लेकिन उस भावों को कभी कभी हम बयान नहीं कर पाते हैं, और गीतों के माध्यम से शायद उन चीजों को समझ पाएंगे हम लोग। तो आइए, भरत व्यास का लिखा एक खूबसूरत गीत जिसको आपने याद कराया मुकेश जी की आवाज में, मलिक साहब ने संगीत दिया इस गीत को, और ये फिल्म है सारंगा जो 1961 में आई थी। जी हाँ, और इसका टाइटल सॉन्ग भी बहुत ही खूबसूरत है। कभी आपको मौका मिले तो जरूर इस गीत को सुनना और साथ ही साथ आनंद भी उठाना। आइए आगे बढ़ते हुए अभी सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा मुकेश जी की आवाज में। खुश रहो, खुशियां बांटो।

दोस्तों अगला गाना बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, सुनने में अच्छा ही लगेगा। लम्हे ये सुहाने साथ हो ना हो, कल में आज ऐसी बात हो ना हो, आपसे प्यार हमेशा दिल में रहेगा, चाहे पूरी उम्र मुलाकात हो ना हो। जी हाँ, कुछ साथ हो ना हो कोई फर्क नहीं, आपका साथ हमेशा सुहाना लगता है, अपनी तो उम्र भी बड़ी लगने लगती है जब आपका साथ होता है। अभी जो गाना है कुछ ऐसा ही है,

0: अरे किया।
1: शर्मा जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। और ये गीत जो है, मुझे लगता है 1967 में रिलीज हुई थी। भरत व्यास साहब का लिखा हुआ ये गीत है। सुमन कल्याणपुरी और मुकेश जी ने इसे गाया था। सतीश भाटिया ने इसे संगीत से संवारा था। और बूंद जो बन गई मोती, बहुत ही खूबसूरत फिल्म का नाम है। और इस फिल्म का ये गीत अभी आपके नाम। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, खाबों का सफर में आप सभी का स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं।
2: कुछ ऐसा है, जिंदगी में ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई अपनी खास पहचान चाहिए, बस एक ही दुआ मांगते हैं रोज भगवान से, आपके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान चाहिए। प्यार करने वाले एक दूसरे की खुशी चाहते हैं, एक दूसरे का साथ चाहते हैं, हाथों में हाथ डालकर अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। प्यार बहुत ही खूबसूरत है, खूबसूरत से एक लम्हा बोलें या कुछ पल बोलें, कुछ भी बोल सकते हो। इसी के साथ कुछ ऐसा ही ये गाना है।

अच्छा ओके, आइए बहुत ही खूबसूरत गीत को आपने याद किया है अभी। शिवन रिजवी साहब ने इसे लिखा था, आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने इसे गाया था। ओपी नैयर का संगीत से सवारा हुआ ये खूबसूरत गीत दिल और मोहब्बत 1968 के एल्बम से आपके लिए अभी। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुना है रेडियो पुनी की आवाज 100.8 FM पर खाबों का सफर। मैं हूँ आपका हम सफर सनी।
1: कुछ रिश्तों को कभी भी नाम ना देना तुम, इन्हें चलने दो ऐसे ही इल्जाम ना देना तुम, ऐसे ही रहने दो तुम जिंदगी की लफ्ज में की अल्फाजों को मेरे अंजाम ना देना तुम। दिल ऐसा भी होता है, प्यार हो ना हो बस खुश और आवारों की तरह रहता है। वो दिल अच्छा होता है, प्यार किया दुख पाया वो ठीक नहीं। चलो ठीक है, अच्छा है माना, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं, किसी की कोई भी चिंता नहीं। ज़रूरी नहीं प्यार हो तभी ज़िंदगी निकले, बस निकल जाती है। ऐसा ही कुछ ये गीत है।

जी अच्छा, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने याद कराया है। अभी मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इसे लिखा था, हेमंत कुमार साहब ने इसे गाया है और सचिन देव बर्मन का संगीत। 16 साल 1958 में रिलीज हुई थी ये फिल्म। इसमें ये गाना जो है सैड और हैप्पी दोनों मूड में गाया गया है। तो अभी हम लोग सुना रहे हैं आपको हेमंत कुमार की आवाज में ये खूबसूरत नगमा, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, रेडियो पुनी की आवाज 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो प्रोग्राम खाबो खास सफर। जी बताइए।
1: आसमां में मत ढूंढ अपने सपने को, सपनों के लिए तो जमी जरूरी है। सब कुछ मिल जाए तो दुनिया में क्या मजा, जीने के लिए कमी भी जरूरी है। मित्रों, इंसान को सब कुछ मिलने के बाद भी उसकी इच्छाएं अधूरी सी रहती हैं। आज मुझे ये मिल गया तो कल के लिए दूसरी ख्वाहिश, कल मुझे वो मिल गया तो तीसरी और ख्वाहिश। मिलता जाए ख्वाहिशें आती जाती हैं, मिलता जाए ख्वाहिशें आती जाती हैं, फिर उनकी ख्वाहिशें कम नहीं होती। इंसान है ना, ख्वाहिशों से बंधा हुआ है, और ख्वाहिशें मिल भी जाएं, कब छूट जाएं नहीं पता चलता। इसलिए सही कहा है, आसमान में अपने सपनों को कभी नहीं ढूंढना चाहिए। सपने तो सिर्फ जमीन पर ही पूरे होते हैं, और सारे सपने पूरे हो जाएं तो सपनों में मजा ही क्या है। इसलिए कुछ सपने ऐसे रखो जो जमीन पर भी मिलें और जमीन पर ही रहें। जिंदगी के हौसलों को इतना ऊपर करके जीना पड़ेगा, कोई भी देखे तो बस आपको देखे और देखता रह जाए, सोचने पे मजबूर हो जाए कि जिंदगी है तो सिर्फ इसी की है, और दुनिया है तो सिर्फ इसी की है। इसी के लिए एक साथ रहना बहुत जरूरी होता है, और इसी के साथ ये गाना भी है दुनिया उसी की, जमाना उसी का।
0: अच्छा, आपने जो याद कराया है इस गीत को, ये भी गीत बहुत ही प्यारा सा है। HS बिहारी साहब ने इसे लिखा था, मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया था, OP नैयर साहब का संगीत है, कश्मीर की कली जो शम्मी कपूर साहब और खास शर्मिला टैगोर का बहुत ही खूबसूरत हिट फिल्म है 1964 में जो रिलीज हुई थी, और इसके गाने सबके सब हिट थे। तो आइए सुनते हैं एक और गीत आपके नाम, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: है दुनिया उसी की

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। कोमल शर्मा जी, बताइए आगे कौन सा गीत की तरफ आपका इशारा है?
2: पितृ दुनिया की बात तो हुई, अभी प्यार से थोड़ा बहुत रूबरू कर लेते हैं। अगर तुझसे कोई पूछे बताओ जिंदगी क्या है, तो क्या बोलेंगे आप? कुछ भी नहीं। कोई बोलेगा जिंदगी हंसी है, कोई बोलेगा जिंदगी प्यार है, कोई बोलेगा जिंदगी साथ है, कोई बोलेगा जिंदगी दोस्ती है, कोई बोलेगा जिंदगी हंसी पल है। माना अगर तुमसे कोई पूछे बताओ जिंदगी क्या है, मैं बताऊं? हथेली पे जरा सी खौफ रखना और उड़ा देना, कभी बनती थी तो कभी बिगड़ कर बैठ जाती थी। तेरे साथ जैसी भी थी जिंदगी तो जिंदगी थी, प्यार से जिंदगी तक की अब तक की ये बातें रूबरू हैं, इसी को जिंदगी कहते हैं। कब जिंदगी खत्म हो जाए किसी को नहीं पता, इसीलिए एक दूसरे के साथ प्यार से रहना, अनुभव से रहना, एक अच्छे नजरिए से रहना, उसी को सबसे बड़ा माना गया है जिंदगी। आजकल दुनिया में क्या रखा है जिंदगी के अलावा, और एक सिर्फ चंद पल और चंद प्यार के अलावा। जिंदगी सिर्फ उसी को ही बोलती है, प्यार तक की गई जिंदगी से आबरू। सुनते हैं ये गाना।
1: आपने तो बहुत ही अच्छा गीत याद कराया है। राजा मेहंदी अली खान साहब ने इसे लिखा था, लता मंगेशकर जी ने इसे गाया था और मदन मोहन साहब संगीत से इसे सवारे थे। 1962 में रिलीज हुई थी ये फिल्म, जिसका नाम था अनपढ़। तो आइए सुनते हैं

0: माना कि मोहब्बत कि ये भी एक हकीकत है, फिर भी जितना तुम बदले हो उतना भी नहीं बदला जाता। तो आइए दोस्तों, कभी कभी मोहब्बत में, प्यार में इस तरह की बातें आती है जहाँ पर बदलाव देखकर हम हैरान से रह जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं
1: दोस्तों। कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी भुला नहीं सकते, और कुछ दिन भी ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे। हमें तुमसे मोहब्बत है, हमारा इम्तिहान न ले। अगर चाहो तो दिल ले लो, मगर चाहो तो जान ले लो। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो कभी भी लौट के नहीं आते। कितनी भी कोशिशें कर लो, हम सब कुछ करने को राजी हो जाते हैं। सब कुछ मिला, सुकून की दौलत नहीं मिली। एक तुझको भूल जाने की मोहलत नहीं मिली। करने को बहुत काम थे अपने लिए, मगर हमको तेरे ख्यालों से कभी फुर्सत नहीं मिली। काम करते हैं तब भी अपनों की यादें आती हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें बहुत दिल से चाहते हैं, प्यार करते हैं, दिल में रखते हैं। क्योंकि वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिल से कभी नहीं जाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी आए और अभी चले गए। जो अभी आए अभी चले गए वो ठीक है, लेकिन जो हमेशा के लिए अपनी यादों को छोड़ के चले गए, उन्हें हम कैसे भूल जाएं। इसी के साथ ये गाना भी है, हाय रे वो दिन क्यों ना आए। सुनते हैं, बहुत अच्छा है। पुरानी यादों को ताजा कर दे शायद।
0: अभी आपने जो गीत याद करा है, जो बहुत ही खूबसूरत गाना है, अनुराधा फिल्म का 1960 में ये रिलीज हुई थी, और शैलेंद्र साहब ने इस गीत को लिखा था, लता जी ने इसे गाया था, और रविशंकर साहब ने संगीत दिया था। तो आइए सुनते हैं इस गीत को अभी। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मित्रों, ये दिल सच में बहुत आवारा है। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी इसकी सोचता है तो कभी उसकी सोचता है, कुछ नहीं जान पाते। अब देखिए ना, एच अल्फाबेट का ये हमारा आखिरी गाना है और मुझे जाना पड़ेगा और फिर से आना भी पड़ेगा। जाऊंगी तभी तो आऊंगी, पर मुझे जाना बहुत बुरा लगता है, आना बहुत अच्छा लगता है। जाने में आपसे बिछड़ जाती हूँ और आने के लिए आपका इंतजार रहता है। पर हर बात पे कल्याण है मित्रों, जाऊंगी तभी तो आऊंगी। मैं आपके ख्वाबों के सफर में आपसे अलविदा लेती हूँ और जाते जाते कुछ चंद शब्द कह के जाती हूँ। मेरे दिल की मजबूरी को कोई इल्जाम ना दे, मेरे दिल की मजबूरी को कोई इल्जाम ना दे, मुझे याद रख बेशक मेरा नाम ना ले। तेरे वहम है कि मैंने भुला दिया तुझे, तेरा वहम है कि मैंने भुला दिया तुझे, मेरी एक भी सांस ऐसी नहीं जो तेरा नाम ना ले। खुदा हाफिज, अलविदा।
1: तो चलिए, अब जो है हम लोग एक और खूबसूरत गाना जिसको हमने सुना ही था वो फिर से सुनेंगे। ये शायद बहुत ही अलग गाना जिसके बारे में मैंने कहा था, हैप्पी मूड में भी है और सैड मूड में भी है। तो आइए फिर से एक बार एक और खूबसूरत गाना हेमंत कुमार की गाया हुआ, मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा, सचिन देव बर्मन का संगीत से सवारा, 1958 का ये गाना फिर से एक बार। इसी के साथ मैं और शर्मा जी चाहेंगे इजाजत आपसे, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे इसी तरह कुछ बहुत ही पॉपुलर फेमस 50s एंड 60s के गीतों को लेकर। तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर, और जाते जाते चंद लाइनें आपके नाम, चुप चुप के आए तमाम में सफर का पता चला, वो जुदा हो गया तब उसके हुनर का पता चला, जब एक एक फूल उड़ा ले गई हवा, तब जाकर बहारों को मेरे घर का पता चला। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म। वन सेकेंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुणेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले.
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा.
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज. अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ.
3: अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर.

0: रेडियो मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। जीवन कौशल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करियर ऑप्शन कार्यक्रम को आप हर शनिवार 5 बजे सुनते हैं, तो आइए आज शनिवार का दिन है और आपसे हम जुड़ते हैं एक नए विषय को लेकर। नया नहीं, पुराना है, लेकिन फिर से एक बार रिवाइव करते हैं। जी हाँ, करियर इन चार्टर्ड अकाउंट बनकर अपना करियर को कैसे हम फ्रेम कर सकते हैं, आज हम लोग सीए बनने के विधि विधान को समझेंगे और साथ ही साथ दो सीए की प्रेरक कहानियां भी आपको सुनाने वाले हैं। साथियों, चार्टर्ड अकाउंट सीए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित, अनुशासित और विश्वसनीय पेशे में से एक है। सीए डिग्री ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान की जाती है। ये क्षेत्र वित्तीय प्रबंधन, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, बिजनेस कंसल्टिंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। जो लोग तर्क शक्ति, संख्याओं और विश्लेषण सोच में माहिर होते हैं, उनके लिए सीए करियर का शानदार विकल्प है। तो अब इसके बारे में अधिक जानकारी, क्या करता है और सीए कैसे बने, इसके बारे में भी बातें करेंगे और साथ ही साथ क्यों करें ये भी बातें हम सुनाएंगे आपको, और इस क्षेत्र में कौन कौन सी आपको कलाएं आनी चाहिए उसके बारे में भी बातें करेंगे। तो आइए यहाँ पर लेते हैं एक शानदार ब्रेक, उसके बाद फिर बातें करते हैं सीए कैसे बने इस पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। आइए बात करते हैं आज सीए बनने का तरीका क्या है, सीए क्या करता है, इससे शुरू करते हैं। सीए एक काम सिर्फ वही खातों तक सीमित नहीं बल्कि ऑडिट और एश्योरेंस, कंपनियों के खातों की जांच करना, वित्तीय रिपोर्ट की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना। दूसरा होता है टैक्स कंसल्टिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स की प्लानिंग, सरकार के नियमों के अनुसार वित्तीय प्रणाली बनाना। तीसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंपनी के खर्च, निवेश और मुनाफे का विश्लेषण, फंडिंग, बजटिंग और जोखिम प्रबंधन, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। चौथी बात आती है कॉर्पोरेट एडवाइजरी। जी हाँ साथियों, बिजनेस को नई रणनीतियां देना, मर्ज एक्विजिशन और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन तैयार करना। पांचवी बात ये आती है कि क्लाइंट काउंसलिंग, छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योग को सलाह देना, स्टार्टअप्स की मदद करना। तो जब बात आती है इन सभी की तो सीए ये सब कुछ काम करता है। अगर आप एक अच्छा बिजनेस व्यापार चलाना चाहते हैं तो सीए के साथ मिलकर अगर आप उसके पूरे प्लानिंग से अगर काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। हाँ, थोड़ी फीस जरूर देनी पड़ेगी, लेकिन फीस देने से आपका टेंशन खत्म होता है। भाई काम करो, अच्छा करो और टेंशन फ्री होके काम करो, है ना, यही तो विशेषता है। तो आप ऐसे व्यक्तियों को साथ में रखिए और टेंशन फ्री होकर अपना कार्य को अंजाम दें। तो चलिए अब बात करते हैं सीए कैसे बने, क्या करता है वो समझ लेने पर कैसे बने, इस पर बात करना आसान हो जाता। तो अगर शॉर्ट में मैं बताऊं, भारत में सीए बनने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल जरूर है, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन असंभव बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा वर्कआउट ज्यादा करना पड़ता है। पहली बात है सीए फाउंडेशन एग्जाम देना, दूसरा सीए इंटरमीडिएट एग्जाम ग्रुप 1 और 2, तीसरी बात है आर्टिकलशिप 3 वर्ष का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और चौथा सीए फाइनल एग्जाम। कुल मिलाकर 4.5 से लेकर 4.5 साल से 6 वर्ष में सीए पूरा हो सकता है। यह मेहनत और निरंतर अभ्यास पर निर्भर करता है। हो सकता है आपको 5 साल 6 साल में आप प्रॉपरली फाइनल एग्जाम देकर सीए बन सकते हैं, लेकिन अगर आप क्लियर नहीं करते हैं तो लगातार एग्जाम देते देते भी क्लियर करते हैं तो इसमें एक खूबसूरती ये है मालूम कि आप अगर पूरा नहीं भी कर पाएंगे तो असिस्ट करके भी आप अच्छा कमा सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ चीजें जो करता है उसमें से कुछ चीजें आप खुद भी कर सकते हैं और सीए को हायर करके उनका फीस देकर ये काम पूरा आप एक कंपनी बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं, आपने देखा होगा। एक व्यक्ति का काम नहीं, ये टीम वर्क का काम होता है आगे चल के। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपको समझ में तो आ गया होगा। अब इसके फायदे क्या है, है ना, इसके बारे में थोड़ी देर में जानते हैं, लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सीए कैसे बने और क्या क्या इसमें फायदे हैं? जी हाँ, सीए बनने का प्रक्रिया तो मैंने बताया, 4.5 से 6 साल लगते हैं और अब फायदा क्या है उस पर बात करते हैं, ठीक है। और सीए क्या करता है ये भी आपने लिख लिया होगा विद्यार्थी मित्रों। चलिए अब बात करते हैं सीए क्या करता है। एक उच्च आय और प्रतिष्ठा। एक फ्रेशर सीए भी आसानी से 7 से 12 लाख वार्षिक कमा सकता है। अनुभव के साथ पैकेज 20 से 50 लाख तक पहुंच सकता है। दूसरा, ऑफिस प्लस स्वतंत्र प्रैक्टिस दोनों, नौकरी भी और खुद का फॉर्म खोलने का मौका भी मिलता है। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर सीए को मिलता है। तीसरी बात, देश विदेश में अवसर। सीए डिग्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित है, इसलिए आप कहीं भी जाकर इस काम को कर सकते हैं, तो देश हो या विदेश में, दोनों जगह आपकी मांग हमेशा से है। चौथा है, स्टार्टअप्स में महत्वपूर्ण भूमिका। आज हर स्टार्टअप को वित्तीय विशेषज्ञ की जरूरत है। तो आजकल देखते हैं इंडिया में स्टार्टअप की बड़ी बूम चली है, इसमें सीए का बड़ा रोल होता है। पांचवी बात, सुरक्षित करियर है। हर उद्योग हर सेक्टर में सीए की आवश्यकता होती है, इसलिए एक बार आप सीए बन जाते हैं तो नौकरियों की लाइन लग जाती है आपके पास। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा फायदा है। थोड़ी सी मेहनत शुरू में करो और जिंदगी भर उसको जो है आराम से आप कर सकते हैं। अच्छा, इस क्षेत्र में आवश्यक जो कौशल है, स्किल्स क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तर्क शक्ति और विश्लेषण क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा, गणित व अकाउंटिंग की पकड़ हमेशा होनी चाहिए। तीसरा आता है, हर चीज में ये जरूरत है, यहां पर भी धैर्य और अनुशासन। चौथी बात आती है, जटिल समस्याओं को हल करने का कौशल। पांचवी, समय प्रबंधन, ये भी हर जगह जरूरत है। ईमानदारी और नैतिकता, इसके साथ में संचार कौशल। तो साथियों, ये सारी चीजें हर फील्ड में जरूरत है, लेकिन तर्क शक्ति और विश्लेषण क्षमता, इसमें गणित और अकाउंटिंग की पकड़, ये यहाँ पर मुख्य रूप से आपकी आवश्यकता है। अगर ये चीजें आप कर लेते हो, इसके बाद अगर आप ईमानदारी से काम करते हो, तो निश्चित तौर पे आप कम समय में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, अपने जीवन को बेहतर तरीके से डिजाइन कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि आपको अगर कोई सवाल हो, कोई बात पूछना हो, तो आप जरा

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आइए बात करते हैं एक दो कहानियों की। एक कहानी महेश पाटिल की सफलता की। साथियों, राजस्थान के एक छोटे से गांव में जन्मे महेश पाटिल बचपन से ही पढ़ाई और गणित में तेज थे। परिवार खेती बाड़ी करता था और आर्थिक हालत कमजोर थी। 12वीं में उन्होंने अकाउंट्स में 100 से 98 अंक लिए। शिक्षक ने कहा, तुम्हें सीए बनना चाहिए, तुम्हारा दिमाग संख्याओं के लिए बना है। बस फिर क्या था, महेश के दिलो दिमाग में ये बात आ गई और महेश ने सीए को अपना लक्ष्य बना लिया। फिर ना कोचिंग, ना बड़ा शहर, ना सुविधा है। और ये चीजें तो बस गांव में रहने वाले को तो हमेशा इन चीजों की कमी का खलन रहता है। वे घर में लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। पहली बार में सीए फाउंडेशन पास किया, लेकिन इंटर के एक ग्रुप में फेल हो गए। परिवार ने कहा, छोड़ दो, कोई नौकरी कर लो। क्योंकि गांव में हमेशा माता पिता कभी फेल हो जाते तो सीधा कहते हैं आप नौकरी कर लो या कोई कंपनी में ज्वाइन कर लो। लेकिन महेश के पास अपना लक्ष्य बहुत तेज था, अपनी इच्छा शक्ति ज्यादा थी, मुझे नौकरी नहीं, मुझे सीए बनना। और हमेशा महेश ने हार नहीं मानी। महेश ने अपने आप को मजबूत किया, दोबारा उन्होंने मेहनत की और परीक्षा दी और दोनों ग्रुप क्लियर कर दिए। अब आता है तीसरा, आर्टिकल शिप। साथियों, दो ग्रुप अगर आपने पास कर लिया तो आर्टिकल शिप तो आराम से कर ही सकते हैं। आर्टिकल शिप के दौरान उन्हें एक बड़ी कंपनी ने ऑडिट में काम किया। उनकी मेहनत से प्रभावित होकर उसी कंपनी ने उन्हें नौकरी का ऑफर भी दिया। आर्टिकलशिप में प्रैक्टिस होती है और प्रैक्टिस में आपको अच्छा, अगर सामने वाले को लगता है आपका काम देखकर पसंद करते हैं तो बस वहीं से आपकी जो है चल पड़ती है। सीए फाइनल में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 23 हासिल की। पूरे गांव के लोगों ने उनका जो है परिणाम देखकर उन्हें बड़ा खुश हुआ। गाँव ने आज तक ऐसा परिणाम नहीं देखा था और आज वे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। करोड़ों का पैकेज और गांव के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन गए हैं। साथियों, कहानी का संदेश यही है, संसाधन नहीं संकल्प मायने रखता है। सीए की मुश्किल कठिनाइयों से बड़ा आपका लक्ष्य होना चाहिए, तब आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आपको ये कहानी से एक बेहतरीन समझ मिल गई होगी अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए कितना मेहनत करना है। आइए आगे बढ़ते हुए एक और कहानी मैं आपको बताता हूँ, नेहा बंसल।

नेहा बंसल ने 12वीं के बाद सीए का सपना तो देखा लेकिन परिवार की जिम्मेवारियों के कारण पढ़ाई बीच में छूट गई। शादी, घर परिवार, बच्चे, सपना पीछे छूट गया। अब बहुत सारे महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ ये चीजें होती है। एक दिन उनके बेटे ने कहा, मम्मी आप पढ़ाई क्यों नहीं करती, आप हमेशा दूसरों का हिसाब रखती हैं, आप तो सीए बन सकती है। अब देखिए बच्चे का ये वाक्य उनके अंदर आग की तरह जल उठा। 10 साल बाद उन्होंने फिर से सीए की किताबें उठाई, सुबह 4 बजे पढ़ाई शुरू की, बच्चों के सोने के बाद देर रात तक तैयारी करती। एक दिन में सिर्फ 2 या 3 घंटे पढ़ने का समय, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। साथियों क्या होता है, कभी कभी हमारे लिए एक शब्द ही मोटिवेशन का काम करता है। किसी का कहा हुआ शब्द हमें ऐसा दिल को छू लेता है और हम उसके लिए जद्दोजहद मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक समय होता है हमारे जीवन में, किसी के शब्द हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं नेहा बंसल की कहानी को, और इसमें बच्चे का शब्द उनके दिल तक पहुंचा है और उन्होंने मेहनत शुरू की है। अब 3 प्रयास के बाद उन्होंने सीए फाइनल पास किया। जब आईसीएआई में उन्हें 9 उत्तीर्ण सीए की पहचान मिली, उन्होंने अपने पति और बच्चों के साथ खड़े होकर कहा, सपना देरी से पूरा हो सकता है पर खत्म नहीं होता। फिर तो क्या था, आज नेहा एक सफल सलाहकार है, टैक्स कंसल्टेंट है, और कई महिलाओं को करियर काउंसलिंग देकर प्रेरित करती है और अपने जीवन से उन्हें प्रेरणा देती है। साथियों इस कहानी का निचोड़ यही है, चार्टर्ड अकाउंट सिर्फ एक डिग्री नहीं, एक अनुशासन, एक प्रतिष्ठा और एक जिम्मेवारी है। ये करियर कठिन जरूर है, लेकिन जो युवा धैर्य, मेहनत और ईमानदारी से इसे पूरा करते हैं, वे जीवन भर सम्मान, स्थिरता और सफलता पाते हैं। सीए बनने का रास्ता चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन प्रेरक कहानियों की तरह यदि लक्ष्य स्पष्ट और नियत मजबूत हो तो सफलता निश्चित है। साथियों आशा करूंगा आपको ये दो कहानियां आपको अपने जीवन में अपने करियर के प्रति जरूर मोटिवेशन दिया होगा। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलता हूँ एक अगले नए विषय को लेकर अगले शनिवार को। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा घनीसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मस्कर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

ये बाजू मेरे आ।

अहो ऐकलत का हो आमचा रेडिओ पुणेरी हो आमचा रेडिओ पुणेरी।

0: करती हूँ।
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुनेरी आवाज।
1: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: मगर लगता है कुछ ऐसा

चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

रूपनगर की भीड़ में हमने खुद को भुलाना सी।

0: को बोला
1: कलाला। नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप नहीं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आपको नहीं कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 एफएम। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पे असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चली होंगी। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किसके पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुणेरी आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: आइए आइए दरवाजे पे क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
0: बात पुरानी बड़ी सुहानी, मनात खोलवर रुजलेल्या चित्रपट, साहित्य, संगीत, गाणी यांच्या आठवणींचा नॉस्टैल्जिक खजिना।
2: बात पुरानी बड़ी सुहानी,
0: फक्त रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। संकल्पना आणि सादर करते श्री धनंजय कुलकर्णी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: कहां से मिली?
1: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: दरकार गिर गया हाथ से, गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशरम शेखर, मेरे पास वक्ति से कुछ बातों के लिए मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
1: होता है तो होने दो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इस पूरी अवेकनिंग में, इस पूरे जागरण के प्रक्रिया में हमने ये जाना है कि किस तरह से अगर हम रिश्तों को एक नए रूप में देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं जो परेशानी आ रही थी, जो मुश्किलें आती हैं, जो हर बार हम ये कहते हैं कि रिश्ता सही नहीं चल रहा, वो बेहतर बनाया जा सकता है। चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे वो बच्चे का अपने पिता के साथ हो, या फिर एक स्टूडेंट और टीचर का हो, आज जरूरत है कि हर रिश्ते को हम एक नए अंदाज, एक नए नजरिए और जो हमने जानकारी प्राप्त की है, जो ज्ञान हमें मिला है, उस अवेयरनेस के साथ देखें तो शायद एक नए रूप में नजर आएगा। पति पत्नी के रिश्ते के कई नए प्रारूप हमारे सामने आए हैं। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उस मुद्दे पर बात करते हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव हो सकती है, और वो है विश्वास यानी ट्रस्ट। और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जब से हमने रिश्तों के ऊपर बात करनी शुरू की है, इतने सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं क्योंकि एक नए अंदाज में हम देख पा रहे हैं। इनफैक्ट मेरे लिए भी बहुत आसान हो गया है हर रिश्ते को नई नजर से देखना। और आगे बढ़े उससे पहले एक बार यही बात कर लेते हैं कि ना मैं बता रही हूँ ना आप बता रहे हैं, क्योंकि ये बात मुझे एकदम से रियलाइज हुई है कि हम कितना भी सोच लें लेकिन जब हम इस तरह से कार्यक्रम में बैठते हैं तो कुछ और बात ही निकल आती है, एक ऐसी ज्ञान की बात जो हमने सोची भी नहीं होती। तो मैं तो अपने आप को स्वयं मान रही हूँ कि मैं एक माध्यम हूँ, तो ज्ञान कहाँ से आ रहा है एक बार फिर उसके बारे में बात करते हैं।
1: जहाँ तक हर बात, हर पॉइंट जो हम यहाँ डिस्कस करते तो ये हर बात बहुत गुह्य रीति से हमें सारी जो एक्सप्लेनेशन दी है वो निराकार परमात्मा शिव, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, जो स्वयं इस समय सृष्टि पर अवतरित होकर हम आत्माओं को अपना परिचय देते और फिर जीवन जीने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है, जो जीवन में चलते चलते कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं, तो उस यात्रा को सिंपल करने के लिए जो इतना डीप नॉलेज हमें मिलता है, लेकिन द ब्यूटी ऑफ इट इज इट्स वेरी डीप बट वेरी सिंपल, और वो सिंपल होने के कारण फिर वो इम्प्लीमेंट करना इजी हो जाता है।
0: ट्रस्ट की बात करते हैं कि विश्वास, जैसा कि हम शिव बाबा पे कर रहे हैं, 100% विश्वास रखते हैं, तो उसी तरह से अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में देखें, हमने रिस्पेक्ट की बात की थी, हमने ये बात की थी, अपेक्षाओं की बात की थी, अंडरस्टैंडिंग की बात की थी, वो सारे एस्पेक्ट्स फिर भी इतने मायने नहीं रखते हैं कि कंपैटिबिलिटी भी है या नहीं। सबसे बड़ा जो, क्योंकि वो रिश्ता बन रहा है जहाँ कोई खून का रिश्ता नहीं है लेकिन फिर भी जन्मों का रिश्ता है, सो वहाँ विश्वास, हम अपने दोस्त पे विश्वास जरूर कर लेते हैं, यहाँ विश्वास, इस रिश्ते में विश्वास कितना जरूरी हो जाता है।
1: विश्वास हर रिश्ते में जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जो खून का रिश्ता है उसमें विश्वास करना इजी होगा और जो इस तरह से यात्रा के दौरान जुड़ा हुआ रिश्ता है उसमें डिफिकल्ट है। नहीं, आजकल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी विश्वास की कमी है, तो वो तो सबसे ब्यूटीफुल एंड क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशनशिप है, तो उसमें क्यों कमी है। The trust is not something which needs to be, you know, related to be a blood connection. It has to be a soul to a soul relationship. तो विश्वास तो रिश्ते के अलावा भी एक्चुअली हर आत्मा को हर आत्मा पर करना चाहिए, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट है पहले कि मैं औरों पर विश्वास करना आज क्यों मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं शायद आज खुद पर विश्वास नहीं कर पा रही।
0: नहीं, मैंने ब्लड रिलेशन की भी बात इसलिए की थी कि हम ये कहते हैं कि चलो उनको तो हम माफ कर सकते हैं, वो है तो हमारा खून ही, हमारा अपना ही है, कोई बात नहीं, गलत
1: तो उनको हम माफ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम उनको माफ करना चाहते हैं, बाकी माफ तो हम किसी को भी कर सकते हैं। सी, फॉरगिव, वी कैन फॉरगिव एनीबॉडी, व्हाई, बिकॉज आई नो हाउ टू फॉरगिव, लेकिन हम चूज करते हैं किसको फॉरगिव करना किसको नहीं करना। अगर हमें फॉरगिव करने की कला आती है तो अगर हम एक को कर सकते हैं तो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रस्ट क्या है, उसको कैसे डेवलप करना, वो मुझे पहले अपने आप के साथ एक्सपीरियंस करना पड़ता है। वर्तमान समय औरों पे ट्रस्ट करना क्यों मुश्किल है, क्योंकि ट्रस्ट अर्थात फेथ, एक इंटेग्रिटी जो मुझे आप पर या किसी और आत्मा पर करनी है, लेकिन आज जनरली हम डाउट करते हैं, यू नो, इवन इन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप वो ट्रस्ट बहुत जल्दी हिल जाता है। शिव बाबा हमें बताते हैं कि संशय और निश्चय यू नो डाउट या ट्रस्ट.

0: इसमें कोई परसेंटेज नहीं हो सकती है। हम जो एफर्ट करते हैं उसमें परसेंटेज होती है, लेकिन आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं इसमें परसेंटेज नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि थोड़ा सा ट्रस्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे मेरा ट्रस्ट
1: बढ़ता जाएगा।
0: तो शिव बाबा कहते या तो निश्चय है या निश्चय नहीं है।
1: लेकिन मैं अपने लिए ये ऑप्शंस रखता हूँ कि अगर मुझे धोखा मिला तो मैं इतना हर्ट या हर्ट नहीं हो जाऊंगी कि मैं अपनी जिंदगी ही
0: ये थॉट पहले से क्रिएट करना कि अगर मुझे धोखा मिला मतलब आई डू नॉट ट्रस्ट, मतलब आई एम ऑलरेडी डाउटिंग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेनिफिट ऑफ डाउट सामने वाले व्यक्ति को दे दिया कि इनके अंदर ये कैपेसिटी है कि ये धोखा देंगे, तो फिर वेयर इज द ट्रस्ट। परमात्मा यही बताते हैं कि अगर एक भी थॉट डाउट की आई, एक थॉट, ज्यादा नहीं, एक थॉट्स भी डाउट की आई, तो अभी आप डाउट वाली साइड पर है, ट्रस्ट वाली साइड पर नहीं है, अभी संशय है उस रिलेशनशिप में। निश्चय जिस रिलेशनशिप में होगा जहां एक भी थॉट, वर्ड, एक्शन तो आउट ऑफ द क्वेश्चन, एक भी थॉट डाउट की नहीं होगी, दैट इज ट्रस्ट। एंड फिर वो इसीलिए परसेंटेज में नहीं हो सकता। जिस दिन तक डाउट्स है माइंड में तब तक हम डाउट वाली स्टेज पे है कि मैं इनको डाउट करती हूँ, लेकिन जिस दिन मन से सारे डाउट्स हट गए, एक थॉट भी डाउट करने आया, उस दिन कह दीजिएगा कि नाउ आई ट्रस्ट दिस पर्सन।
1: लेकिन ट्रस्ट हैज टू बी अर्नड। कहा जाता है कि आपको अर्न करनी पड़ेगी, मेरा विश्वास आपको जीतना पड़ेगा। विश्वास जीतिए आप।
0: ट्रस्ट मुझे करना है तो उसके लिए सामने वाले को कुछ नहीं करना है। आप जो हैं, जैसे हैं, वैसे हैं। अब आपको ट्रस्ट करना या नहीं करना ये चॉइस मेरी है। आपको अपने आप को प्रूफ करके नहीं दिखाना होगा उसके लिए, क्योंकि वो में भी समय लगता है कि हम आपको जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्चुअली कहा जाता है कि ट्रस्ट तो फाउंडेशन है, सो दैट मींस वी आर ट्राइंग टू से कि हम एक बिल्डिंग को बनाते हैं और बनाते बनाते धीरे धीरे जब हम एक दूसरे को जान लेंगे तब ट्रस्ट वाला फ्लोर बीच में डाल देंगे। बट वी सेड इट्स द फाउंडेशन, सो दैट मींस इट विल हैव टू बी द फर्स्ट थिंग। इट कांट बी समथिंग दैट इज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज लेट्स से इन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, सो टुडे यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आप क्या कहना चाहते हैं कि एक दो तीन साल के अंदर अंदर धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप करें? हाउ डू आई गो अबाउट इट? और शुड आई से वी बिगिन इट विद ट्रस्ट? बिकॉज तब तो आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी, नहीं तो फाउंडेशन डाउट की है। डाउट की फाउंडेशन पे तो वो इमारत वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं खड़ी रहेगी, क्योंकि डाउट की फाउंडेशन पर खड़ी हुई जो अगले एक दो तीन साल भी बीते उसमें थॉट्स ऑफ ये ऐसा तो नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं कर रहे, करेंगे या नहीं करेंगे, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। ट्रस्ट इज ऑन अ लॉट ऑफ लेवल्स।
1: ट्रस्ट का मायने क्या है कि मैं आपको पोजेस कर लूंगी कि आप मेरे ही हैं? अगेन ट्रस्ट इज समथिंग हैज टू बी यू नो एक्चुअली डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि मैं आप पे कंप्लीट विश्वास करती हूँ, क्या मैं आप पे एहसान कर रही हूँ? वन सेकेंड उसका पूरा एग्जाम पूरा मतलब क्या है कि मैं आप पे कंप्लीट ट्रस्ट करती हूँ?
0: दूसरे पर ट्रस्ट करके हम दूसरे पर एहसान नहीं करते, हम अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, क्योंकि जितना समय हम डाउट में रहते हैं अंदर डिस्टर्बेंस
1: पेन रहती है, बहुत पेन है,
0: एक इनस्टेबिलिटी कंटिन्यूस, मतलब अ लॉट ऑफ वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स। और जिस क्षण ट्रस्ट करना शुरू किया ऑल वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स ओवर, तो वो एहसान दूसरे पर किया या अपने ऊपर किया? अपने ऊपर किया कि सारे जिसको कहें चिंता, बोझ, एंग्जाइटी, इट्स ऑल ओवर, बिकॉज नाउ देयर इज नो डाउट। वी कैन डाउट ऑन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, कितनी चीजें हैं जिसमें हम डाउट करते हैं, और जब वो सारा हट जाता है तो सोचो अंदर क्या होगा। दैट इज पीस, दैट इज हैप्पीनेस, जहां अंदर एकदम स्थिरता आ जाएगी। तो ये किस पर एहसान किया? अपने पर एहसान किया। दूसरे ने कुछ भी नहीं किया उसके लिए, लेकिन जिस क्षण हमें लगा कि अब हम कर सकते हैं, हमने करना शुरू कर दिया। आज हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब कोई हमारे सामने कुछ कहता है या कुछ करता है तो हमारे मन में ये डाउट होता है कि क्या ये सोचते भी यही है। Why?
1: हाँ, अगेन यू नो, क्योंकि कहते वो कुछ रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अंदर हमें नहीं मालूम कि, क्योंकि लगता ये है कि डिफरेंस होगा जो सोच रहे हैं और कहने में।
0: क्यों ऐसा लगता कि दूसरे के अंदर
1: होगा? हम खुद ऐसे
0: होते, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा है। सो सी, रिलेशनशिप इज माय कॉन्शियसनेस में आपकी इमेज। अब मेरी कॉन्शियसनेस की जो क्वालिटी होगी उसमें ही तो आपकी पिक्चर आकर बनेगी ना. मतलब मेरे पास कलर्स की क्वालिटी क्या है, दैट इज माय कॉन्शियसनेस. अब उन कलर्स से मैं आपकी पिक्चर बनाऊंगी, तो जो क्वालिटी ऑफ कलर्स होंगे वो उस पिक्चर के अंदर हाईलाइट हो जाएंगे बिल्कुल. अगर मेरी कॉन्शियसनेस में ये इंटेग्रिटी नहीं है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स इफ माई थॉट्स वर्ड्स एक्शंस आर सेपरेट, तो मुझे क्या लगेगा कि बाकी लोग भी कैसे. ऑटोमेटिकली मैं कैसे इसको बिलीव करूं, क्योंकि मेरे पास वो कलर्स ही नहीं. तो जो कलर मेरे पास है ही नहीं, तो मैं दूसरे को उस कलर में देख नहीं सकती हूँ. मेरे पास वो ही कलर है, क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस के अंदर सारा दिन में कई बार ऐसा हो रहा है कि मैं सोच कुछ और रही हूँ, बोल कुछ और रही हूँ, कर कुछ और रही हूँ. तो मेरे पास वही रंग है. अब वही रंग से मैं आपकी इमेज अपने कॉन्शियसनेस में बनाऊंगी, तो आपकी इमेज भी यही बनेगी कि आप भी सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं. अगर आप कहते भी हैं कि नहीं, मैं जो सोच रही हूँ वो ही बोल रही हूँ, आई डोंट हैव द कलर, आई डोंट हैव द कलर,
1: आई कांट रिलेट टू इट,
0: आई कांट रिलेट टू इट, आई डोंट हैव द कलर. इट्स लाइक सेइंग कि आई हैव रेड कलर, तो मैं आपकी पिक्चर रेड कलर से ही बनाऊं. आप बोलो नहीं, आई एम ब्लू कलर, आई डोंट हैव ब्लू कलर,
1: आई डोंट इवन नो व्हाट काइंड ऑफ अ ब्लू कलर. गुड,
0: आई विल स्टिल पेंट योर पिक्चर विद रेड कलर एंड आई विल स्टिल होल्ड ऑन टू द थॉट, नहीं आप सोच कुछ और रहे, बोल कुछ और रहे. तो इट इज इंटेग्रिटी एट द वेरी रूट लेवल. और ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बातों में नहीं, लेकिन सारा दिन में छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में. अब जब हम वो ट्रस्ट का कलर अपनी कॉन्शियसनेस में क्रिएट कर देंगे, और वो कैसे होगा, जब मेडिटेशन से हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि हम जो सोचते हैं वो ही बोलते हैं. अभी तक हम जो सोचते हैं वो नहीं बोलते, कहीं ना कहीं डर, कहीं ना कहीं लोगों को खुश करना, कहीं ना कहीं किसी को इम्प्रेस करना, तो प्रिटेंशन क्यों थी अभी तक, क्योंकि हमने सोचा कि मैं कौन हूँ, मैं एक शरीर हूँ, पोजिशन हूँ, स्टेटस हूँ, एक पर्सनालिटी जो मैंने क्रिएट की है. तो एक आउटर पर्सनालिटी है, और उस आउटर पर्सनालिटी को मुझे सारा दिन दूसरों को क्रिएट करके दिखाना पड़ता है. एंड अगेन इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट कि मुझे बार बार ये डिसइंटेग्रिटी से चलना पड़ता था, क्योंकि मेरी सेल्फ एस्टीम उस पर बेस्ड थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं. तो लेट्स से मैं इस टाइम बहुत उदास हूँ, बहुत परेशान हूँ, लेकिन अगर मैंने आपको बता दिया कि मैं बहुत उदास हूँ, तो आप सोचेंगे अरे आप भी उदास होते हैं. और आपका मेरे बारे में ऐसा सोचना मेरी सेल्फ एस्टीम को क्रैश कर देगा, अगर मेरी सेल्फ एस्टीम इस चीज पर बेस्ड है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं. एंड नॉर्मली आज दिन तक हमारी सेल्फ एस्टीम औरों के ओपिनियन पर बहुत ज्यादा बेस्ड थी, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को छुपा के रखना पड़ता था, और हमें वही चीजें बोलनी पड़ती थी जो औरों को अच्छी लगती है, क्योंकि हमें उन्हें खुश करना है. तो आई एम चीटिंग माई सेल्फ. तो एक्चुअली इफ यू सी सारा दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम चीटिंग माई सेल्फ बिकॉज आई डोंट हैव द करेज टू स्पीक व्हाट आई एम थिंकिंग. व्हाई? बिकॉज यू माइट नॉट लाइक इट, एंड इफ यू डोंट लाइक इट देन यू डोंट लाइक मी, एंड इफ यू डोंट लाइक मी देन आई डोंट लाइक माई सेल्फ.
1: That's important.
0: So it's very deep. So sara din mein I'm going around impressing people, influencing people, and because of that I just can't be myself. I can't be what I want to be. Spirituality ne hame apna sahi parichay diya ki main kaun hu. मैं वो आत्मा हूँ जिसके अंदर इतनी ब्यूटीफुल गुण है, शक्तियां हैं. वर्तमान समय कुछ एक कमजोरियां भी हैं, but that's okay. I'm working on that. I do not want to claim to say that I'm perfect.
1: But I can transform, no? That's what I'm working on.
0: On that. But to work on that, I have to accept that. I have to accept ke mere andar ye kamiyan hain. Lekin aaj din tak I wanted to hide
1: from myself, you know.
0: कि वो सारी कमियों को छुपा के एक इमेज क्रिएट करना चाहते थे कि आई एम जस्ट फाइन द वे आई एम. तो देन आई कुडंट बी माई सेल्फ, आई कुडंट बी माई सेल्फ. तो बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू कीप ऑन चीटिंग माई सेल्फ. तो मेरा अपने पे ट्रस्ट, और जैसी मैं हूँ वैसे ही सब लोग हैं, वो मुझे 100%.
1: वो भी कई बार आप भूल जाते हैं. इनफैक्ट बहुत ज्यादा वक्त आप खुद तो सोल कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं, हर बार आप अपने आप को याद दिला देते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों के बीच हो जाते हैं ये तो भूल जाते हैं. आपको वही, मुझे आप ही दिखेंगी जो जिस रूप में आप हैं. आई विल फॉरगेट ये अभी भी इस पे काम करना बाकी है।
0: या दैट्स ओके, बट यू नो से जब हम अपने अंदर ये काम करना शुरू कर देते हैं कि आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग माई सेल्फ, कि मेरे अंदर ये गुण हैं, विशेषताएं हैं, लेकिन ये कमजोरियां भी हैं, बट दैट्स फाइन, यू नो, सो दैट इज एक्सेप्टेंस कि इट्स ओके, ये कमजोरियां हैं एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। इंटेग्रिटी, जब मेरे अंदर ये इंटेग्रिटी आ जाएगी, देन आई कैन एक्सेप्ट अदर पीपल ऑल्सो इन द सेम वे, कि इनके अंदर भी ये गुण हैं लेकिन ये थोड़ी कमजोरियां हैं, बट आई एक्सेप्ट देम विद बोथ द थिंग्स। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको मेरे सामने आने के बाद प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आई एक्सेप्ट यू। हम प्रिटेंड किसके सामने करेंगे, जो हमें वो कमजोरियों के साथ एक्सेप्ट नहीं करते।
1: तो इनफैक्ट हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में होता यही है, बिगिनिंग में तो देयर इज अ प्रिटेंशन, लॉट ऑफ प्रिटेंशन, बट ग्रेजुअली, बिकॉज कब तक, क्योंकि आप 24 घंटे का साथ रहेगा।
0: अब उस रिश्ते में क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारा दिन प्रिटेंड करना
1: बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: आप ऑफिस थोड़ी देर प्रिटेंड कर सकते हैं, क्योंकि कभी आप किसी कोलीग के साथ हैं, कभी लेकिन जिसके साथ पूरी जीवन बितानी है उसके सामने प्रिटेंड करना बहुत मुश्किल होता, और तब जब कहीं वो प्रिटेंस गिर जाता तो इट्स लाइक अ डिफरेंट पर्सन,
1: एंड देन द कंप्लेंट कम्स इज लाइक आपका असली चेहरा आप दिखा, ये
0: थी असली, स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, जब आपने कहा ना कि जो पहले से जानते थे एक दूसरे को और फिर उस संबंध में जुड़े, लेकिन वो जो पहले जानने वाला पीरियड था
1: वो डिफरेंट था ना, वो प्रिटेंशन वाला था कि आप 2 घंटे मिल रहे हैं, 4 घंटे मिल रहे हैं, यू आर योर बेस्ट, that I have, that is actually, yes, that's understandable.
0: लेकिन जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड जब आप ये एनर्जी दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं कि आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर वीकनेसेस, तब दूसरे को आपके सामने प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा एंड तब वो जो सोच रहे हैं वो बोलेंगे। तो औरों को हमें प्रूफ नहीं करना, लाइक यू सेड ना, यू विल हैव टू विन माय ट्रस्ट, नहीं, आई हैव टू बिकम स्ट्रांग इनफ
1: टू ट्रस्ट यू,
0: टू ट्रस्ट यू।
1: ट्रस्ट का रियल सेंस में मीनिंग क्या है, मैं आप पे क्या कैसे ट्रस्ट कर रही हूँ, मैं क्या आपसे उम्मीद कर रही हूँ, या क्या मैं आपके क्या विश्वास का बेसिक मतलब क्या?
0: जब हमने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर एक्सपेक्टेशन नहीं आ सकती। एक्सेप्ट और एक्सपेक्टेशन क्या मतलब हुआ, देन दैट मींस देयर इज अगेन एन एक्सपेक्टेशन,
1: एक्सपेक्टेशन मींस यू चेंज, हां, यू विल डू दिस फॉर मी, यू विल डू दैट फॉर मी।
0: तो आप हर टाइम कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां सामने वाला व्यक्ति चेंज नहीं होगा हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार, तो ट्रस्ट मतलब मैंने एक इमेज बना ली कि आपको ऐसा होना है, जितने दिन तक आप इस इमेज के अनुसार चल रहे हैं आई से आई ट्रस्ट यू, जिस दिन वो इमेज के कॉन्ट्रडिक्टरी आपने कोई कर्म कर दिया या कोई बोल दिया, तो हम कहेंगे मेरा विश्वास टूट गया। क्यों विश्वास टूट गया, क्योंकि वो इमेज टूट गई। तो विश्वास क्या है कि आई ट्रस्ट यू, बेसिकली फॉर मी इट वुड बी, विश्वास वो है कि आई ट्रस्ट दैट यू आर फीलिंग द सेम थिंग व्हाट यू आर सेइंग, दैट्स द डीपेस्ट। क्योंकि अगर आप उस लेवल पर उसको ले आएंगे तो बाकी सारी चीजें तो सारी आराम से उस पैरामीटर के अंदर फिट हो जाएंगे, लेकिन डीपेस्ट ये है कि छोटी सी छोटी बात में आप वो ही कह रहे हैं
1: जो आप सोच रहे,
0: जो आप सोच रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, आपको मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। विश्वास तभी टूटेगा ना।
1: हाँ, यहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि ठीक है, मैंने आपको जैसे है आप जिस भी रूप में आप वैसे स्वीकार लिया, और ये मैं ये मेरा विश्वास है कि आप जो कह रहे हैं वो सच ही कह रहे हैं। आप एक तरह के थे जब मैं आपके साथ मिली, आपके साथ एक रिश्ता शुरू हुआ, आप सच में विश्वास रखते थे, सच में, एक जनरल बात मैं कर रही हूँ। जिंदगी चलती गई, आपको देखा मैंने, धीरे धीरे मैंने देखा कि वो सच पे जो आपकी अडिगता, जिसको मैं बहुत प्रशंसा करती थी, आपको एक्सेप्ट कर रही थी या कर रहा था, आप बदल गए, जिंदगी ने बदलाया, ये जो भी हुआ मैंने देखा कि आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया। तब भी मैं आपको एक्सेप्ट करती जाऊँ, बुरा लगा मुझे, क्योंकि मैं उस आपके जो वो गुण था उसको बहुत प्रशंसा करती थी, लेकिन तब भी मुझे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हुआ, और यहाँ मुझे लगा कि मेरी ट्रस्ट ब्रेक हो गई।
0: नाउ आई वुड थिंक इन दिस कि आपको मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है, ये आपकी गलती है या मेरी गलती है?
1: मेरे सामने नहीं बोल रहे, कहीं और, बाकी व्यवहार में
0: नहीं, पहले यहाँ। सी द होल एंटायर रिलेशनशिप इज फर्स्ट द एनर्जी एक्सचेंज हियर बिटवीन टू पीपल, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम तब होगी ज्यादा जब आप मेरे सामने झूठ बोल रहे हैं। अगर आप कहीं और बोल रहे हैं तो आई वुड प्रोबेबली अंडरस्टैंड कि आप वो क्यों बोल रहे हैं, आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट विद यू, लेकिन मेरे सामने जब आप बोलते हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग ऑफ योर एंड माई ट्रस्ट, यू नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर ट्रस्ट विद द अदर पीपल, लेकिन हम कहते हैं मैंने आप पर पूरा विश्वास किया, मैंने हर चीज पर पूरा विश्वास किया, आपने झूठ बोला तो मेरा ट्रस्ट टूट गया। हम ये नहीं उस पर विचार करते कि सामने वाले को मेरे सामने झूठ बोलना क्यों पड़ा।
1: जब मैं कुछ ऐसा कर चुकी हूँ या किया जो आपको पसंद नहीं आए,
0: अगेन जब आपने कुछ ऐसा किया जो आपको पता है कि अगर आपने सच बताया तो आई विल नॉट एक्सेप्ट इट एंड आई विल गिव आई विल नॉट लाइक इट और व्हाटएवर, तो तब आपको झूठ बोलना पड़ा। तो ये प्रॉब्लम किसकी थी? माय लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, मेरे अंदर एक्सेप्ट करने की ताकत नहीं थी। इस ताकत की कमी होने के कारण आपको मेरे सामने झूठ बोलना पड़ा।
1: लेकिन
0: अब हम ये कह सकते हैं लेकिन आपने गलत किया, हाँ। आपने झूठ बोला। बट वी आर नॉट हियर टू लुक एट एवरीबडी एल्सेस फॉल्ट्स। यस, अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड मेकिंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बट वी कांट चेंज देम। वी आर इन एवरी इंटरेक्शन वी आर गोइंग टू सी मैंने क्या किया इसमें, बिकॉज मैं उनको नहीं चेंज कर सकती कि वो सच बोले, लेकिन मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दूं कि सामने वाले को मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़े।
1: लेकिन रिश्तों में यही एक कहीं ये जो माइंडसेट चेंज होने की बात है, क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि वक्त के साथ साथ लोग बदलते हैं। हर रिश्ते में वो नहीं दिखता, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता, तो जहां से मैं आपको एक्सेप्ट कर रही हूँ, ऐसे एक सिचुएशन में आपने एक तरह से बिहेव किया, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वही सिचुएशन अगर 4 साल बाद आई, आपने अलग तरह से बिहेव किया, अलग तरह से आपका बिहेवियर था, अब मैं किसको एक्सेप्ट करूँ, ये वाले को एक्सेप्ट करूँ या ये वाले को एक्सेप्ट करूँ?
0: जब हम एक इंडिविजुअल को एक्सेप्ट करते हैं तो हम पूरे पैकेज को एक्सेप्ट करते हैं। तब हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चलते चलते इस यात्रा के दौरान उतार और चढ़ाव आ सकते हैं, परिस्थितियों के कारण, कोई और इंटरनल टर्मोइल के कारण, मे बी द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, इट कुड बी एनीथिंग, बट देन आई हैव एक्सेप्टेड। एंड इंस्टेड ऑफ फीलिंग हर्ट, लेट्स से एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में एक ने दूसरे से झूठ बोला, इंस्टेड ऑफ फीलिंग हर्ट टॉक इट आउट कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। यू नो नॉर्मली क्या होता है, आपने मुझसे झूठ बोला, आई एम सो हर्ट कि मैं विथड्रॉ कर जाती हूं,
1: मैं बात ही नहीं करूंगी।
0: मैं इतना हर्ट हूँ, अब मैं अपने दुख में घुलती रहती हूँ, मुझसे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला, ऐसा किया क्यों, एंड आई डोंट लाइक यू।
1: एंड यू नो व्हाट हैपेंस, अंदर तो ये दुख चलता रहेगा, ऊपर से आई विल क्रिएट अ फेस कि आई एम ओके। यू नो दैट्स अगेन अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट, कि ये भी कि मैं अंदर से तो उतनी ही परेशानी और ये परेशानी बढ़ती जाएगी, लेकिन ऊपर से आई विल क्रिएट अ फेस कि इट्स ओके,
0: इट्स ओके। या बट द थिंग इज कि जैसे ही See what happens is, हम hurt जब हो जाते हैं कि I am hurt, right? And now I don't like you because you hurt me. सबसे old belief system कि you hurt me.
1: हमेशा कोई और मुझे चोट देता है।
0: पहले तो उस belief system को जब हम change कर देते हैं कि you cannot hurt me, आपने जो किया सो किया, मैं hurt हो गई उससे, क्योंकि मेरे अंदर ताकत नहीं थी उस बात को स्वीकार करने की। तो उससे क्या होगा, मेरी आपके प्रति नेगेटिव एनर्जी नहीं जाएगी। अभी तक नेगेटिव एनर्जी क्यों जा रही है, यू हर्ट मी, आपने मुझे धोखा दिया। नहीं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड, आई एम हर्ट राइट नाउ, इट्स माई फॉल्ट, यू हैव डन व्हाट यू हैड टू डन, व्हाई एम आई हर्ट। तो पहले तो अपनी काउंसलिंग कि व्हाई एम आई हर्ट, वर्क ऑन माई सेल्फ, I need to be stable. दूसरे ने कुछ किया, but why am I getting affected? तो पहले अपनी काउंसलिंग करके अपने आप को स्ट्रांग बना ले, फिर हमारे अंदर वो ताकत होगी दूसरे की हेल्प करने की, कि what is the reason, what happened? But I am able to talk with that compassion only when I don't hate you. But जब आप मेरे को झूठ बोलते हैं तो I hate you at that time. तो hate and compassion, गुस्सा and love,
1: In fact, cannot come together. And मैंने आपको पहले ही कटघरे में रख के आप पे पूरा इल्जाम लगा के, I've already actually pun, I'm saying like, you know, I've made you a criminal already.
0: तो फिर आपको मेरे से compassion नहीं मिल सकती है उस हालत में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जिम्मेवार ठहरा दिया मेरे दर्द के लिए। जब मैं आपको अपने दर्द से अलग कर पाती हूँ कि आप अलग हैं, मेरा दर्द मेरी सेल्फ क्रिएशन है, तो पहले सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इट्स माई क्रिएशन सो आई हील इट। एंड जब मैं अपने आप को ठीक कर लेती हूँ, हील कर लेती हूँ, तब मेरे अंदर वो ताकत आ जाती है कि आपके अंदर जो चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, बिकॉज दैट्स अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप और क्या है कि आप किसी उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं, एज योर पार्टनर इन लाइफ आई शुड बी एबल टू हेल्प यू थ्रू दैट. लेकिन हम इतने अपने ही दर्द में इतने घुल जाते हैं और दूसरे पर इतना ब्लेम डाल देते हैं कि दूसरा किस दौर से गुजर रहा है
1: ये हम भूल ही जाते हैं कि हाँ दैट्स ट्रू. और गलती करने का जो स्कोप हर एक की जिंदगी में होता है,
0: गलती वो भी समझनी पड़ेगी इन द राइट पर्सपेक्टिव.
1: गलती वो गलत है भी या नहीं.
0: ये हमने उसको गलती माना तो पहले तो उसको भी तो डिस्कस करके वो पर्सपेक्टिव राइट लाना पड़ेगा. लेकिन वो तभी हो जाता है व्हेन आई लव यू इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू हैव डन.
1: दैट्स व्हाट वी से अनकंडीशनल लव द वे यू सेड कि द वे शिव बाबा
0: एंड अनकंडीशनल लव इज वेरी इजी ओनली एंड ओनली इफ आई अंडरस्टैंड कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड. अभी वो लव है लेकिन आपने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे दर्द आ गया. मैंने ये सोचा आप मेरे दर्द का कारण है तो मेरे प्यार की जगह गुस्सा आ जाता है. तो और गुस्सा जहाँ आया वहाँ प्यार नहीं है.
1: बुद्ध और नफरत सिक्के के दो पहलू है कहा जाता है कि नफरत ही प्यार की पहली सीढ़ी होती है. ये भी बहुत बातें कही जाती है.
0: प्रेम मुझात्मा का ओरिजिनल स्वरूप है, नफरत नहीं. नफरत एक संस्कार है जो बन चुका है, उसको तो हम हटा सकते हैं. लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है उसमें प्रेम और नफरत दोनों नहीं है. बिकॉज आई लाइक ओनली दैट लव. सो लव इज माई ओरिजिनल नेचर एंड आई एम फिल्ड विद इट टू बी एबल टू गिव इट टू एवरीवन एल्स.
1: सिस्टर शिवानी आज ट्रस्ट को एक नए अंदाज में देखने की कोशिश की. अब विश्वास एक ऐसी चीज थी जो हम दूसरों पर करते थे, लेकिन आज ये बात फिर साफ हो गई कि मैं से होता हुआ ही हर चीज जाएगी तो वो कर क्यों रही हूँ अपने लिए. यू नो आई बिकम वेरी इम्पोर्टेंट. बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए. ओम शांति. कोई भी रिश्ता कहा जाता है कि उसकी नींव अगर मजबूत हो तो फिर वो इमारत या वो रिश्ता बहुत सुदृढ़ होता है. पति पत्नी के इस रिश्ते में हमने देखा कि हर बार हम कहते थे कि नींव विश्वास की है, लेकिन आज विश्वास डगमगा रहा है तो वो किसी और के कारण नहीं बल्कि हमारे अपने ही कारण. ये बात अगर समझ में आ जाती है तो रिश्तों को एक नया रूप दिया जा सकता है और विश्वास को दोबारा कायम किया जा सकता है. ये भी बात कि एक बार विश्वास टूट गया तो दोबारा नहीं हो सकता, जब मेरे ही हाथ में है तो मैं विश्वास दोबारा कर सकती हूँ. अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 09999 3445, 09999 3446, 09873 666 555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इन दिनों हम बात कर रहे हैं रिश्तों की. रिश्ते जो हमारी जिंदगी में रस लाते हैं, हमें जिंदगी जीने का नया अंदाज देते हैं और जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं. दोबारा आपसे होगी मुलाकात और कुछ खास रिश्तों के साथ फिर जुड़ेंगे आपके साथ. अब दीजिए इजाजत. ओम शांति.

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा आनंद लूटा।
1: वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। ये जो पूरी बातचीत हमारी चल रही है, इसमें हमने ये जानने की कोशिश की है कि जो डिप्रेशन है, क्या वो कहीं इनहेरेंट है? क्यों हो जाता है हमें डिप्रेशन? क्यों हम या हमारे अपने कभी कभी ऐसा फील करते हैं कि कोई नहीं है हमारे साथ जिसके साथ हम कुछ शेयर कर सके? इंटरनलाइज करके

0: क्या हम इस डिप्रेशन से खुद ही बाहर आ सकते हैं, ये पूरी जर्नी हमने तय की है। इसमें बहुत सी बातें सामने आई हैं, बहुत सी मिथ ब्रेक हुई हैं। तो एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल, जाने माने साइकोथेरेपिस्ट। आपका हार्दिक स्वागत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका भी हार्दिक स्वागत।
2: ओम शांति।
0: ओम शांति। डॉक्टर पटेल, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं।
1: ये जो छह स्टेजेस है, सबसे पहली सबसे उत्तम स्टेज है, वह रेयर हो सकती है कि भी जीवन में पूरी लाइवलीनेस है, नो, देयर इज अ स्पार्क इन योर लाइफ। सेकंड स्टेज है कि भी अभी भी आप सुखी है, अच्छे है, आपको जीवन में आनंद, अधिकतर समय जो है वो आपका सुख में ही बीत रहा है, नो, यू आर वेरी हैप्पी विथ योर सेल्फ। फिर थर्ड स्टेज अब जो यहाँ शुरुआत होती है कि भी कभी खुशी कभी गम, भाई थोड़ा समय खुशी है, ज्यादा ही समय दुख है, और उसी को हमने जीवन को अपना एक हिस्सा बना लिया, कि भी यहाँ पर प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। फिर जो फोर्थ स्टेज है कि खुशी थोड़ी सी है दो चार घंटे, और दुख बहुत ज्यादा, 80% 75% बस तनाव में, दुख में, निराशा में बीतते हैं। फिर स्टेज है कि भी जब सचमुच डिप्रेशन है, व्यक्ति को लगता है कि भी यहाँ पर ट्रीटमेंट की भी जरूरत होगी, व्यक्ति डिप्रेस, और लास्ट है कि भी ही विल इवन कमिट सुसाइड,
0: तरीके ढूंढने लगते हैं।
1: नो, इवन ही विल कमिट सुसाइड। फिफ्थ स्टेज में भी तरीके ढूंढ सकते हैं, वो
0: डिप्रेस में तो उन्हें इम्प्लीमेंट
1: में तो इम्प्लीमेंट कर लेगा, और दैट इज द वर्स्ट थिंग।
0: और थॉट को लेके एक जर्नी अगर हम देखें तो थॉट को लेके भी एक बात कही गई थी कि थॉट ही जो जनरेट हो रहे हैं वो हमें डिप्रेशन में लेकर जाते हैं, और थॉट ही हमें बाहर भी ला सकते हैं।
1: हाँ जी हाँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं हमेशा बताता हूँ कि लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, समस्या समझते भी ये हो गया इसके कारण मैं डिप्रेशन, परंतु वह सत्य नहीं है। वास्तव में विचार ही फीलिंग्स निर्माण करते हैं। आमतौर पर मैं एक सिंपल इक्वेशन बताता हूँ कि दो चीजें, और दो चीजों को अगर जोड़ेंगे तो मैथमेटिकली ये बात प्रूव हो जाएगी। पहला इक्वेशन है कि जो कुछ भी हम फील करते हैं, अच्छा या बुरा, उन सभी फीलिंग्स का जो फाउंडेशन है वह है हमारे विचार। जब तक आपको सुख के विचार नहीं है, सुख का अनुभव नहीं होगा। जब तक निराशा के विचार नहीं है, डिप्रेशन का अनुभव नहीं होगा। हो सकता है कि अनकॉन्शियस लेवल पर वो डिप्रेशन के विचार चल रहे, परंतु है जरूर। और सेकेंड इक्वेशन है कि थॉट्स आर अंडर योर कंट्रोल। जैसे हाथ को ऊपर नीचे करना है मेरे कंट्रोल में, मैं चाहूं तो एक घंटा भी हाथ को ऊपर रखूं, भले दर्द होगा, मुझे तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, परंतु यह संभव है। ऐसे ही विचारों को भी मोड़ना आपके कंट्रोल में।
0: दो रियलिटीज हमारे सामने आती हैं कि थॉट क्रिएट्स माय फीलिंग एंड द अदर वन इज कि मैं अपने
1: थॉट्स आर अंडर माय कंट्रोल टू नेक्स्ट। अब ये दोनों को अगर आप मिलाएंगे और एक तीसरा स्टेटमेंट बनाओ, तो तीसरा स्टेटमेंट बनेगा फीलिंग्स आर अंडर माय कंट्रोल, बिकॉज थॉट लीड्स टू फीलिंग एंड थॉट्स आर अंडर माय कंट्रोल। तो ये एक फाउंडेशन होना चाहिए कि भी जो भी आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ योर थॉट।
0: तो वो जो इंटरनल जर्नी की बात ये आती है,
2: दिस कैन चेंज लाइफ। ये फॉर्मूला, मतलब यही फॉर्मूला हमने बार बार अलग अलग रीति से दोहराया, लेकिन ये फॉर्मूला जिस जो रियली इसको समझ ले, लाइफ इज चेंज्ड पूरी तरह से, क्योंकि पूरी लाइफ कंट्रोल में आ जाएगी ना।
0: जब हमने थॉट जनरेशन की बात की थी तो कुछ चीजें हैं जो थॉट जनरेट गवर्न करती है, वो कहीं चेंज करना भी जरूरी है कि मैं थॉट जनरेट कैसे कर रही हूँ या कैसे कर रहा हूँ, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट।
2: जो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं, एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवरलास्टिंग एंड इट्स नेचुरल, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी। तो आपकी बिलीफ सिस्टम आपके थॉट प्रोसेस पर बहुत पावरफुल।
0: और बिल्कुल जिस तरह से डॉक्टर पटेल ने भी कहा कि जो सिक्स्थ स्टेज है, जो कि हर पल खुशी है हमारे पास, हर पल सुख है, वो ही सत्य है। अगर हम ये माने तो फिर हम कभी खुशी कभी गम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, वी हैव टू रीच देयर। डॉक्टर पटेल, एंगर की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट डिप्रेशन, जब हमने डिप्रेशन की बात की थी, दुख की बात की थी, तब हमने कहा था कि खुद

0: पर जब हम गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा जो है वो केंद्रित है खुद पे, तो वो डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन यही गुस्सा हमने जब बाहर भी देखा तब भी डिप्रेशन का कारण निकला हमारे सामने, जो हमने ढूंढे थे कि कई बार कहीं ना कहीं ना, तो वो डिप्रेशन बाहर भी गुस्सा था। तो गुस्सा जो है वो एक बहुत बड़ा कल्प्रिट के सामने की तरह सामने आता है जब भी। और गुस्सा और असर्टिवनेस, ये दो एस्पेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बड़ी थिन लाइन है, कहीं मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज एंगर एंड व्हाट इज असर्टिवनेस?
1: अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे बिहेवियर का स्पेक्ट्रम क्या है। अगर देखिए, हम जो भी अपना व्यवहार करते हैं औरों के साथ, तो उसके एक एंड में तो है सप्रेशन, जब अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं, और दूसरा एंड है एंगर। अब देखेंगे दोनों हार्मफुल है। सप्रेशन से कैंसर हो सकता है, सप्रेशन से भी डिप्रेशन हो सकता है, और एंगर भी उतना ही हार्मफुल है।
0: अच्छा, जब हमने इंटरनलाइज कर दिया, सप्रेस कर दिया, तब
1: तो दैट कैन लीड टू डिप्रेशन, कैंसर ऑल्सो। और एंगर से हार्ट अटैक आ सकता है, ब्लड प्रेशर आज जो इतना बढ़ रहा है उसका कॉज गुस्सा है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम, इसको भी डिस्कस करना चाहिए। इस वक्त तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये दोनों बुरे हैं। जैसे कहा भी गया है कि मिडिल पाथ इज द बेस्ट पाथ, तो ये जो मध्यम मार्ग इस बिहेवियर में क्या है, वो मध्यम मार्ग है असर्टिव बिहेवियर। मतलब क्या कि आप एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स, कि कोई चीज आपको पसंद नहीं आई तो जरूर बताइए, परंतु स्टेबिलिटी को मेंटेन करिए। क्रोध क्यों हार्मफुल है, क्योंकि जब आपको क्रोध आता है तब जो आपका लॉजिक है वो लॉजिक खत्म हो जाता है, है ना। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि भी गुस्से में बुद्धि के आगे पर्दा आ जाता है,
0: नाश हो जाता है बुद्धि।
1: हाँ, बुद्धि का नाश होता है, आप ठीक से उस सिचुएशन को देख नहीं पाते और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। भले आपने माफी भी मांग ली, परंतु उस व्यक्ति को जीवन भर याद रहेगा कि इसने मेरे पर गुस्सा किया था। तो इसलिए जो मध्यम मार्ग सबसे अच्छा है वह है असर्टिव बिहेवियर, की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके अपनी बात को एक्सप्रेस करो, भले उसमें ट्रेनिंग आवश्यक है, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, परंतु ये जो मध्यम मार्ग है वह सबसे अच्छा है। आई विल गिव यू कपल ऑफ एग्जाम्पल्स। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि इससे बहुत कुछ सीखना है। इट्स अ रियल स्टोरी ऑफ माई पेशेंट, कि वो डॉक्टर थे वास्तव में, और एक बार उनकी जो सेक्रेटरी थी वो 25,000 रुपये लेके भाग गई, कि उस दिन बिल्कुल गुस्सा नहीं है, एकदम स्टेबल रहे, उनको तो ऐसा लगा कि भी मेरा लॉस कम हुआ, हो सकता था कि वो 2,00,000 भी लेके भाग जाती, सब कुछ उसी के कंट्रोल में था। और अब दूसरे ही दिन उनके घर पुश बटन टेलीफोन को रिपेयर करने की जरूरत थी, तो लाइनमैन को बुलाया, लाइनमैन ने कहा इसके 500 रुपये लगेंगे, तो वो बार्गेन करने, अरे 500 रुपया तो बहुत होता है, तो 100 रुपये का भी काम नहीं है, तो बस ये बार्गेन कर रहे थे, उतने में उसके बूढ़े पिता अंदर से बेडरूम से बाहर आए और कहा दे देना, क्यों इसके साथ इतना झगड़ा करता है। तो एकदम गुस्से में आ जाएगा, तुम चुप बैठो, क्यों ऐसा मेरे में दखल कर रहे हो, तुमको अक्ल नहीं है, बहुत कुछ बोल दिया। तो देखो, अब ये जो सिचुएशन को अगर हम देखें तो असर्टिव बिहेवियर क्या होती है, पहले तो इसमें यह समझना है कि भाई पिछले दिन गुस्सा नहीं आया था, लॉस बड़ा था,
0: क्योंकि सप्रेस भी किया होगा ना कहीं,
1: सप्रेस, या तो ये बात थी कि भी लॉस वाज लेस, 25 के बदले 2,00,000 भी वो लेके भाग जाते, परंतु यहाँ पर उनको यह हुआ कि भी वो जो है ना 200-300 रुपये की बचत हो सकती है, थोड़ा बार्गेन किया जाए। और गुस्से का कारण यह था कि भी फादर मुझे इंटरफियर क्यों कर रहे, नो दैट जो ईगो को ठेस पहुंची उसके कारण गुस्सा आया। और अब यहाँ असर्टिव बिहेवियर क्या होती, अगर तब वो अच्छे से ट्रेन होते तो वो यह कह सकते थे कि पिताजी आप प्लीज बैठो, ये इस मामले को मुझे डील करने दो, बोले थोड़ा स्ट्रांगली भी कह सकते हैं कि भी आपको इसका पता नहीं, आप प्लीज अपने कमरे में जाओ, दैट वॉज नॉट एन एंगर। लेकिन जो उल्टा सीधा बोल दिया वो पिता को कितनी उसकी फीलिंग हुई होगी, और अपने पर भी हुई, जो गुस्से में कहा
0: गिल्ट,
1: तो हाँ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हुई, गिल्ट की भी इफेक्ट हुई।
0: वो जो आपने कहा कि लर्निंग है, यू नो वी हैव टू लर्न।

0: to be assertive and not get angry. How can we do that?
1: बोलो कुछ examples, थोड़े detail में अगर हम जाए और कुछ और भी examples ले तो ये बात स्पष्ट हो सकती है. और एक उदाहरण देता हूं कि एक बार एक व्यक्ति ऑफिस से आए और उन्होंने अपने वैलेट से कुछ पैसे वहां पर रख दिए और स्नान करने चले गए. जब छोटा सा बच्चा था करीब 2.5-3 साल का, खेलता खेलता वहां आया, 500 रुपए की नोट थी, उसे खेलता रहा खेलता रहा, उसने फाड़ दी. जब पिता ने यह देखा तो इतना गुस्से में आया कि उसकी पिटाई कर दी. कि बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और हॉस्पिटल का बिल हुआ 3,500 रुपए. तो देखो गुस्से का क्या रिजल्ट है.
0: वो, तो और वो 3,500 तो छोड़िए, वो बेचारे वो, बच्चे को गिल्ट में जो रहे होंगे वो पूरा टाइम.
1: और जो बच्चे को इफेक्ट हुई, हेल्थ पर भी उसकी इफेक्ट हुई, जो ट्रॉमा हुआ वह ट्रॉमा भी बहुत बड़ा था. तो अब यहाँ एसर्टिव बिहेवियर क्या होती. सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि परिस्थिति क्रोध पैदा नहीं करती है, हमारे विचार क्रोध पैदा करते हैं, जो आगे भी हमने डिस्कस किया. यहाँ पर भी वो परिस्थिति नहीं कर रही है, परंतु विचार कि भाई ये 500 रुपए का लॉस हुआ. पिछले एग्जाम्पल में एक भी फादर जो इंटरफियर कर रहे हैं, तो अगर उनके विचारों में परिवर्तन लाए कि सबसे पहले तो मेरी गलती है कि जब छोटा बच्चा घर में है तो 500 रुपए के नोट ऐसे ऊपर नहीं छोड़ सकते, कल आपने जहर की बॉटल छोड़ दी होती थी वो पी लेगा. तो दिस इज योर मिस्टेक. नाउ मे बी यू हैव लॉस्ट 500 रुपीज, परंतु एक बहुत बड़ा सबक है.
0: लेकिन वो जो एंगर उन्होंने बच्चे पे निकाला या फादर पे निकाला, वो भी कहीं ना कहीं और से भी एक्यूमुलेट हुआ होगा. एक्चुअली सिस्टर शिवानी, ये जो एक्यूमुलेशन है, हम अगेन सेपरेशन, सेपरेशन और एंगर के दो आपने कहा धुरियां हैं, दो यू नो बीच का मार्ग जो है असर्टिवनेस है. ये सप्रेशन ही जो हमने कहीं सप्रेस करके, वो एंगर कहीं एक आई थिंक इट्स अ साइकिल.
2: आई डोंट नो, बट थोड़ा सा फर्क शायद वट एवर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के, अगर यहाँ के एंड पे सप्रेशन है, यहाँ इस एंड पे एंगर है, तो असर्टिवनेस शायद बीच में नहीं आएगा. क्योंकि सप्रेशन, आई डोंट नो, बिकॉज क्योंकि सप्रेशन अगर कर दिया, इसका मतलब वो एंगर वाली फीलिंग तो अंदर जेनरेट हो ही गई ना. तो वो तो फिर असर्टिवनेस वुड बी प्रोबेबली जहां एंगर की कोई फीलिंग ही नहीं जेनरेट हो रही है. क्योंकि कहां अगर एंगर की फीलिंग, मतलब आपने वो एनर्जी तो अक्यूमुलेट कर ही ली है अंदर, अब वो है आपके अंदर, अब आप कितना भी पोलाइटली या कितना भी पॉलिश्ड वे में दूसरे को बोलने की कोशिश करें, आप आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएं, लेकिन वो एनर्जी तो ट्रांसफर हो ही रही है. और आप एक या दो बार असर्टिव होते हैं, लेकिन जैसा ही सामने वाला नहीं मानता है तो वो एंगर अक्यूमुलेटेड है, तो वो स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ चला जाएगा, कि वो एंगर बाहर निकल आएगा,
0: निकलेगा ही. एक्चुअली वही, अगर हम दोनों इंसिडेंसेस लें कि फादर ने जब कहा, तो ये जो मेरी ईगो हर्ट हुई, वो ईगो हर्ट होने वाला एस्पेक्ट आना ही नहीं चाहिए, बट क्योंकि मैं एक डील कर रहा हूँ, फादर विल नॉट अंडरस्टैंड दैट, सो यू हैव टू मेक द फादर अंडरस्टैंड, फादर होल्ड ऑन, ये एक डीलिंग है, इट्स अ कमर्शियल डील, आई विल डील यू जस्ट, बट इट्स नॉट लाइक इफ ही फेल्ट हर्ट,
2: इट वो नहीं कर पाओगे आप.
0: फिर वो असर्टिवनेस, आई थिंक समवेयर, आई थिंक इट शुड बी अगेन अवे
2: अवे.
0: एंगर के दोनों एस्पेक्ट, ये जो दोनों धुरियों के एस्पेक्ट से दूर होके, चाहे मध्य मार्ग ही कहें हम उसको, कि वो एक मध्य मार्ग है, या ओनली आई थिंक सोल्यूशन शुड बी ओनली वे इज असर्टिवनेस, क्योंकि काम तो हमें करवाने हैं फिर.
2: लेकिन असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा. क्योंकि असर्टिवनेस, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इनर स्टेबिलिटी. तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब. यू नो, तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल, बट नाउ आई एम बींग असर्टिव. तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस of anger, उसको जब पूरा खत्म होगा, internally बिल्कुल calm and in control है, लेकिन फिर भी आपको discipline करना, मतलब कोई भी सामने वाले को discipline करना है, तो ऐसे look, not like this, finished, you know, and assertive जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा you know, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप full in control है. anger में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली इतने डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप होने वाला है।
1: शिवानी बेन जो कहते हैं उसमें एक दूसरा एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में सोच रहा था वह है सजगता या तो अवेयरनेस। अगर वो सजगता आ जाए पहले ही कि भी गुस्सा आ रहा है या सप्रेशन हो रहा है एंड देन यू प्रॉपरली से देन यू एसर्ट तो फिर वह नेगेटिव इफेक्ट कम होगी।
2: क्योंकि मेजोरिटी लोग अपने एंगर को असर्टिवनेस का नाम दे देते हैं एंड फिर अपने एंगर को जस्टिफाई कर देते हैं कि काम करने के लिए असर्टिव है वो सारा क्रोध वो सारा कुछ क्रोध ही है।
0: और अगेन उसको जानने का कि क्या मैं एंग्री थी या मैं असर्टिव थी अपने अंदर इंटरनलाइज करके एक बार फिर से ये बात करना कि क्या मैं सहज रही आई फेल्ट बैड अबाउट इट बिकॉज द वे द मोमेंट नेगेटिव एनर्जी जनरेट हुई मतलब मुझे बुरा लगा। तो अगर मैं असर्टिव रहूंगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा आई एम एबल टू हैंडल द सिचुएशन विदाउट हर्टिंग एनीवन
2: एंड हर्टिंग योरसेल्फ।
0: यस हाँ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट सेल्फ बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ एक बार फिर डिटेल में जाने की कोशिश हम ये करते हैं डॉक्टर साहब फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे आते हैं कि क्यों एंगर एक तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव एनर्जी जनरेट करके मुझे बर्न आउट कर रहा है ये तो हम कहते हैं। अगर हम रियली केमिकल सेंस में जाएं अगर मेडिकल टर्म्स में जाएं व्हेन आई गेट एंगरी ऑफकोर्स उसके जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो दिख रहे हैं मुझे कि मुझे कैंसर तक हो सकता है मुझे ब्लड प्रेशर हो जाता है मुझे हार्ट अटैक हो जाता है बट केमिकली What really happens?
2: उस क्षण क्या हो जाता है?
1: तो सबसे जो बड़ी बात है हमको ब्रेन को समझना होगा कि भी हमारे ब्रेन में दो सिस्टम्स है एक सिस्टम है ना वो एक्सेलरेटर जैसी है दूसरी सिस्टम ब्रेक की तरह है। बेस्ट है इसका बैलेंस होना चाहिए जिसको कहा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। लेकिन जब गुस्सा आता है तब जो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्सेलरेटर की तरह वो बहुत फास्ट काम करती है और उससे सारी सिस्टम पर इफेक्ट होता है। ये जो हम खुद एहसास करते हैं आपने भी जैसे कहा कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और आपको दिमाग में फीलिंग होगी सारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ होने लगेगा सो दैट इज बिकॉज सिंपैथेटिक सिस्टम हैज इज वर्किंग उसकी एक हार्मफुल इफेक्ट है। दूसरा है कि शरीर में कई हॉर्मोन्स भी है एक तो है कॉर्टिसोल की जो बहुत डेंजरस हॉर्मोन है वो कॉर्टिसोल बड़ी मात्रा में रिलीज होता है जब गुस्सा आता है। दूसरा एक एड्रेनालिन एड्रेनालिन भी उसकी सर्ज होती है और बहुत सारे भी ये तो बेसिक हॉर्मोन्स है। कहते हैं हमारा ब्रेन है आज 800 से ज्यादा केमिकल्स रिलीज करता है वो सारे के सारे में डिस्टर्बेंस आते हैं और इसके कारण बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट होती है।
2: डेफिनेटली
1: और एक जो चीज समझनी चाहिए कि दिमाग में जो ब्लड वेसल्स है जिसको कैपिलरीज कहा गया है बहुत ही पतली एकदम थिन ब्लड वेसल्स है तो जो थिन ब्लड वेसल्स है उसमें जो फोर्स से ब्लड जाएगा तो फूट भी सकते
0: माइक्रो डैमेज की बात करते हैमरेज हो जाता है
1: या नर्वस ब्रेकडाउन डिफरेंट है ये हेमरेज की जो बात ठीक है
0: इवन पैरालिसिस देखा है मैंने कि बहुत गुस्से में आते हैं तो एकदम से पैरालिसिस
1: और अगर पैरालिसिस न भी हुआ तो भी एक सूक्ष्म में तो डैमेज हो रहा है
0: नंबनेस हो सकता है
1: आपको पता नहीं चलता है नहीं क्योंकि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर
0: सो एवरी टाइम वी गेट एंग्री व्हाट रियली
1: हैपेंस हां सपोज कि भी कितने कोई स्टडी नहीं हुई परंतु कुछ तो न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं।
0: अच्छा और ये न्यूरॉन्स
1: 2500 जितने भी है कुछ न्यूरॉन्स आपके डैमेज होते और न्यूरॉन्स एक ऐसे आपने बहुत अच्छा कहा कि जो फिर से रिवाइव नहीं हो सकते इसलिए यहाँ पर कहीं घाव हो तो दोबारा ठीक हो जाएगा परंतु एक बार न्यूरॉन्स डैमेज हुए तो वो रीजनरेट नहीं हो सकता।
0: तो वही जैसे कहा जाता है कि गुस्से में जो हमने तीर निकाला है एक तो ये कि अपना डैमेज तो किया ही अगर हम देखें न्यूरॉन डैमेज किया जो कि कभी दोबारा नहीं जनरेट होगा दोबारा नहीं बन पाएंगे दूसरी तरफ हमने जिसको कहा है वो जो तीर निकला है वो भी कभी वापस तरकश में नहीं आता है।
2: लेकिन उसको अगर हम वही इम्पोर्टेंट है वो हम बहुत ज्यादा आजकल नहीं सोचते हैं कि दूसरे को हमने हर्ट किया क्योंकि हम अपने एंगर को जस्टिफाई कर देते हैं कि नहीं उसने गलत किया था तो उसे डांटना ही था सो फॉरगेट इट। अगर आप दूसरे के लिए नहीं सोच पाते हो कोई बात नहीं लेकिन ये जो आप अपना इतना सारा नुकसान कर रहे हो इतने सारे केमिकल इम्बैलेंस इतना सारा जो आपके अपने लिए तो सोचो
1: अपने लिए
0: अच्छा, और ये जो आपने कहा कि जो केमिकल्स जनरेट हुए जो कि काफी हार्मफुल है, इनको स्टेबल होने में फिर वक्त लगता होगा?
1: बहुत टाइम लगेगा ना, इट कैन बी इवन डेज टुगेदर
0: एक्चुअली
1: नॉर्मल स्टेज में आए.
0: तो जब हम कहीं अपनी हेल्थ की बात करते हैं, जब हम खुद से प्यार करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बॉडी है ये इम्पोर्टेंट है, एक व्हीकल तो है ही, हमें जिस मंजिल तक पहुंचना है उसका, तो उसको मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है.
2: इसीलिए हम कहते हैं कि हम अपने आप से आज प्यार नहीं करते, क्योंकि हम सारा दिन बहुत ज्यादा नुकसान अपना करते हैं, तो औरों को क्या प्यार देंगे. खुद से ही प्यार करना नहीं सीखा अभी. जहाँ खुद से प्यार करना सीखेंगे तो इन सारी चीजों पर कितना अटेंशन रखेंगे. दूसरे को ठीक करने जा रहे हैं, अपने को बीमार कर रहे हैं गुस्सा करके. You know, this is so fruitless, absolutely.
0: Anger is important. बिना गुस्से के काम नहीं होता है. Anger is an outlet. ये इतनी सारी myth में हम कितना भी समझा लें नहीं निकलते हैं लोग, मतलब हम नहीं निकल पाते.
1: लेकिन लोग चाहते हैं, ये भी नहीं कि नहीं चाहते, वास्तव में उनके पास प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं है. हमारे पास ब्रह्मा कुमारीज में जो कहीं माउंट आबू में कॉन्फ्रेंसेस होती है, तो हमारी जो बड़ी दादियां हैं वो हमेशा ये कहती है कि भी कोई ना कोई आप दान देके जाओ, पैसे का दान नहीं, परंतु अपने में जो बुराइयां है वो बुराइयां यहाँ छोड़ के जाओ.
0: बहुत सुंदर, एंगर का दान करके.
1: तो मेजोरिटी एंगर कहते हैं.
0: बिल्कुल, आज हम आप सबसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आज आज के इस प्रोग्राम को देखते देखते, आज की इस कड़ी में एक दान आप भी कीजिए, और वो है एंगर का. एंगर को जरूर दान दे दीजिए, और मुझे तो लगता है कि आग में जला दीजिए, स्वाह कर दीजिए.
1: लोग चाहते हैं, ये जो सारे इससे देखा गया है कि भी लोग इसको छोड़ना चाहते हैं, सिर्फ बात है कि उनके पास टेक्निक्स नहीं है. सही तो, अगर टेक्निक मिल जाए तो लोग जरूर उसको लाइफ में भी अपनाएंगे.
0: बहुत सुंदर आपने बात की, और उसी को हम पूरे इस प्रोसेस में जानने की कोशिश कर रहे हैं. चलते चलते सिस्टर शिवानी, असर्टिवनेस एंड एंगर. एंगर इज ऑफकोर्स वी हैव अंडरस्टूड इज रियली बैड, खराब है, बहुत खराब है. असर्टिवनेस कितनी हद तक होनी चाहिए, कितना असर्ट करना जरूरी है?
2: एक्चुअली तो असर्ट करना करे बिना काम हो जाएगा. तो पहली बात, बार बार अपने आप को ये मार्जिन भी देना, वो फिर असर्टिवनेस एंगर की तरफ चली जाएगी. तो मोस्टली प्यार से काम करना और प्यार से काम करवाना, क्योंकि आई बिलीव एटलीस्ट कि अगर काम प्यार से नहीं हो सकता तो डांट कर जबरदस्ती करवाने का उसमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं है. यू नो, योर रिलेशनशिप इज ब्रेकिंग डाउन एंड मोर इम्पोर्टेंट इज रिलेशनशिप, नॉट द वर्क. लेकिन फिर भी अगर काम करवाने के लिए आपको वो असर्टिवनेस का आधार लेना है, तो इनर बिल्कुल एंगर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसको असर्टिवनेस नहीं कह सकते. यू आर चीटिंग योर सेल्फ. डोंट चीट योर सेल्फ. से आई एम एंग्री. नो, डोंट से आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट बींग असर्टिव. ये चीटिंग है अपने आप से, दूसरे से भी. तो आप पहले तो अंदर बिल्कुल स्टेबल है, और फिर आपको जो कुछ कहना है उसको अथॉरिटी से और बहुत डिसिप्लिन्ड. एंड असर्टिव डजंट हैव टू बी लाउड,
0: सॉफ्टली.
2: You know, it doesn't have to be loud. हम सोचते हैं जोर से बोल दिया तो that is assertive, that is a trace of anger. आपका volume बढ़ ही नहीं सकता है जब तक वो energy accumulate नहीं हुई है अंदर. तो even जब हमारा volume इस तरह से जोर

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा है, स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के महाराष्ट्र मध्य भारत में बसे रामोशी आदिवासी समुदाय द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए संघर्ष के मुखिया थे। फड़के का मानना था कि ब्रिटिश शासन से आमने सामने के युद्धों में पार पाना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने छापामार प्रणाली अपनाई और अंग्रेजों के खजानों और शस्त्रागारों को लूटने लगे। शस्त्रार्जन के लिए पैसे की समस्या हल करने के लिए वे कभी कभी बड़े बड़े रईसों और सेठ साहूकारों के यहाँ डाके डालते थे। अमीरों का धन लूटकर वे गरीबों में बांटते और समाजवाद का व्यवहारिक रूप जीवन में अपनाते। फड़के के आतंक से अंग्रेजी हुकूमत की नींद हराम हो गई। सन 1857 में उन्हें पकड़ने के लिए जाल डाले जाने लगे। मुंबई के गवर्नर सर रिचर्ड टेपल ने घोषित किया कि फड़के को पकड़ने या मारने वाले व्यक्ति को 5,000 रूपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। वीर फड़के कब चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी घोषणा कर दी कि कोई मुंबई के गवर्नर सर रिचर्ड टेपल का सिर लाकर देगा तो उसे 10,000 रूपए इनाम में दिए जाएंगे। वासुदेव बलवंत फड़के को 1880 में गिरफ्तार करके आजीवन कारावास का दंड देकर अंडमान भेज दिया गया, जहां उन्होंने 17 फरवरी 1883 को जीवन की अंतिम सांस ली।

0: यार मैं नहीं मानता इस बात को, ये तो सरासर बेवकूफी है।
1: हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ।
2: क्या बेवकूफी इसमें बताओ, तुम इसको अपनी परिस्थितियों के हिसाब से सोच रहे हो, पर जरा उसके हिसाब से तो सोचो।
0: इसमें सोचने की कुछ बात ही नहीं है।
3: क्या बात है बेटा, आज किस बात पर बहस हो रही है तुम लोगों में? शायद मैं कुछ मदद कर सकूं?
2: कुछ नहीं काका, ये बोल रहा है कि इसके पड़ोस में एक आंटी रहती हैं। उनके लड़के ने 35,000 की नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि कंपनी उसे दूसरे शहर भेज रही थी।
3: हाँ तो उस लड़के को बाहर नहीं जाना होगा।
1: अरे पागल है वो।
4: ओए चुप कर काका, मैं बताता हूँ पूरी बात। उस लड़के के पिता नहीं है और वो इकलौता तो है घर में, इसलिए उसने अपनी माँ के लिए यहीं रहकर 12,000 की नौकरी ही ज्वाइन कर ली है। अब वो माँ को किसके भरोसे छोड़कर जाएगा?
3: फिर तो उसने सही किया।
2: पर काका,
3: बिल्कुल सही, जैसा महान क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था।
2: वासुदेव बलवंत फड़के,
0: ये कौन थे काका?
1: अरे क्रांतिकारी थे, अभी अभी काका ने कहा था, सुना नहीं क्या तूने?
4: वो है कितनी बार कहा है कि कम बोला कर। हाँ काका प्लीज हमें कुछ बताइए इनके बारे में।
2: पर काका पहले कुछ चाय और खाने के लिए बुलवा दीजिए, बहुत भूख लगी है।
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे गंजू चाय और समोसे लेते आना। हाँ तो भाई सुनो, वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म 4 नवंबर 1845 को शिरडोन में हुआ था। वासुदेव पूना में फौज के वित्तीय विभाग कार्यालय में काम किया करते थे। अरे उस समय पूना में अंग्रेजी फौज का भारी दबदबा था। हाँ एक दिन वासुदेव जी फाइलों को अपने अंग्रेजी साहब के सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार कर रहे थे। ये काम उन्हें नित्य ही करना पड़ता था, जिस कारण उन्हें हमेशा देर हो जाती थी। तो एक दिन
5: दिन भर इन फाइलों के बीच में रहते रहते तो मेरे सिर में दर्द होने लगा है।
6: तो आप नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते, कोई बिना फाइल वाली नौकरी कर लीजिए।
5: अरे नहीं भाई, दूसरी बार इस तरह का जोखिम नहीं उठा सकता मैं।
6: दूसरी बार? पहली बार कब उठाया आपने?
5: पहली बार शादी करके।
6: अरे फड़के जी क्या बात है, आप तो अपना काम इतनी तेजी से कर रहे हैं और इतना ध्यान मग्न होकर कर रहे हैं जैसे यहाँ कोई और है ही नहीं।
7: नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आज दफ्तर से जल्दी जाना चाहता हूँ, क्योंकि नगर में आज सार्वजनिक सभा स्थल पर देशभक्त न्यायमूर्ति रानाडे जी का भाषण होने वाला है और मैं इस भाषण से वंचित नहीं होना चाहता।
5: हाँ मैंने आपसे उनके बारे में काफी कुछ सुना है, लगता है आप उनके विशेष भक्त हैं।
7: जी हाँ, उनके उत्तेजक भाषण से मेरे मन को प्रेरणा मिलती, ये यूं कहिए कि जीवन धारा का प्रवाह। मगर अभी तो इन फाइलों का प्रवाह खत्म हुआ, अब बस साहब को ये दे दूं फिर फ्री।
8: वासु दादा,
7: क्या बात है, तुम यहां?
8: दादा तुम्हारी माँ गंभीर रूप से बीमार हो गई है और वो तुम्हारे नाम की रट लगाए हुए है, जल्दी करो दादा, जल्दी गांव जाओ।
7: अच्छा मैं साहब से कहकर अभी आता हूं। सर मैं अंदर आ सकता हूँ?
9: यस।
7: सर ये मेरी सारी फाइलें कंप्लीट हो गई।
9: ओके वहां टेबल पर रख दो। क्या बात है, कुछ कहना है?
7: सर गांव में मेरी माताजी गंभीर रूप से बीमार हो गई, मुझे शीघ्र ही बुलाया है, मुझे कुछ दिन की छुट्टी दे दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी।
9: नो नो नो नो नो नो, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी।
7: सर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा?
9: ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी माँ मर ही जाएगी, यदि माँ का ही मोह था तो नौकरी करने क्यों आए?
7: सर मेरी माँ बीमार है, मुझे जाना ही होगा।
9: बट आई कांट हेल्प यू, दिस इज नॉट ए जोक, द जॉब इज जॉब मिस्टर फड़के, अंडरस्टैंड?
7: तो ठीक है सर, मैं अपनी माँ के लिए नौकरी का मोह छोड़ रहा हूँ, मैं अपना त्याग पत्र लिखकर आपको दिए जाता हूँ, मेरी मां मुझे पुकार रही है।
10: देश के नौजवानों को अंग्रेजों द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, कानून नहीं कैसा, वो कुछ करके ना दिखा सके। अपने देश की स्वाधीनता के लिए आज के नौजवानों को फिर से महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी बनके दिखाने की जरूरत है।
3: तो ये थे वासुदेव बलवंत फड़के जी, जिन्होंने अपनी मां के लिए अपनी नौकरी को त्याग दिया। यही तो है जीवन बेटा, जहां आपको कभी कभी किसी और के लिए अपने आप को या अपना कुछ महत्वपूर्ण त्याग करना पड़ता है।
2: आप सही कह रहे हैं काका, हम इस बात को समझ ना सके थे।
7: काका, ये तो उनका अपनी मां के प्रति प्रेम था, सो उन्होंने वो त्याग किया। अब आप उनके क्रांतिकारी जीवन के बारे में बताइए ना।
1: हाँ काका, हम उनके बारे में और जानना चाहते हैं।
3: जरूर जरूर बच्चों, फड़के जी के मन में उस राजनेता के वो अंतिम वाक्य बार बार गूंजते रहे कि अपने देश की स्वाधीनता के लिए आज के नौजवानों को महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी बनकर दिखाने की जरूरत है। फड़के अपने गांव शिरडोन जहां पहुंचे, उनकी मां तो बच नहीं सकी, पर उन्हें संतोष था कि वो उनके अंतिम समय में उनके पास

0: माता को विदेशी दासता के चुंगल से मुक्त कराना चाहिए।
1: फड़के जी ने परिस्थितियों का अच्छी तरह से अध्ययन किया और निश्चित किया कि ब्रिटिश शासन का पंजा भारत की भूमि पर दृढ़ता से जम चुका है और अब आमने सामने के युद्धों में उससे पार पाना बहुत मुश्किल है। अतः केवल छापामार युद्ध प्रणाली से ही अंग्रेजी शासन के पंजों को कुछ ढीला किया जा सकता है। उन्होंने वन्य जातियों को सैन्य रूप में संगठित किया और रामोशी, नाइक और भील जातियों की सेनाएं संगठित की। इस अभियान में उनके साथ शामिल हुए दौलतराव रामोशी और गोविंद राव दावरे, जिन्हें जनरल दावरे कहा जाता था, और फड़के जी को शिवाजी द्वितीय।
0: साथियों, हमारी भारत माता को इन अंग्रेजों ने गुलामी की बेड़ियों में जकड़ रखा है। ऐसे में हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते। क्या हमारी रगों में बहने वाला खून ठंडा पड़ गया है? क्या हमारी तलवारों में वो धार नहीं बची कि हम गुलामी के अंधकार को चीरकर स्वतंत्रता का सूर्य देखें? हम इतने कायर नहीं कि अपनी माँ को लहूलुहान देखकर मुंह फेर कर बैठ जाएं? क्या हम इस लायक भी नहीं कि अपनी, अपने परिवार की, अपनी धरती माता की रक्षा कर सकें? याद रखो, जो अपने परिवार को, अपनी जन्मभूमि को, अपनी मातृभूमि को बचा ना सके, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। यदि आज हमने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब ना दिया तो आने वाली पीढ़ियां हमें धिक्कारेगी। इसलिए बांध लो सर पर कफन और निकल पड़ो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, और ये प्रतिज्ञा लो कि जब तक हम अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र नहीं करा देते, हम चैन की नींद नहीं सोएंगे और दिखा देंगे इन गोरे फिरंगियों को कि इस पवित्र भूमि के एक एक सपूत का खून अब लावा बन चुका है और ये उमड़ता हुआ सैलाब उन्हें नेस्तनाबूद कर देगा।
2: और हम मुट्ठी भर लोग इतनी विशाल अंग्रेज सेना का मुकाबला कैसे करेंगे?
0: हाँ, मुझे पता है हम मुट्ठी भर हैं, मगर ये मत भूलो कि युद्ध में विजय सैनिकों की भीड़ से नहीं बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति और सही रणनीति से मिलती है। सवाल ये नहीं कि युद्ध कितने सैनिकों से लड़ा जाए, बल्कि ये है कि कैसे लड़ा जाए, क्योंकि युद्ध कोई दो दलों के बीच खेला जाने वाला मनोरंजक खेल नहीं है कि जिसमें दोनों दलों के खिलाड़ी नियमबद्ध एवं अनुशासित तरीके से अपना प्रदर्शन करें। ये तो अस्तित्व की लड़ाई है और इसे जीतना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हाँ, और हम उनसे आमने सामने की लड़ाई नहीं कर सकते, मगर हम छापामार युद्ध तो कर सकते हैं।
3: मगर फड़के जी, उसके लिए भी तो हमें और साथियों की आवश्यकता पड़ेगी।
0: हाँ, इसके लिए हमें सेना संगठित करनी होगी। जाओ, वन जातियों, मजदूर, किसान, आम नागरिक, जो कोई भी हमारे साथ इस संग्राम में जुड़ना चाहे उसे जोड़ो और अपनी सेना तैयार करो और इन फिरंगियों के विरुद्ध इस निर्णायक युद्ध का शंखनाद कर दो। हाँ, और रानाडे महाशय ने भी तो यही कहा था कि आज देश के नौजवानों को छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप बनकर दिखाना है।
4: फड़के जी, मैंने अपने सभी दल बल को आपकी सेना में सम्मिलित तो कर लिया है, पर हम इनको प्रशिक्षण देंगे कहाँ?
0: ये तो मैं भी सोच रहा हूँ।
5: मेरे विचार से अगर हम अपनी सेना को गुल टेकड़ी और कम्यूरसन की पहाड़ियों पर ट्रेनिंग दें तो कैसा रहेगा? हम सबकी सुरक्षा की दृष्टि से भी वो जगह ठीक रहेगी।
4: ये तो बहुत अच्छा विचार है, वो जगह अंग्रेजों की पहुंच से बहुत दूर है।
0: मैं भी आप लोगों की बातों से सहमत, तो फिर वहां कल से ही प्रशिक्षण शुरू कर देना चाहिए।
5: ये तो ठीक रहा, पर हमारे काम काज के लिए धन कहां से आएगा?
0: मैंने इसका हल पहले ही ढूंढ लिया है। हम अंग्रेजों के खजानों और शास्त्रागारों में छापा मारकर धन और शस्त्र लूट लेंगे। कभी कभी हम बड़े रईसों और सेठ साहूकारों के यहां भी डाके डालेंगे। बचे हुए धन को गरीबों में बांट दिया जाएगा। लूटे हुए सारे धन का पहले पंचनामा करेंगे और फिर मालिक को रसीद देंगे। देश के स्वाधीन होने पर लूटा हुआ धन ब्याज सहित वापस कर देंगे।
4: फिर तो काम हमें जल्द ही शुरू कर देना चाहिए।
6: शाबाश, मजबूती से जमे रहो। अरे कमजोर आदमी क्या अंग्रेजों से लड़ेगा।

0: जरा जोर लगा।
1: नहीं भाई तलवार ऐसे नहीं, ये यहाँ से पकड़ो मजबूती से और सामने वाला वार करे ऐसे।
2: इसलिए कुछ समय से फारके की सेना का आकार और आतंक बढ़ने लगा है।
3: था मुझे समझ नहीं आता कि सिर्फ वन्य जातियों को संगठित कर उसने इतनी बड़ी सेना कैसे बना ली।
2: उसने हैदराबाद के निजाम के राज्य में से पठानों और रुहेलों को भी अपनी सेना में भर्ती कर लिया है, इसलिए उसकी मजबूती तीनों दिन बढ़ती जा रही है।
3: हमें चल ही कुछ करना होगा सर, वरना इस फर्के की सेना ने तो अभी हमारी सिर्फ जड़ ही हिलाई है, अगर कुछ न किया तो ये हमें ही उखाड़ फेंकेंगे।
4: अठारह सौ छिहत्तर सतहत्तर में महाराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा। भूख की पीड़ा से हजारों व्यक्ति काल के गाल में समा गए। फड़के जी से ये देखा नहीं गया, उनकी आत्मा विद्रोह कर उठी। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था,

मेरे देशवासी उसी भारत माता के पुत्र हैं जिनका मैं हूं। वे भूखे मरे और मैं उनके लिए कुछ ना कर पाऊं। हम अपने ही देश में जानवरों का जीवन व्यतीत करें, ये विचार भी मेरे लिए असंभव है। मैं इसी बात पर दिन रात विचार किया करता हूं। सैकड़ों कष्ट देकर मेरे हृदय ने निश्चय कर लिया है कि ब्रिटिश सत्ता का खात्मा करूंगा। अब और कोई विचार मेरे मन में नहीं आते और ना रातों को नींद आती है। देशवासियों की सहायता करने और उन्हें स्वतंत्र कराने के प्रयत्न में मेरे प्राण निछावर कर देना कहीं अच्छा है।

0: बच्चों अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए फड़ के जुट गए। अंग्रेजों के खजाने लूट लूट कर वो गरीबों के पेट भरने लगे। सरकारी अफसर थर थर कांपने लगे। अंग्रेज भक्त अफसर बौखला गए। उनको खबर मिली कि गांवों और छोटे छोटे नगरों में रहने वाले अंग्रेज भाग भाग कर पूना पहुंचने लगे, लेकिन वो तो अपनी बात पर अटल थे। उन्होंने फैसला किया कि
1: तो ठीक है, पूना चलो, हम पूना में छापे मारेंगे, वहां के सरकारी भवन जला दो और अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दो, सतारा जिले को रौंद डालो, ब्रिटिश जेलों पर थावा बोलकर कैदियों को मुक्त करा दो। मुक्त होने के बाद जो कैदी चाहें तो अपने अपने घर जा सकते हैं, या चाहें तो हमारे साथ रहकर देश को स्वाधीन कराने में हमारी सहायता कर सकते हैं।
2: हारके के आतंक ने हमारी नींद हराम कर दी। यदि हमने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो वो जल्द ही सारे महाराष्ट्र से हमें बाहर कर देंगे।
3: ठीक है, अंग्रेज अफसरों से कहो कि जितने भी क्रांतिकारी विद्रोही दिखे उन्हें गोली मार दी जाए, फांसी के फांदों पर लटका दो, जिंदा जला दो, घोड़ों की छापों से कुचलवा दो या संगीनों से छेद दो।
2: फिर तो कोई भी इंडियन फिर से सिर उठाने का साहस नहीं करेगा और ना ही देश की आजादी की बात सोचेगा।
4: फड़के साहब, आपने सुना वो अंग्रेजों का क्रूरतापूर्ण कदम?
1: हां सुना और महसूस भी किया, लेकिन उन्हें क्या पता कि भारतीय क्रांतिकारी रक्त बीज होते हैं। एक शहीद के खून से सैकड़ों क्रांतिकारी पैदा होकर शहीदों की पंक्तियों में पहुंचने के लिए बेचैन हो उठते हैं।
4: अब हमें आगे क्या करना चाहिए?
1: ब्रिटिशों पर हमारा आक्रमण और अधिक तेज कर दो। और आप सुनाए रामोशी जी, क्या खबर लाए?
5: जी, बंबई के गवर्नर सर रिचर्ड टेम्पल ने घोषित किया है कि आपको पकड़ने या मारने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे।
1: तो ठीक है, हमारी तरफ से भी ये घोषित कर दो कि जो कोई बंबई के गवर्नर का सर लाकर मुझे देगा मैं उसे 10,000 रुपये का इनाम दूंगा।
0: अंग्रेजी सरकार ने अपने प्रयत्न और तेज कर दिए। फड़के को पकड़ने के लिए निजाम तथा अंग्रेजों की फौजें पीछा कर रही थी। मेजर डेनियल और मिस्टर स्टीफेंसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं ने उसका पीछा किया। फड़के निजाम के राज्य में जा निकला। निरंतर भागते रहने के कारण एक दिन वो बहुत थक गया। बुखार ने भी उस पर आक्रमण कर दिया। आश्रय पाने के लिए वो हैदराबाद के कलादगी जिले के एक गांव में पहुंचा और देवी के मंदिर में विश्राम करने लगा। बुखार व थकान के कारण वो मूर्छित जैसा हो गया। तभी पीछा करती हुई ब्रिटिश सेना वहां पहुंच गई। मेजर डेनियल उसकी छाती पर खड़ा हो गया और बूट पहने हुए उसने अपना एक पैर फड़के के गले पर रख दिया और बोला,
6: कहो मिस्टर फड़के, अब क्या चाहते हो?
1: तुमसे तलवार के दो दो हाथ करना चाहता हूं।
6: दो दो हाथ? तुम अभी इस हालत में नहीं हो फड़के, इसे हथकड़ी पहनाकर पूना ले चलो। तुम पर पूना में राष्ट्रों का मुकदमा चलाया जाएगा।

0: हड़के पर लूट, डकैती, चोरी एवं हत्याओं के आरोप सिद्ध हो चुके हैं। इन्हें आजन कारावास का दंड सुनाया जाता है। परंतु फड़के जैसे महाभयंकर कैदी को भारत की किसी जेल या अंडमान में रखना उचित नहीं, इसीलिए फड़के को अदन की जेल में रखा जाए।
1: फड़के को अदन की जेल में रखा गया। वीर फड़के ने वहां भी अपना पराक्रम दिखाया और वो अदन की जेल तोड़कर भाग निकला। यदि वो भारत के किसी जेल से भागा होता तो ब्रिटिश सरकार उसकी छाया भी नहीं छू सकती थी। परंतु वो विदेश में था। जेल से निकलकर वो जंगलों में भूखा प्यासा भटकता रहा, गंतव्य नहीं समझ सका। दोबारा पकड़कर वो फिर से जेल में ठूस दिया गया। अदन की जेल में ही वीर वासुदेव फड़के ने 17 फरवरी 1883 को जीवन की अंतिम सांस ली। भारत की भूमि से तो वो वीर विदा हो ही चुका था, वो अब दुनिया से भी विदा हो गया। हम उससे अलविदा भी नहीं कह पाए।

0: निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
1: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का

0: ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मी मोनाली सावगत. तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशिया बांटो.
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मकुमारीज. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांति.
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग ब्लिस.
2: थैंक यू.
1: शुरू करने से पहले मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा.
2: जरूर.
1: इट्स अबाउट रिजेंटमेंट एंड फॉरगिवनेस. व्हेन यू होल्ड रिजेंटमेंट टुवर्ड्स अनदर, यू आर बाउंड टू दैट पर्सन और कंडीशन बाय एन इमोशनल लिंक दैट इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील. फॉरगिवनेस इज द ओनली वे to dissolve that link and get free.
2: बहुत सुंदर है. अब इसकी गहराई में चलते हैं कि अगर हम किसी के भी प्रति, जैसे हमने पिछली बार भी देखा, उन्होंने किया, हमने भी वही किया, तो मतलब हमने उनके प्रति वो एनर्जी को पकड़ कर रखा. And this is such a beautiful line which says कि if you hold it, that link is stronger than स्टील. एंड ये जो लिंक है जो हमने पकड़ कर रखा, ये तकलीफ किसको देने वाला है? ये कॉन्स्टेंटली तकलीफ मुझे ही ज्यादा देने वाला है. एंड देन इट सेज फॉरगिवनेस मीन्स यू सेट योर सेल्फ फ्री.
1: बट वो स्टील वाली बात, स्ट्रॉन्गर देन स्टील,
2: पकड़
1: लिया तो ऐसा मतलब
2: पकड़ लिया मतलब फिर वो टूटेगा नहीं ना. आपका वो जो कनेक्शन है, रिजेंटमेंट की एनर्जी है, आपसे भी जा रही है तो वो उधर तक पहुंचेगी, दूसरा भी उसके प्रति क्रिएट करेगा.
1: तो मैं रिजेंटमेंट नफरत लेके जीऊं,
2: सामने वाला भी तो लेगा. तो जब दोनों लेंगे तो वो लिंक क्या हो जाएगा? इट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग. अब अगर दोनों ने कुछ पकड़ा हुआ है और वो ऐसे कनेक्ट बना हुआ है, लिंक बना हुआ है, अगर एक भी छोड़ देता है, लिंक टूट जाता है. फिर बेसिकली कनेक्शन बन नहीं सकता जब एक छोड़ दे. लेकिन जब तक दोनों पकड़ के रखते हैं, हम क्या होता है रिश्तों में, हम सोचते हैं हमें दोनों को कुछ करना होगा, हम दोनों को इस बात को ठीक करना होगा. दैट्स व्हाई हम अपना ज्यादा समय किस में बिताते हैं, कम बात को ठीक करे, सॉर्ट आउट करे, समझे. दोनों को नहीं करना है. एक ने अगर छोड़ा, यू सेट योर सेल्फ फ्री, यू डोंट हैव टू वेट. अगर दोनों के हाथ में वो लगी हुई है, आप बंधे हुए हैं, आप जीवन भर बंधे रहेंगे. अब अगर आपने एक ने खोला, दूसरे के हाथ में तो फिर भी वो बंदी हुई है, है ना.
1: डोंट
2: वी सी कि आपने एक ने छोड़ा, वो दूसरे के हाथ में पूरी वो लटकी हुई दिखाई देती है, पर एक के हाथ में बंदी हुई है. मतलब अगर दूसरा पकड़ के भी रखे आपके प्रति कोई बात, कोई नफरत, कोई कुछ, इट्स ओके. वो फिर उसने अपने को पकड़ के रखा है, लेकिन लिंक टूट जाएगा. एंड जैसे लिंक टूट जाएगा, यू सेट योर सेल्फ फ्री. दिस इज अ वेरी वेरी वेरी डीप थिंग. अब फॉरगिवनेस के लिए हम आज बहुत बार ये कहते हैं कि फॉरगिव करना बहुत मुश्किल है, हम नहीं फॉरगिव कर सकते.
1: अगर इसको हम दया कहें सिस्टर, अगर शब्द दया यूज करें कि भाई किसी पे दया करो, उसको माफ कर दो, तो एक्चुअली दया हम किस पे कर रहे हैं?
2: अपने आप पे.
1: वही तो मैं सोच रहा हूँ.
2: जब आप अपने को फ्री कर रहे हैं, आप अपने को फ्री कर रहे हैं.
1: हम लोग कितना बचपन से लाइन सुनते हैं, यार उस पे रहम करो, उसको माफ कर दो, उस पर दया करो, उसको छोड़ दो, मुझे माफ कर भगवान, मुझ पर दया कर. दया तो एक्चुअली हम अपने आप पे करते हैं जब दूसरे को.
2: बिल्कुल. अगर मैंने कोई गलती की है या कुछ भी किया है, आपके साथ कुछ गलत किया या कोई भी बात हुई है और आपने उसको पकड़ के रखा है, मीन्स यू से आई कैन नॉट फॉरगिव. मैं इस बात को ना भूल सकता हूँ, ना मैं उनको क्षमा कर सकता हूँ. ये बात नहीं खत्म होगी मेरी तरफ से
1: 10 जन्म तक.
2: अब हमने अपना भाग्य लिखा है. फिर आई एम गोइंग टू लिव इन पेन. आई चूज नॉट टू सेट माई सेल्फ फ्री. अब अगर आपने मेरे प्रति ये पकड़ कर रखा है एंड यू डोंट सेट योर सेल्फ फ्री, इफ आई सेट माई सेल्फ फ्री, ठीक है मैंने किया, बट इट्स ओके, नाउ आई एम फाइन विद इट. मुझे रियलाइज हुआ मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी. मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ आपकी फॉरगिवनेस पे टू सेट माई सेल्फ फ्री. तो आपका पकड़ के रखना मुझ पर कोई असर नहीं डालेगा. मुझ पर कोई उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है. मैंने अपने गिल्ट को भी खत्म कर लिया है, मैंने अपने कॉन्फिडेंस को वापस ले आया है, मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया कि नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर, लेकिन आपका पकड़ के रखना आपका नुकसान कर रहा है, मेरा नहीं। एंड इवन द अदर वे अराउंड, कि अगर आपने छोड़ दिया है, आपने उस बात को चित से खत्म कर दिया है, एंड इवन इफ यू से टू मी आई फॉरगिव यू, डोंट वरी, फॉरगेट इट, आई हैव फॉरगिवन यू, यू कैन फॉरगिव मी, बट टिल आई फॉरगिव माई सेल्फ इट्स नॉट ओवर फॉर मी। आप मुझे रोज उठकर बोल दो आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, मैं वो बात को भूल चुका हूं, तुम भी भूल जाओ, खत्म करो उस बात को, आपने कर दिया है, आपके करने से या बोलने से मेरा नहीं हो जाता। यू हैव टू सेट योर सेल्फ फ्री, आई हैव टू सेट माई सेल्फ फ्री, यू हैव टू फॉरगिव योर सेल्फ, आई हैव टू फॉरगिव माई सेल्फ, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरगिविंग एनीबडी एल्स।
1: सिस्टर, जो गलती हो जाती है अपने से या कोई झगड़ा हो जाता है और बार बार अगर हम माफी मांगते जाए अगला बोलता नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, तो उसका क्या मतलब क्या है फिर, उसको क्या, मेरी तरफ से तो मैंने कर दिया।
2: क्षमा करना मीन्स क्या है, मैंने क्षमा किया, जैसे
1: मैंने माफी आपसे मांग ली,
2: राइट,
1: दो बार मांग ली, सॉरी हो गई थी, बात खत्म करो, वो बोलता नहीं,
2: पर आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप बात ही नहीं करेंगे, सी दो चीजें हो रही है, एक बाहर एक अंदर, ठीक है। सपोज लेट से मैंने स्कूल में कोई गलती कर दी, ऑफिस में कोई गलती कर दी, कोई ऐसी चीज कर दी जिससे मेरे ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है, लेट से मुझे जॉब से टर्मिनेट किया जा रहा है, या मुझे पनिश किया जा रहा है, मेरी सैलरी पर इफेक्ट हुआ, या जो सिंपल आपने कहा मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, राइट, दिस इज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जो हम यूज करते हैं सब एक दूसरे के साथ, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, ये एक बाहर का कर्म है, ये बाहर है, इसके लिए मैं कंप्लीटली दूसरे पर डिपेंडेंट हूं कि आप प्लीज मुझे फॉरगिव करें। इस समय हम क्या कह रहे हैं, आप प्लीज मुझे फॉरगिव करें कि मेरी गलती को देखकर आपने ये जो चेंज बाहर लाया है अपने व्यवहार में, कि आपने मेरे अगेंस्ट एक्शन लिया, मुझे पनिश किया, या मुझसे बात करनी बंद की, आई एम नाउ रिक्वेस्टिंग यू कि आप प्लीज मुझे फॉरगिव करें, मतलब ये जो आपने किया है इसको प्लीज विदड्रॉ कर दीजिए, इसके लिए आई एम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू, एंड अनलेस यू डू इट ये चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज है अंदर, आपने बाहर कुछ चेंज नहीं किया है, या लेट से आपने बाहर फॉरगिव कर दिया, मतलब आपने बाहर ठीक कर दिया, आपने बात करनी मेरे से शुरू कर दी, लेकिन अंदर वो हर्ट, वो बात आपने अभी भी पकड़ के रखी है, विच मीन्स यू स्टिल होल्ड दैट पेन इनसाइड। बाहर आप नॉर्मल बात कर रहे हैं, आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, एंड ये कितनी भी पुरानी बातों के लिए भी हो सकता है, हम कहेंगे नहीं सब ठीक है ना, छोड़ो, भूल गया, लेकिन वो भूला नहीं है, छोटी सी चीज पे वो दर्द मुझे फिर से याद आता है, क्योंकि आई हैव नॉट फॉरगिवन माई सेल्फ, एंड फॉरगिवन माई सेल्फ मीन्स आई एम स्टिल इन पेन, वो हर्ट मैंने अभी तक हील नहीं किया है। जब तक वो हर्ट मैंने हील नहीं किया, मतलब वो चोट अभी भी है, उनके साथ बात हम नॉर्मल कर रहे हैं, लेकिन वो दर्द अभी भी है। अब ये जो दर्द है, इसके लिए फॉरगिवनेस मुझे कोई और नहीं दे सकता, कोई नहीं कर सकता, ये चीज मुझे खुद के लिए करनी होगी। अब जैसे आपने कहा, सपोज सामने वाला हमसे बात नहीं करता, हमने कई बार लिखा आई एम सॉरी, मेरे से गलती हुई, आई रियलाइज, लेकिन सामने वाला फिर भी बात नहीं कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं इस केस में?
1: कुछ भी नहीं कर सकते, क्या करेंगे?
2: हम ये कर सकते हैं कि हम उनके प्रति
1: बुरा ना सोचें।
2: जब हमें समझ में आ गया कि पिंग पोंग एनर्जी गेम है, तो वी हैव टू यूज दैट इक्वेशन। अभी आपने कुछ किया, मैं नाराज हूँ,
1: अपना बैट बाजू रख दे,
2: नो साइड पे नहीं रखते, हाँ। हम एक अलग क्वालिटी की एनर्जी की पिंग पोंग गेम खेलेंगे ना। न्यूट्रल नहीं हो सकते हम, हमारी थिंकिंग बंद नहीं होती है जिनके साथ स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट है। आपने कुछ किया, मैं नाराज हुई, मैंने बात करनी बंद कर दी, आपने कितनी बार आकर बोला कि आई एम सॉरी, आई रियलाइज, लेकिन मैंने बात करनी नहीं शुरू की. आई कन्वे द मैसेज आई एम हर्ट, आई एम एंग्री, एंड आई इवन कन्वे द मैसेज दैट आई हैव नो प्लान्स ऑफ फॉरगिविंग और चेंजिंग दिस, दिस इज गोइंग टू रिमेन. मैं काफी समय अभी नाराज रहने वाली हूँ, या मैं आपसे जीवन भर बात करने नहीं वाली हूँ. अब आप क्या कर सकते हैं? ये मेरे व्यवहार को देखकर एक हर्ट, दूसरा गिल्ट कि हमने इतनी बड़ी गलती करी, देखो ये रिश्ता खराब हो गया, तीसरा एक बहुत सटल रूप में मेरे प्रति नाराजगी. कैसे है, इतनी बार इनको सॉरी बोला, इतनी बार इनसे अपोलोजाइज किया, मैंने जेन्युइनली अपोलोजाइज किया, ये अभी भी अपनी ईगो, अपनी आकड़, ये बात नहीं कर सकते ठीक से, कैसे है ये? तो ये एनर्जी कौन सी क्रिएट हो गई? अब ये जो एनर्जी क्रिएट हो गई, मैं तो नाराज थी, नाराज हो, हर्ट हो, बात नहीं करने वाली हो, आपने सॉरी बोला, लेकिन एनर्जी कौन सी साथ में क्रिएट कर दी? बुरा भी फील हुआ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरे प्रति एक सटल रूप में आप भी अब नाराज हो गए हैं. नाराज इसलिए क्योंकि फॉरगिवनेस मांगने पर भी जब मैं ठीक नहीं हुई, आप उस बात से नाराज है. अब क्या पिंग पोंग गेम शुरू हो गया? मैं नाराज, आप भी नाराज, मैं तो पहले से ही नाराज थी, तो अब आप नाराज, वो एनर्जी मेरे पास वापस मेरे से, कंटिन्यूस. अब आई एम नॉट चेंजिंग, मैं नाराज रहने वाली हूँ. आपको अपनी एनर्जी को चेंज करना है विद अंडरस्टैंडिंग कि आपने जो गलती की वो आपने रियलाइज कर लिया. यू नो इट्स लाइक आपने एक स्टिक लिया, मुझे जोर से मार दिया यहाँ पर, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, जो भी, मुझे तो दर्द हुआ ना. अब आपने रियलाइज कर लिया और आपने कहा आई एम सॉरी जो वो मैंने मारा, दूसरा आई विल नॉट डू इट अगेन, एंड मे बी यू विल नेवर डू इट अगेन. लेकिन वो जो चोट लगी है, वो चोट अभी बहुत दर्द कर रही है. हमें, हम कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर सकते हैं कि दूसरे को कितना दर्द हुआ होगा. और कई बार क्या होता है, हम कहेंगे मेरी गलती इतनी थी, मतलब वो अभी तक पकड़ के रखेंगे उस बात को. लेकिन मैं तब तक पकड़ के रखूंगी जब तक मुझे दर्द हो रहा है. एंड इस समय अगर मैं नाराज हूं, बात नहीं कर रही हूं, हर्ट हूं, मींस मेरा वुंड वो पेन कर रहा है. आपने तो प्रॉमिस कर दिया कि आप फिर से नहीं मारेंगे, बट व्हाट अबाउट दिस पेन जो मुझे हो रहा है? यू नो व्हाट वी एक्सपेक्ट कि हमने कहा सॉरी
1: यार, तेरे को मारा तो मारा, अभी सॉरी बोल देना, अभी क्या करूं?
2: नहीं, आपने तो राइट किया,
1: लेकिन वो जो जिसको सॉरी मैंने बोला उसको इतनी जोर से कटा कि उसको 6 साल तक दर्द हो रही है उसकी, जब भी वो दर्द को देख के कहां से माफ करेगा वो?
2: नहीं, माफ की बात नहीं है,
1: सॉरी तो उसने बोल दिया,
2: आपने सॉरी बोला, मुझे दर्द हो रहा है ना. तो मेरा दर्द क्या करता है? मेरा दर्द मुझे फिर से आपके नजदीक जाने से रोकता है, इन द सेंस कि जब तक मेरी ये चोट हील नहीं होती, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं आपसे फिर से इंटरेक्ट करने के लिए रेडी हूं, जस्ट इन केस फिर से आप कुछ ऐसा करते हैं. मेरा तो अभी पहला वाला ही घाव ठीक नहीं हुआ. ये हमें ब्लॉक करता है, हमारा अपना दर्द हमें ब्लॉक करता है, हमारी अपनी नाराजगी कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी चोट दी है. सामने वाला एक्सपेक्ट करता है सॉरी बोला तो नेक्स्ट मॉर्निंग ठीक हो जाना चाहिए, वो ठीक नहीं होंगे. नाउ दिस यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आई एम इन पेन, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ईगो, इट्स नॉट एंगर, इट्स पेन, वो दर्द है. अब आप, क्योंकि मैं दर्द में हूं, गलती तो आपकी थी लेकिन दर्द मुझे हुआ, मैं दर्द में हूं, आपने सॉरी बोला, मैंने फिर भी माफ नहीं किया, अब आपका रोल क्या होगा?
1: अब क्या करूं मैं, सॉरी बोल दिया,
2: आपका एक ही एम होना चाहिए. अब सॉरी बोल दिया,
1: अभी पिंग पोंग का बॉल का
2: चेंज करना है. आपने सॉरी बोल दिया, सॉरी फॉर व्हाट वाज डन, प्रॉमिस भी कर दिया, मतलब रियलाइज भी कर दिया, आई विल नॉट डू इट अगेन. जो किया उसके लिए अपॉलोजी, रियलाइजेशन कि आगे नहीं करेंगे. अभी सिर्फ एक ही पार्ट रह गया है जिसको हम छोड़ देते हैं, और वो ये कि ये जो मेरा दर्द हो रहा है, इसको आप हील करने के लिए क्या करेंगे? इसको भी आपको हील करने में अगर आप मुझे मदद करते हैं, क्योंकि मुझसे तो वो हील नहीं हो रहा, एंड देन आई कैन लीव इट टू टाइम. हम कहते हैं टाइम विल हील, जब मेरा मन करेगा अगर तो मैं उनसे बात करूंगा, नहीं मन किया तो मैं बात भी नहीं करूंगा. क्यों? टाइम, हमने उसको टाइम पर छोड़ दिया. अब आपका जो तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है, आप कुछ ऐसा करें जिससे मेरे ये जो चोट है ये जल्दी हील हो, क्योंकि ये जितनी जल्दी हील होगी उतनी जल्दी आई विल बी एबल टू कम बैक टू नॉर्मल. यू वॉन्ट मी टू कम बैक टू नॉर्मल. उसके लिए आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि अगर मैं क्षमा नहीं कर रही हूं, आप उस बात से
1: नाराज नहीं होना चाहिए.
2: अंडरस्टैंडिंग, एम्पथी, नाराज नहीं होना है, हर्ट नहीं होना, एक्सपेक्ट नहीं करना कि ये इमिजिएटली वो कर देंगे. अब आपने अगर ऐसा किया तो आपने क्या किया, आपका फ्लो ऑफ लव जो ब्लॉक हो रहा था वो नेचुरल फ्लो होने लगा, तो आपकी तरफ से जो एनर्जी आने लगी वो चेंज हो गई. पहले यहां से नाराज जा रही थी, इसीलिए वहां से नाराज भी क्रिएट होने लग गई थी. अब आपने कॉन्शियसली अंडरस्टैंडिंग से, आई अंडरस्टैंड मैंने उनको तकलीफ इतनी दी है, मेरी बात इतनी बड़ी थी, उनको बहुत बुरा लगा होगा, इंसल्ट हो गई उनके सामने, सबके सामने हर्ट हुआ होगा, मुझे लग रहा है वो बात छोटी है लेकिन हो सकता है उनके लिए वो हर्ट बहुत बड़ा हो. मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि वो उस बात को दो दिन में भूल जाए, लेकिन उनको शायद उस बात को भूलने में 2 महीने भी लग सकते हैं, एंड इट इज फाइन, क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी से उस दर्द को हील करेंगे. ये करके अपने आप को, आप अपनी एनर्जी को चेंज कर लेंगे. जैसे ही आपकी एनर्जी चेंज हुई, मींस व्हाट हैव यू डन, द एनर्जी दैट आई सेंट यू, यू ट्रांसफॉर्म्ड इट.
1: अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन
2: आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया. मैं नाराज
1: भी नहीं किया, रिफ्लेक्ट भी नहीं किया,
2: अब ट्रांसफॉर्म कर दिया. ये हम हर स्टेप पे कर सकते हैं. अब जैसे आपने ये ट्रांसफॉर्म किया, दिस स्टार्ट्स कमिंग टू मी, मेरे वुंड की हीलिंग होनी शुरू हो गई, आपकी थॉट्स मेरे यहाँ टच होकर मुझे एक अलग वे ऑफ थिंकिंग में लेकर जाती है. ये होना ही है, ये होना ही है, लेकिन ये बहुत सकल है. हमें बहुत डीप अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी कि कहीं भी हम उनके प्रति नाराज नहीं हैं जो हमें क्षमा नहीं कर रहे हैं. ये तो उनके लिए जो हमारे हमें क्षमा नहीं कर रहे हैं.
1: बट जो क्षमा नहीं कर रहा है वो मुझे और गिल्ट पे तो पहुंचा सकता है ना, कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी क्या जो तुम अभी तक बात नहीं कर रहे हो.
2: आपकी गलती का प्रपोर्शन मेरी हर्ट के प्रपोर्शन से नहीं होता है. हमने क्या किया, हमने सबको एक दूसरे
1: लेकिन
2: के
1: अगर आप इतने ज्यादा नाराज हो छोटी सी बात पे, आपको आप तो मुझे मैंने सोचा कि आप एक दो दिन में ठीक हो जाएंगे, अभी तो आपको 2 साल हो गए, अभी भी आपको पकड़ बैठे, यानी कि फिर मैं गिल्टी नहीं फील करूंगा.
2: नहीं, क्योंकि कई बार आपकी छोटी सी भी बात, सी आप एक
1: बात का बतंगड़ बोलते हैं.
2: नहीं, वो बात नहीं होती है, नोबडी इज डूइंग इट पर्पसली. आप एक हथौड़ा लेकर भी मुझे मार सकते हैं, आप एक छोटी सी यहाँ की टहनी लेकर या लकड़ी से भी मार सकते हैं. इम्पोर्टेंट आपकी बात नहीं है सिर्फ, इम्पोर्टेंट ये भी है कि मेरे अंदर कितनी ताकत है.
1: आपके अंदर ताकत भी हो सकती है, आपका अहंकार भी हो सकता.
2: अहंकार
1: है.
2: अहंकार मीन्स क्या, जितना ईगो मतलब मैं उतनी वीक ना.
1: ओके.
2: उतनी वीक हूँ ना, मैं अपने ईगो से ऊपर नहीं उठ सकती, बिकॉज मैं आत्मा कमजोर हूँ. अब आपके हिसाब से आपने एक लाइन ही बोली थी सिर्फ, मैंने तो इतना सा ही कहा था सिर्फ. ठीक है, आई रियलाइज मैंने गलत कहा था, लेकिन इतना सा ही कहा था.
1: एक के बदले में अगर मैं 25 बोला हुआ होता तो.
2: 25 भी अगर बोला था, ये भी हो सकता है कि कोई उस 25 को 5 मिनट में भूल जाए, और ये भी हो सकता है कि कोई एक बात को 25 साल ना भूले.
1: तो यही पॉइंट आ गया आपका, रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब,
2: ट्रांसफॉर्म. क्योंकि आपकी गलती वो आपकी गलती है, लेकिन मेरा रिस्पॉन्स वो मेरी कैपेसिटी है. अगर मैं आत्मा स्ट्रॉन्गर हूँ, पावरफुल हूँ, तो बड़ी गलती का भी जो दर्द होने वाला है, जो घाव है, वो कम है. आपने आज कुछ बोला, मुझे बुरा भी लगा, मतलब घाव भी हुआ, लेकिन 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा कल सुबह, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, आई एम फाइन. लेकिन अगर मैं आत्मा कमजोर हूँ, अहंकार ज्यादा है, गुस्सा ज्यादा है, मेरी शक्ति कम है, तो आपकी एक लाइन भी इतना दर्द क्रिएट करेगी जो मैं पता नहीं कितने साल उस बात को नहीं भूलू। अब इसके लिए आप गिल्ट नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि मेरा दर्द आपकी गलती के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मेरा दर्द मेरी कैपेसिटी टू कोप विद द पेन उस पर डिपेंडेंट है। अब जितना आप गिल्ट में जाएंगे तो भी कौन सी एनर्जी क्रिएट करते हैं। आपने सॉरी बोल दिया, आपने रियलाइज कर लिया, आप दोबारा नहीं करेंगे ये भी डिसाइड कर लिया। उसके बाद आप ये वेट ना करें कि मैं कब ठीक हूं, नहीं हो रही, मतलब आपकी गलती बड़ी थी। नो नो, नाउ ओनली वन फोकस, ठीक है उनको दर्द है, वट एवर आई कुड डू आई हैव डन, नाउ आई कैन डू ओनली वन थिंग, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ गुड विशेस कि परमात्मा ये आत्मा अब जल्दी ठीक हो जाए।
1: आपकी जो उस दिन बात हो रही थी कॉपी वाली, कोई अच्छा बात करे तो मैं करूं, कोई हेलो प्रॉपरली बोले तो मैं प्रॉपरली बोलूं, कोई बोले हे तो हे, तो मतलब आई एम कॉपिंग द वर्ल्ड, मेरी ओरिजिनलिटी कुछ नहीं। तो हुआ यूं कि मैं एक वीआईपी की सीट में बैठा था किसी फंक्शन में, तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा वीआईपी, उसका नाम लिखा था, उसके बाजू एक और था, तो मैं अचानक जल्दी बैठ गया, तो मैं वेट कर रहा था, ये अच्छा आदमी है, बहुत लेट आया, वो पहले आया तो मैंने उसको नमस्कार किया, तो उसने मुझे ऐसे करके नमस्ते भी बराबर नमस्ते नहीं लिया और मेरे साथ बैठ गया। मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आया, फिर मैंने कहा नहीं मैं कॉपीकैट नहीं बनूंगा। तो मैंने फिर उसको क्या किया, ब्लेसिंग्स भेजी, मैंने उसको व्हाइट लाइट में दिया, आई सेड बहुत सारी उसको एनर्जी भेजी इंस्टेड ऑफ सेंडिंग हिम दोस डर्टी वंस, वो पिंग पोंग मेरे बदल दिया। बदलने के बाद कुछ ऐसी फंक्शन चल रहा था, तो दो चार मिनट गए, दस मिनट गए, तो मैं भी चुप था, ये भी चुप थे, लेकिन मैं हल्का हो गया।
2: ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: जब मैं लाइट लाइट फील करने गया तो उसके साथ वाला जो बैठा था बोले सुरेश भाई आप इनसे मिले नहीं क्या कभी, आप आपके साथ बैठे हैं। मैंने बोला मैंने तो इनको आते ही नमस्ते किया, तो उनको गुस्सा आ गया, बोले नमस्ते किया तो क्या हुआ, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता ना, तो मैं कैसे जवाब देता। तो मैं तो उस वक्त लाइट हुआ हुआ था, मैंने उसको बड़े प्यार से बोला बट आई नो यू सर। तो बोला हाउ, मैंने बोला आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, आपने इतनी दुनिया की सेवा की, इतने स्कूल खोले गरीबों के लिए, ये किया, ये किया, सारी लिस्ट मैं जानता हूँ, आई नो यू। वो भूल गया कि मैं कौन हूँ, वो कौन हूँ, लेकिन आप भी करते हो ना भाई साहब, मैं आपके टीवी पे प्रोग्राम देखता हूँ शिवानी बहन के साथ। नहीं लेकिन वो ये भूल गया कि बोल के आई डोंट नो यू मैंने बोला हुआ था गुस्से में।
2: तो एनर्जी, पावर ऑफ एनर्जी, सी दिस इज प्रैक्टिकल।
1: बाद में उससे बोला नेक्स्ट डे मेरे पास लंच पे आना, हम यही हैं, फंक्शन कर रहे हैं,
2: चेंज हो गया। एक सिर्फ एक अटेंशन, एक अवेयरनेस, नाउ यू गेट प्रैक्टिकल प्रूफ शिफ्टिंग फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू हार्मनी।
1: लेकिन दोबारा लंच पे बुलाया, वहां फिर मैं अड़ गया।
2: अच्छा,
1: मैंने कहा उसने हाँ जी, तो बोले मैं नहीं जाऊंगा। मैंने माफ कर दिया एक बार कि अभी मैं उसके घर जाऊं खाना खाऊं, उसने बोला हु आर यू, आई डोंट नो यू, ये फिर मेरा दिमाग मन ऐसे करने लगा। फिर मैंने कहा जाके देखते हैं, पहुंच ही गया बड़ी मुश्किल से, और इतना मुझे अच्छा लगा कि एक लगा कि मैंने अपने मन को जीत लिया, मन जीत हो गया,
2: मन जीत लिया तो जगत को भी जीत लिया। जो खुद में परिवर्तन लाया वो दूसरों को भी परिवर्तन किया ना। अवेयरनेस कैसे, अवेयरनेस आप कहते हैं ना, प्रैक्टिकल कैसे करना है इसको, ये सारा दिन में प्रैक्टिकल हो रहा है। इन्फॉर्मेशन मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, बिलीफ सिस्टम पर अटैक किया कि पुराना बिलीफ सिस्टम, वो ऐसे करेंगे मैं ऐसे करूंगा, नहीं उस पर अटैक किया, थॉट्स को चेंज किया, अवेयर थे। ये अवेयर रहना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि पुराने बिलीफ सिस्टम के रास्ते ही ना चले जाएं कि उसने ऐसा किया, नहीं अवेयर थे। एंड जो आपने बहुत सुंदर बातें कही कि वो अभी भी बात नहीं कर रहे थे ठीक से, आई फेल्ट लाइट, दिस हैज टू बी द एम ऑफ लाइफ। व्हेन वी आर सेइंग बीइंग ब्लिस मींस मैं फटाफट से क्या करूं, कोई बात आई भी है, कोई एनर्जी मुझे सामने से आ भी रही है, अच्छा मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आ भी रहा है, बुरा लग भी रहा है, अब अवेयरनेस मीन्स मैं क्या करूं अभी जिससे मेरी एनर्जी चेंज हो जाए. दिस इज इट, एवरी टाइम गोइंग बैक टू बीइंग हैप्पी. एंड जैसे आपने वो किया,
1: मैंने अच्छी एनर्जी जब देने लग गया तो खुद ही अच्छी एनर्जी में मैं भीग गया.
2: क्योंकि देने के लिए क्रिएट करनी पड़ती है, और क्रिएट करने से सबसे पहले खुद को मिलती है. अब जो आपने लास्ट टाइम कहा, पर जरूरी नहीं है कि वो प्यार से बात करते हैं, ये भी एक ऑप्शन पकड़ ले. जरूरी नहीं है कि वो प्यार से बात करे, लेट्स गिव 5% चांस कि वो प्यार से बात वापस नहीं करेंगे. लेकिन अगर नहीं भी करेंगे, उनके प्यार से बात करने से पहले आप लाइट हो गए थे ना.
1: हाँ,
2: उनके प्यार से बात करने के बाद नहीं लाइट हुए ना, पहले ही लाइट हो गए थे. एम ऑफ लाइफ टू बी हैप्पी, टू बी लाइट.
1: सही बात है.
2: वो आपकी लाइटनेस और आपकी खुशी उनके प्यार से बात करने पर डिपेंडेंट नहीं थी, वो तो उसका बाय प्रोडक्ट था.
1: ब्यूटीफुल,
2: ये उसका बाय प्रोडक्ट था ना. आप खुश हुए मतलब आपने अपने,
1: पहले मैंने अच्छी एनर्जी भेजी,
2: भेजी मतलब पहले क्रिएट की.
1: ओह,
2: क्रिएट की मतलब आपने अपनी थिंकिंग को चेंज किया. ठीक है, नहीं बात कर रहे, मूड होगा, रीजन होगा, वट एवर, थिंकिंग को चेंज किया. पहले थिंकिंग होती थी क्या समझ सकते हैं अपने आपको, मतलब नमस्ते का जवाब ना दे कोई. डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ही डिफरेंट डायरेक्शन में गए, अपनी क्लीनिंग की, एनर्जी चेंज हुई, लाइट फील किया. इसमें अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो तो अभी भी ऐसे होकर बैठे हैं, और वो अभी भी आपको दूसरी एनर्जी भेज रहे हैं. सी, he is still sending negative energy, but because you are constantly working on yourself, आपने अपनी एनर्जी को चेंज कर लिया, अब आप खुश हैं, मतलब आप लाइट हैं. इसका रिजल्ट ये होगा कि वो भी हो जाएंगे, but that's only a byproduct. We are not doing this to change them. हम उनकी खुशी के लिए नहीं कर रहे, उनको बदलने के लिए नहीं कर रहे. वो खुश हो जाएंगे तो मैं खुश होऊंगा, इसलिए नहीं कर रहे. हम अभी अपने को खुश करने के लिए कर रहे हैं. हो सकता है हमारी एनर्जी को लेकर वो भी खुश हो जाए. दैट्स अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी, बट इवन इफ नॉट, आई एम हैप्पी. नाउ दिस इज ओनली फॉरगिवनेस. ये आपने फॉरगिव ही तो किया, किसी ने इग्नोर किया, इंसल्ट किया, आपने उस बात को अपने चित पर नहीं रखा. फॉरगिवनेस मीन्स हम उस बात को अपने चित पर न रखकर उनकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर हमने अपने को हल्का किया. लाइटनेस,
1: अपने से मैं खुश हूँ.
2: यस, आपसे
1: तो ये बात तो बहुत कुछ करना था, लेकिन समय हो गया है. अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे.
2: थैंक यू
1: सो मच. थैंक यू.
3: When we hold resentment against someone, it becomes a very strong negative emotional link. We are bound to them. The one who lets it go will set themselves free. Forgiveness means forgiving ourselves by letting go of the resentment we have held on to. Even if the other person forgives us, we will remain in pain till we let go of the past negative experience. Forgiveness does not only mean we are behaving and talking as before. It means we have healed our hurt, have understood the other person's perspective, and do not hold them responsible for our pain. Do not be angry with people for not forgiving us. Understand they are still in pain and do not have the courage to interact again, because they fear that they may get hurt again. Send vibrations of love and compassion which will help them to heal.
4: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर. तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। और आज ज्ञान के पीरों से छुड़ाकर कुछ ऐसी बातों को लाई हूँ जो हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश, हमारा पूरा विश्व ही आज बहुत आगे निकल रहा है। आज अगर हम देखते हैं तो शिक्षा की वैल्यू बहुत है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम देखें तो आध्यात्मिक शिक्षा भी बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा विषय आध्यात्मिक शिक्षा की उपयोगिता। कहा जाता है कि शिक्षा से अंधियारा दूर होता है। विद्यार्थी विद्या अध्ययन से पहले प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता है, अस्तु मां सद्मय तमसो मां ज्योतिर्मय। कई वर्षों तक कड़ी मेहनत करने के बाद वह ऊंची शिक्षा ग्रहण कर लेता है और समाज का सुशिक्षित व्यक्ति कहलाता है। लेकिन क्या जीवन का अंधेरा मिटा? अध्ययन पूरा करने के बाद जब वह गृहस्थ में जाता है तो सिर्फ प्रार्थना के शब्द ही परिवर्तित होते हैं, बाकी सब तो वही का वही होता है। अब वह मंदिर में जाकर कहने लगता है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। इसका अर्थ तो यही निकलता है कि इतना समय उसने जो शिक्षा पाई उससे उसके जीवन का अंधियारा मिटा नहीं है, प्रकाश उसके जीवन में आया नहीं है। कभी कभी वह ऐसे भजन भी गाता है कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊंगे। इससे यह सिद्ध होता है कि ये दोनों आंखें होते हुए भी उसे गलत और सही की पहचान नहीं हो रही है। शिक्षा से उजियारा जीवन में आया नहीं है। फिर यदि वह व्यापार के क्षेत्र में आता है तो फिर कुछ धर्मों दान पुण्य के लिए कुछ पैसा निकालता है। वह समझता है कि धंधे में मेरे से कुछ पाप झूठ बेईमानी आदि होते हैं तो धर्माओं निकालने से वे हल्के हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मूल्यों को लेकर पिछड़ापन भी क्यों है? यहाँ प्रश्न ये उठता है कि वो कौन सी ऐसी शिक्षा है जो सचमुच जीवन का अंधकार मिटाए और वास्तविक रोशनी लाए। केवल धन कमाने की रोशनी नहीं, लेकिन मुझे जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से कर्म मेरे लिए व समाज के लिए सुखदायी है और किन कर्मों से समाज से जो समाज में हमारी व्यवस्था बिगड़ती है, ऐसी रोशनी ऐसी समझ मिले, वह शिक्षा कौन सी है, उसका स्रोत कहाँ है। वर्तमान शिक्षा की ढांचे अगर हम देखें, हाँ, वर्तमान शिक्षा के ढांचे में हमने मानव के लिए उपयोगी सर्व सामग्री पाठ्यक्रम में समाहित की है, लेकिन मूल्यों को लेकर आज भी शिक्षा में पिछड़ापन क्यों रह गया है? यह एक गंभीर और विचारणीय प्रश्न है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं ज्योत्सना फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो मैं ज्योत्सना ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है आध्यात्मिक शिक्षा की उपयोगिता। कहा जाता है कि विद्या ददाति विनियम का रस चखा ही नहीं, एक बाइक सवार जो है युवक को अति शीघ्र अपने गंतव्य पर पहुंचना था। रास्ते में चौराहे पर लाल बत्ती को पार करने लगा तो ट्रैफिक पुलिस ने रोका। गुस्से में आकर युवक ने तुरंत पुलिस को गोली मार दी कि मुझे जाने से क्यों रोका गया, मुझे बहुत जल्दी पहुंचना था। यह घटना एक स्कूल के कार्यक्रम में प्राचार्य ने सुनाई और कहा, बहन जी पहले के जमाने में हत्या जैसा घृणित कर्म करने से पहले इंसान उसके बुरे परिणाम के बारे में हजार बार सोचता था कि यदि मैंने ऐसा किया तो फिर मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मुझे जेल हो गई तो आदि आदि। बहुत बार तो परिणाम सोचकर ही वह घृणित कर्म को कैंसिल कर देता था, परंतु आज कर्म करने के संकल्प और उसे कर डालने के बीच का फासला ही समाप्त होता जा रहा है। ऐसी घटनाओं से पता चलता है कि सुशिक्षित युवा भी बिना सोचे समझे गलत कर्म कर बैठते हैं। आज तो धीरज, सहनशीलता या दीवारों की शोभा मात्र बढ़ा रहे हैं। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि शिक्षित होकर हमारा अहम कुछ और मूर्ख होता जा रहा है। मैं जब चाहूं जो चाहूं वह करूं, यह प्रवृत्ति सिद्ध करती है कि हमने शिक्षा के फल विद्या ददाति विनियम का रस चखा ही नहीं है। एक बार एक विद्यालय में मूल्यों पर विद्यार्थियों को कुछ सुनाने के बाद जब विद्यालय के संचालक महोदय से मिले तो उन्होंने विचार दिया कि आपकी शिक्षाएं धार्मिक है, इसलिए विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए सर्वथा अनुपयोगी है। अगर कहा जाता है कि अगर ये शिक्षा अनुपयोगी है तो देखा जाता है कि कुछ समय के बाद एक बार एक अखबार में खबर आई कि उसी विद्यालय के वही संचालक महोदय गांव वालों के द्वारा स्कूल में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। अब बताइए विद्यालय के लिए अनुपयोगी कौन सी बातें हैं? तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों। तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना फिर से आपका स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है आध्यात्मिक शिक्षा की उपयोगिता। यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्व जो आत्माओं का धर्म एक है और वह है शांति। जब हम कहते हैं हाँ धर्म कि हम धर्म निरपेक्ष है, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह है, यह बात ठीक है कि दैहिक धर्मों की भीड़ में से किसी एक धर्म के सिद्धांत को हम पढ़ाएं तो विद्यालय में एकता और सामंजस्य नहीं रह पाता, परंतु देह से परे आत्मा का भी तो धर्म है जो सबका एक है, उसे तो अपनी शिक्षा प्रणाली में अनिवार्य रूप से शामिल किया जा सकता है। जैसे संपूर्ण जगत का मालिक एक है, सूर्य भी एक है, चंद्रमा भी एक है, धरती एक है, उसी प्रकार सारे विश्व की सर्व आत्माओं का धर्म भी एक है और वह है शांति। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को हर समय हर स्थान पर शांति की ही कामना रहती है। जैसे जल का धर्म शीतलता है, वैसे ही आत्माओं का धर्म शांति है। कोई व्यक्ति 24 घंटे शांति में तो रह सकता है, पर 24 घंटे अशांति में रहना असंभव है। आध्यात्मिक शिक्षा की ही हमें क्या लगता है कि सच्ची शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा ही सच्ची शिक्षा है। शांति ही अन्य सभी गुणों की जननी है। शांति और समृद्धि तब आती है जब जीवन में पवित्रता हो। पवित्रता के लिए यह ज्ञान हमारे हर श्वास श्वास में रचा बसा कि हम एक पिता के बच्चे आत्मिक नाते से भाई भाई हैं। जहां भाई भाई की भावना विकसित हो जाती है, वहां हिंसा, लूट, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब रह ही जाती है। हाँ, उसके बिना हाँ रह ही नहीं पाते। शिक्षा का उद्देश्य है हाँ, मतलब इसका जो उद्देश्य है भी तो यही है ना कि वह समाज को, व्यक्ति को विकार मुक्त बनाए। शिक्षा को तीसरा नेत्र कहा गया है। वेद कहता है नास्ति विद्या सम चक्षु, अर्थात विद्या अद्वितीय नेत्र है। इन दो आंखों से जो नहीं दिखता वह विद्या रूपी नेत्र से दिखता है। विद्यावान व्यक्ति को समाज का सच दिखाई देता है। वह समस्याओं को ऊपर से नहीं, जड़ से पकड़कर समाधान सोचता है। आज की समस्याओं की जड़ है दैहिक दृष्टि, दैहिक आकर्षण। इनसे जो पार ले जाए वही सही शिक्षा है। इस अर्थ में आध्यात्मिक शिक्षा ही सच्ची शिक्षा है, जो भौतिक जगत में रहते भी मानव को बुराइयों से अछूता रहना सिखाती है। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप अपने कटाई रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।